सिद्क परोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरियां करनियां आप जी दे हजूर कड़ाह प्रसाद दी देग हाजर है

पर पुस्तक संध्या बाद पुष्पक समागम मुछुड़ विभूखण सारं त्रैपाल तिहाल विचारं गल माला तिलक लाटं दो तोती बसर कपाट जे जान ब्रह्म कर्मं सा फोकट निश्चो कर्मं तो नानक निश्चो त्यावे वे सतगुरु बाट न पावे।

0: अंतर पूजा पड़े कते बस संजम तुरका पहाई छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जाहे तंदा महला पहला
1: मानस खाने के लिए निवाज छुरी बगा।

जी मोहा का कर्म है पितृ दे अगे वस्य जानी है पितृ चोर करे वड़ी है हथ दलाल के मुसफी करे नानक गैसो मिले जे खटे काले दे महला पहला जान जो

मन का सुत को लोभ है जे मासुत को अखी सुत विखणा पत्र पर तन रूप कनी सुत कन पै

I'm not going to be able to do that.

परवाह नहीं सकेरी बास चिला दरवाट पर खच मंगा।

0: ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। सरकार ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, चाहे दी गई राशि कितनी भी हो। वित्त मंत्रालय ने कहा गया है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर ढांचे के तहत आने वाले लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को 2000 रुपए तक के किए जाने वाले भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार इसके परिणाम स्वरूप सभी व्यक्ति से व्यापारी लेनदेन का लगभग 96% हिस्सा प्रभावित नहीं होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
2: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, तो प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन ने कल नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में एक शताब्दी सेवा के 100 कार्यों में आरएसएस नामक पुस्तक का विमोचन किया।

0: तेलंगाना के पूर्व राज्यपाल डॉ. तमिलसाई सौंदरराजन ने लिखी है. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने कहा कि यह पुस्तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी भर की सेवा, उसकी सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान को दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करती है. उन्होंने कहा कि आरएसएस की सेवा पहल गरीबों, हाशियों पर पड़े लोगों और समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंची है, जिनमें श्रमिक, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं. दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित मासिक प्रोत्साहन राशि को 3,000 रूपये से बढ़ाकर 6,000 रूपये करने की घोषणा की है. यह निर्णय कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में दिया गया. उन्होंने कहा कि मासिक प्रोत्साहन राशि में वृद्धि आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को मान्यता देने और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. सुश्री गुप्ता ने कहा कि इससे उनके काम के प्रति उत्साह बढ़ेगा और उन्हें अपनी सेवाएं जारी रखने में मदद मिलेगी. वर्तमान में दिल्ली में 6,725 आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं. भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास का 22वां संस्करण कल उत्तराखंड के औली में शुरू हुआ. उद्घाटन समारोह औली परीक्षण केंद्र में आयोजित किया गया. यह अभ्यास राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी आयोजित किया जा रहा है. इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन व्यवस्था को मजबूत करना, उभरती चुनौतियों का समाधान करना और द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ बनाना है. अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार यूरोप और मध्य पूर्व के देशों को दी जाने वाली करोड़ों डॉलर की सैन्य सहायता में कटौती कर इसे मध्य और दक्षिण अमेरिका की रूढ़िवादी विचारधारा वाली सरकारों को देने की तैयारी कर रहा है. अमेरिका के विदेश विभाग ने संसद को बताया कि स्लोवाकिया, नॉर्थ मैसिडोनिया, ट्यूनिशिया और इराक के लिए स्वीकृत 5,20,00,000 डॉलर की सैन्य सहायता को पनामा, पेरू, इक्वाडोर और कोलंबिया को देने पर विचार किया जाएगा. विदेश विभाग के अनुसार इस धनराशि का उपयोग अमेरिका के आसपास मादक पदार्थों से जुड़े आतंकवाद से निपटने और पनामा नहर की सुरक्षा के लिए किया जाएगा. नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,399 हो गई है. प्रभावित 8 जिलों में और शव मिलने के बाद यह संख्या बढ़ी है. सुरक्षा बलों का संयुक्त दल खोज और बचाव अभियान चला रहा है. करीब 5,170 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 13,742 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है. क्रिकेट में भारत ने कल दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है. श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल दिल्ली में खेला जाएगा. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है. ज्ञान अमृत.

पाइए तेरे आंदा जांदा तक रही दिल बहार की आवाज च मैं तुसी ए सूफियाना कलाम सुन रहे सी। मैं ते रखिया गुनाहा नू लुका के कि लोका पाने कुंड कड्या। आहुन ज्योति नूरा ते सुल्ताना नूरा नू सुनिए।

I'm gonna go with my

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधरे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते तंहिंखां सवाइ तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप एंड डी डी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा। प्रोग्राम शुरू थी चुको आहे, तफ़सील कुझु निकिता आहिनि। प्रोग्राम में तव्हां हमेशह भगत कराम साहब खे ॿुधंदा, तंहिंखां पोइ तफ़सीलो पेश कंदो ऐं पोइ अॼु मां कुझु फिल्मी गीत ॿुधंदा। न्यूज़ हेडलाइंस प्रोग्राम जे आख़िर में ब्रॉडकास्ट कई वेंदियूं। इन लाइ असांजे प्रोग्राम जी तफ़सील तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया। हींअर छो त भगत कराम साहब जन जे सदाबहार आवाज़ में हिकु ॿुधूं।

0: हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।
1: Passion, family, kita.

रंगी तुंजा रंग वाह वाहड़े रंगी तुंजा रंग रंग वाह वाहड़े रंगी तुंजा रंग तो खल क्या के मत जा मूढ़ा तो खल क्या के मत जा मूढ़ा आई के मस्त मलंग वाह वाहड़े रंगी तुंजा रंग वाह वाहड़े रंगी तुंजा रंग रंग वाह वाहड़े रंगी तुंजा रंग।

कहने की तो बुद्धि आकाशवाणी जी सिंधी सर साईं रपेशन खास खास खबरों नई दिल्ली जो चवण आया था भारत चीन के लागापन जो मुख्य मकसद मुख्य गणती बाहमी इज्जत चाह ए जज्बात होने घुर्जन भारत चाहे नार वारे इलाके में तजारती बेड़न के निशान बनाने सा यह गाल भारत के मंजूर कौन है रेड सी में वधंदर चिकदान ते भारत गंभीर गणती पदरी कही है हौती हमलन के मद्देनजर सऊदी अरब मेका में चिता डनो है अमेरिकी कोर्ट ट्रंप अख्तियारी के नए वीजा कानून की खास कर पढ़े शागिर्दन ए जर्नलिस के कानून के ब्लॉक किया है वनडे क्रिकेट में भारत अफगानिस्तान के बी टी ट्वेंटी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में 7 विकेटों मात नहीं जिका दिल्ली में थी रही है

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस बुधी रहा हिंसर असाजे प्रोग्राम जो वक्त पूरो वरी असा मुलाकात थन्दी सुभा सुबह जो यानी कि भारतीय वक्त मुताबिक 6:30 बजे तेसी तीन डींदा इजाजत सदाई गढ़।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों के लिए 2,000 रूपये तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप सभी व्यक्ति से व्यापारी लेनदेन का लगभग 96% हिस्सा प्रभावित नहीं होगा। छूट दर केवल 2,000 रूपये से अधिक के व्यापारी लेनदेन पर ही लागू रहेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कल नई दिल्ली में एक शताब्दी सेवा के 100 कार्यों में आरएसएस पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल तमिलसाई सौंदर राजन ने लिखी है। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि ये पुस्तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी भर की सेवा, सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण में योगदान की जानकारी देती है। उन्होंने कहा कि आरएसएस की सेवा पहल गरीबों और कमजोर लोगों सहित और समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंची है, जिनमें श्रमिक, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित मासिक प्रोत्साहन राशि 3,000 रूपये से बढ़ाकर 6,000 रूपये करने की घोषणा की है। ये निर्णय कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। उन्होंने कहा कि ये वृद्धि आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को मान्यता देने और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इससे उनके काम के प्रति उत्साह बढ़ेगा और उन्हें अपनी सेवाएं जारी रखने में सहायता मिलेगी। वर्तमान में दिल्ली में 6,725 आशा कार्यकर्ता हैं। पश्चिम बंगाल में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए 4 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। ये पुरुलिया के छर्रा, दक्षिण दिनाजपुर के बालूरघाट, अलीपुर द्वार के हासीमारा और पश्चिम मेदिनीपुर के कलाई कुंडा में बनाए जाएंगे। इन चारों हवाई अड्डों के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच उड़ान योजना के अंतर्गत त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर 23 सितंबर को कोलकाता में हस्ताक्षर होने की संभावना है। इस अवसर पर केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के आर नायडू और

मंत्री शुभेंदु अधिकारी मौजूद रहेंगे। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास का 22वां संस्करण कल उत्तराखंड के औली में शुरू हुआ। अभ्यास सत्र उत्तराखंड के औली प्रशिक्षण केंद्र और राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन व्यवस्था मजबूत करना, उभरती चुनौतियों का समाधान करना और द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी और अधिक सुदृढ़ करना है। अमरीकी सरकार यूरोप और मध्य पूर्व के देशों को दी जाने वाली करोड़ों डॉलर की सैन्य सहायता में कटौती कर मध्य और दक्षिण अमरीकी सरकारों को देगी। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्लोवाकिया, उत्तरी मैसिडोनिया, ट्यूनिशिया और इराक के लिए स्वीकृत 5,20,00,000 डॉलर की सैन्य सहायता पनामा, पेरू, इक्वाडोर और कोलंबिया को दी जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस धनराशि का उपयोग अमरीका के आसपास मादक पदार्थों से जुड़े आतंकवाद से निपटने और पनामा नहर की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। रूस और यूक्रेन एक दूसरे की ऊर्जा बुनियादी सुविधाओं पर हमले कर रहे हैं। यूक्रेन के अधिकारियों के अनुसार रूस की राजधानी कीव और अन्य शहरों पर करीब 200 ड्रोन से हमला किया गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। रूस के हमलों में राजधानी के पेट्रोल पंप के अलावा कई क्षेत्रों में बंदरगाह सुविधाओं को भी निशाना बनाया गया। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन ने रूस के समारा क्षेत्र में वोल्गा नदी के किनारे स्थित सिवरान कि एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1,399 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में और शव मिलने के बाद ये संख्या बढ़ी है। सुरक्षा बलों का संयुक्त दल खोज और बचाव अभियान चला रहा है। करीब 5,170 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 13,742 लोगों को बचा लिया गया है। भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। अफगानिस्तान ने पहली बल्लेबाजी करते हुए भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारत ने विजयी लक्ष्य 15 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। समय हुआ है 7:10:14। प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीतिका, जिसमें आप सुनेंगे रूपाली चौधरी से भजन। संगति दी है सरोद पर दानिश असलम ने, सितार पर साथ दिए हैं खालिद मुस्तफा ने और हारमोनियम पे हैं दामोदर लाल घोष। तबले पर संगत दी है शिवित भारद्वाज ने। तो आइए सुनते हैं रूपाली चौधरी के गाए भजन।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रूपाली चौधरी द्वारा गाए भजन और सरोद पर संगति दी थी दानिश असलम ने। सितार पे थे खालिद मुस्तफा, दामोदर लाल घोष थे हारमोनियम पे और शिवित भारद्वाज ने संगत दी थी तबले पर। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें।

0: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और श्रोताओं, ये वक्त होता है गीतों भरी गुड मॉर्निंग का। तो आप सभी को गीतों भरी गुड मॉर्निंग में स्वागत है, नमस्कार, सुप्रभात। स्वीकार कीजिए मेरा यानी कुसुम पवार का प्यार भरा नमस्कार। तो लीजिए, हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग लेकर। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में खुश रहने के लिए बहुत बड़ी वजह नहीं चाहिए होती, बस चेहरे पर इतनी सी हंसी हो कि दिल में थोड़ा सा सुकून हो और अपने लोगों का साथ हो, फिर लगता है दोस्तों कि जिंदगी सच में खूबसूरत है। तो आज बस इतना याद रखिए कि मुस्कुराने की वजह मिले तो मुस्कुराइए और वजह ना मिले तो खुद ही बन जाइए दोस्तों। कहते हैं ना, जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट हो जरूरी तो नहीं, बस दिल हल्का हो, मन खुश हो और चेहरे पर इतनी सी हंसी हो, कभी कभी इतनी ही काफी होती है। आज कोई बड़ी खुशी नहीं तो कोई बात नहीं, बस छोटी छोटी खुशियां महसूस कीजिए, एक प्यारी सी सुबह, अपनों का साथ और चेहरे पर ये इतनी सी हंसी, शायद यही तो जिंदगी है।

0: आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: तो दोस्तों आप सुन रहे हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग मेरे साथ यानी कुसुम पवार के संग, और हम बात कर रहे हैं जिंदगी की, हंसी की और खुशी की। तो दोस्तों जब कोई आपसे पूछे कि लाइफ का अपडेट क्या है तो कहीं कुछ खास नहीं, बस दिल थोड़ा सा खुश है, मन थोड़ा शांत है और चेहरे पर बिना किसी वजह के इतनी सी हंसी है। और ऑनेस्टली आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों।

दोस्तों, जीवन की भागदौड़ में अपनी मुस्कान को खोने मत दीजिए। छोटी छोटी बातों पर मुस्कुराइए और दूसरों को भी हंसाइए। और आइए सुनते हैं ये अगला गीत। कहना कि हंसना हमारा स्वभाव है, हंसी से महकता हर घाव है। जो शख्स मुस्कुराना सीख गया, समझो उसने जीना सीख लिया। तो इसलिए जिंदगी को एंजॉय कीजिए और हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: प्यार करूँ या कड़कर हूँ मैं तुम मुझे बताना, प्यार करूँ या कड़कर हूँ मैं तुम मुझे बताना।
1: दोस्तों कहते हैं हंसी हमारे जीवन की सबसे खूबसूरत और अनमोल दवा है। एक सच्ची और खुलकर की गई हंसी हमारे चेहरे की खूबसूरती तो बढ़ाती ही है, साथ ही हमारे दिल के तनाव और गम को भी दूर कर देती है। वैज्ञानिक

का मानना है या जो विशेषज्ञ कहते हैं कि हंसने से हमारे शरीर में एंडोर्फिन्स यानी जो हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं जो हमें खुशी का एहसास कराते हैं और हमारी जो हमारी इम्यूनिटी है उसको भी बहुत ही स्ट्रांग कर देते हैं। कहते हैं कि आपके पास यदि हंसने की वजह नहीं है तो छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढिए तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो पहले ही स्ट्रांग हो जाएगी, अपने आप ही स्ट्रांग हो जाएगी, तो आपको हंसी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटी छोटी खुशियों में जब आप हंसी ढूंढेंगे तो खुद ब खुद आपके चेहरे पर मुस्कान छा जाती है।

दोस्तों, जिंदगी में खुश रहने के लिए क्या चाहिए? हर चीज बड़ी हो ये जरूरी नहीं, छोटी छोटी चीजें चाहिए होती है। कभी एक प्यारी सी बात, कभी मनपसंद गाना जैसे कि अभी आपने सुना, और कभी किसी

दोस्तों हर दिन बात याद रखिए कि जो वक्त है चाहे जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा है, एक दिन जरूर गुजर जाएगा ये। इसलिए आज की चिंता को, आज की जो चिंता है आपकी, आज की मुस्कुराहट से छोटा कर दीजिए। और दोस्तों इस जीवन की भागदौड़ में अपनी मुस्कान को खोने मत दीजिए। छोटी छोटी बातों पर मुस्कुराइए और दूसरों को भी हंसाइए। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यही समाप्त करने की इजाजत चाहती हूँ। मुझे यानी कुसुम पवार को इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरे गुड मॉर्निंग। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। 8 बजने को है, कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: सरकार ने कहा, लोगों के बीच किसी भी राष्ट्र के यूपीआई लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। महाराष्ट्र सरकार ने 2025-26 पेराई सत्र में किसानों के लंबित भुगतान के लिए चीनी मिलों को रियायती ऋण देने का निर्णय लिया। दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए मासिक प्रोत्साहन राशि 3,000 रूपए से बढ़ाकर 6,000 रूपए करने की घोषणा की। राष्ट्रीय राजधानी के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 10,000 विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों का निर्माण भी स्वीकृत। भारत अमेरिका संयुक्त युद्ध अभ्यास उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन रेंज में शुरू। न्यूजीलैंड संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लागू करने का विधेयक पारित किया और भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7-0 से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि छोटे व्यापारियों के लिए 0 व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेन देन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रूपए तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप सभी व्यक्ति से व्यापारी लेन देन का लगभग 96% हिस्सा प्रभावित नहीं होगा। छूट दर केवल 2,000 रूपए के अधिक के निर्दिष्ट व्यापारी लेन देन पर ही लागू होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कुल छूट दर संग्रह के 5% से छोटे व्यापारियों को यूपीआई के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित कोष स्थापित किया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल 2,000 रूपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी पीटीएम लेन देन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2,000 रूपए से अधिक के पीटीएम लेन देन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं 75,000 रूपए या उससे अधिक के बड़े लेन देन पर MDR शुल्क अधिकतम 300 रूपए प्रति लेन देन होगी। वहीं व्यक्ति से व्यक्ति व्यापारी P2PM श्रेणी के तहत UPI QR कोड के माध्यम से हर महीने 1,00,000 रूपए तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों को सभी लेन देन पर अनिवार्य रूप से 0 MDR की सुविधा जारी रहेगी। इसके अलावा व्यक्तियों के लिए मुफ्त UPI लेन देन पर कोई मासिक सीमा, लेन देन की संख्या की सीमा या अलग अलग स्रोतों के आधार पर कोई कैप नहीं है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गन्ना किसानों और चीनी मिलों को राहत देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के वर्ष 2025-26 की पेराई सत्र में बकाया और लाभकारी मूल्य के भुगतान के लिए सस्ता कर्ज देने का निर्णय लिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि निर्णय कल मुंबई में मुख्यमंत्री

0: देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
1: सहकारी चीनी मिलों के लिए लगभग 750 करोड़ रुपए के सॉफ्ट लोन की मंजूरी देने का निर्णय कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इन ऋणों पर लगने वाले ब्याज का वहन करेगी। श्री फडणवीस ने कहा कि इस कदम से सहकारी चीनी मिलें मौजूदा गन्ना पेराई सत्र के लिए काम शुरू कर सकेंगी और गन्ने की खरीद कर सकेंगी, जिससे मिलों और किसान दोनों को लाभ होगा। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में गन्ना किसानों को एफआरपी का लगभग 99.5% का नुकसान हो चुका है और एफआरपी भुगतान के मामले में महाराष्ट्र देश में पहले स्थान पर है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने 26 हेक्टेयर बंजर भूमि केंद्रीय गृह मंत्रालय को निःशुल्क हस्तांतरित करने को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह भूमि अयोध्या की मिल्कीपुर तहसील में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए दी गई है।
2: मंत्रिमंडल के निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख सांस्कृतिक, धार्मिक और रणनीतिक केंद्र के रूप में उभरा है। देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु, विशिष्ट अतिथि और पर्यटक लगातार वहां आ रहे हैं। ऐसे में इस इलाके की सुरक्षा संवेदनशीलता काफी बढ़ गई है। खन्ना ने कहा कि इस क्षेत्रीय केंद्र के माध्यम से अयोध्या में एनएसजी की तैनाती स्थायी तौर पर जरूरी हो गई है। एनएसजी केंद्र की स्थापना राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और अयोध्या में किसी भी संभावित सुरक्षा चुनौती से निपटने में सहायता करने के उद्देश्य से की जा रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित मासिक प्रोत्साहन राशि 3,000 रूपये से बढ़ाकर 6,000 रूपये कर दी है। एक रिपोर्ट।
3: यह फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मासिक प्रोत्साहन राशि में वृद्धि आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को मान्यता देने और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सुश्री गुप्ता ने कहा कि इससे उनके काम के प्रति उत्साह बढ़ेगा और उन्हें अपनी सेवा जारी रखने में मदद मिलेगी। वर्तमान में दिल्ली में 6,725 आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं। आमतौर पर प्रत्येक आशा कार्यकर्ता लगभग 2,000 लोगों या 400 परिवारों से जुड़ी होती है। इस बीच दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले 10,000 छात्रों के लिए छात्रावास बनाने का भी निर्णय लिया है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास के 22वें संस्करण का उद्घाटन समारोह उत्तराखंड के औली में आयोजित किया गया। औली प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित इस समारोह में दोनों सेनाओं के 600 सैनिकों ने भाग लिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अभ्यास औली के साथ साथ राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी आयोजित किया जा रहा है।
6: इस अभ्यास का उद्देश्य पर्वतीय और अर्ध पर्वतीय क्षेत्रों में संयुक्त सैन्य अभियानों के लिए दोनों सेनाओं की क्षमता बढ़ाना है। इसमें पैदल सेना आधारित अभियानों पर विशेष जोर दिया जाएगा। अभ्यास के दौरान दोनों सेनाएं परिचालन पद्धतियों का आदान प्रदान करेंगी और संयुक्त योजना एवं संचालन को मजबूत करेंगी। प्रशिक्षण में निगरानी और टोही के लिए ड्रोन तथा स्वायत्त प्रणालियों का उपयोग किया गया है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आधुनिक हथियार प्रणालियों का प्रदर्शन भी होगा। दोनों सेनाओं के विशेषज्ञ उभरती तकनीकों और बहुक्षेत्रीय युद्ध से जुड़े विकास पर विचार भी साझा करेंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बिहार जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर श्री चौहान राज्य में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करेंगे और प्रभावित किसानों के परिवारों से भेंट करेंगे।
7: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने दौरे की शुरुआत पटना के टिकवारा और मनेर के बाढ़ प्रभावित इलाकों के हवाई सर्वेक्षण से करेंगे। इसके बाद वे हाजीपुर के तरसिया और सरायपुर गांव का दौरा करेंगे। पटना में

0: श्री चौहान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। बैठक में बाढ़ की स्थिति, आपदा प्रबंधन, राहत और बचाव कार्यों तथा प्रभावित किसानों को दी जा रही सहायता की समीक्षा की जाएगी। बिहार में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य के 15 जिलों में लगभग 50 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अभिषेक दास, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: इस विधेयक को विपक्षी लेबर पार्टी के समर्थन से पारित कर दिया गया। विधेयक के पक्ष में 93 और विरोध में 29 वोट पड़े। न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मेलकिन ने कहा कि समझौते से निर्यातकों को तत्काल और बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये उच्च स्तरीय व्यापार समझौता इस वर्ष के अंत तक लागू हो जाएगा। इस समझौते के तहत भारत के लिए न्यूजीलैंड के लगभग 95% निर्यात पर शुल्क या तो समाप्त कर दिया जाएगा या काफी कम कर दिया जाएगा। इस समझौते के दायरे में आने वाले आधे से अधिक उत्पाद समझौता लागू होने के पहले दिन से ही शुल्क मुक्त हो जाएंगे। इसके साथ ही सभी भारतीय सामान न्यूजीलैंड के बाजार में शुल्क मुक्त मिलेंगे। न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश करने पर सहमति जताई है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत ने अपनी मजबूत आर्थिक नींव, निजी क्षेत्रीय गतिशीलता और बढ़ती तकनीकी क्षमताओं के बल पर वैश्विक विकास को गति देने की क्षमता है। कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया। उन्होंने ये बयान भारत की 5 दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद जारी किया है। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा और नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी से मुलाकात की थी। अमरीकी सरकार यूरोप और मध्य पूर्व के देशों को दी जाने वाली करोड़ों डॉलर की सैन्य सहायता में कटौती कर मध्य और दक्षिण अमरीकी सरकार को देगी। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्लोवाकिया, उत्तरी मैसेडोनिया, ट्यूनिशिया और इराक के लिए स्वीकृत 5,20,00,000 डॉलर की सैन्य सहायता पनामा, पेरू, इक्वाडोर और कोलंबिया को दी जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस धनराशि का उपयोग अमरीका के आसपास मादक पदार्थों से जुड़े आतंकवाद से निपटने और पनामा नहर की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। नई दिल्ली में कल अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारत ने 15वें ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की तरफ से संजू सैमसन ने सर्वाधिक 57 रन बनाए। नीतीश कुमार रेड्डी ने 3 विकेट लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल दिल्ली में ही खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी आज ऐसी ही स्थिति रहेगी। बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में अगले 2 दिन गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी आज ऐसी ही स्थिति रह सकती है। वहीं केरलम में एर्नाकुलम, पत्तनमथिट्टा और इडुक्की जिलों में तेज वर्षा की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोझिकोड और कन्नूर जिलों में तटीय इलाकों में ऊंची लहरें उठने की भी चेतावनी दी गई है। नेपाल में बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,399 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में और शव मिलने के बाद ये संख्या बढ़ी है। करीब 5,170 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 13,742 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में 6 राज्यों के बीच हुए जल समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की गागर में बढ़ेगा जल, यमुना भी होगी स्वच्छ। पत्र के अनुसार 32 किलोमीटर लंबी झील बनवाने का प्रस्ताव, 97,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। दैनिक जागरण के अनुसार 8 दशक से लंबे केशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों के बीच समझौता। अमर उजाला लिखता है, 90% पैसा केंद्र का, 4 राज्यों को पानी, 2 को बिजली का लाभ। जनसत्ता का शीर्षक है निर्यात की छलांग व्यापार घाटा कम, चालू खाते ने लगाया गोटा। पत्र के अनुसार निर्यात 26.12% बढ़कर 44 अरब डॉलर

0: लोकसत्ते के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विमर्श 2026 सम्मेलन में कहा, एआई और ड्रोन से बदले का भविष्य का युद्ध, रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भर और सुरक्षित भारत की आधारशिला। पंजाब केसरी ने बाल सुरक्षा जरूरी शीर्षक से लिखा है, भारतीय कानून के सामने झुका बेटा, बच्चों के यौन शोषण की सूचना देने को राजी। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, ट्रंप पर प्रशासन को झटका, अमेरिका में नए स्टूडेंट वीजा नियमों पर कोर्ट की रोक, डाक मतपत्र पर रोक का ट्रंप का प्रस्ताव खारिज। राजस्थान पत्रिका ने सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा निर्णय देते हुए लिखा है, डॉक्टर उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में ही रहेंगे, 31 साल पुराने फैसले में दखल देने से इंकार। फैसले से मरीज चिकित्सा सेवाओं में कमी पर उपभोक्ता आयोग में जा सकेंगे। दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, उत्तराखंड में केदारनाथ पैदल मार्ग पर अब हेलमेट के बिना एंट्री नहीं, गिर रहे पत्थर, 100-100 के जत्थे में जा रहे श्रद्धालु, 21 किलोमीटर रास्ते पर 13 डेंजर जोन।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सरकार ने कहा लोगों के बीच किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। महाराष्ट्र सरकार ने 2025-26 पेराई सत्र में किसानों के लंबित भुगतान के लिए चीनी मिलों को रियायती ऋण देने का निर्णय लिया। दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए मासिक प्रोत्साहन राशि 3,000 रूपए से बढ़ाकर 6,000 रूपए करने की घोषणा की। राष्ट्रीय राजधानी के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 10,000 विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों का निर्माण भी स्वीकृत। भारत अमेरिका संयुक्त युद्ध अभ्यास उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन रेंज में शुरू। न्यूजीलैंड संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लागू करने का विधेयक पारित किया। और भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यूं समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस, गवर्नमेंट सेज देयर विल बी नो चार्जेस एट ऑल फॉर पर्सन टू पर्सन यूपीआई ट्रांजैक्शंस इरेस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ट्रांसफर्ड। Maharashtra government decides to provide soft loans to sugar mills to clear pending dues of farmers for 2025-26 crushing season. Delhi government decides to double monthly incentive for ASHA workers from 3,000 to 6,000 rupees to also build hostels for 10,000 students studying in colleges and universities across the national capital. India-US joint military exercise Youth Abhyas begins at Oli in Uttarakhand and Mahajan Field Firing Range in Rajasthan. New Zealand's parliament passes legislation to implement its free trade agreement with India. And in men's cricket, India beat Afghanistan by 7 wickets in the second T20 international to take unassailable 2-0 lead in the 3-match series. Government has clarified that there will be no charges at all for person-to-person P2P UPI transactions, irrespective of the amount transferred. Finance Ministry said that payments to merchants up to 2,000 rupees, along with transactions covered under the Zero Merchant Discount Rate (MDR) framework for small merchants, would also remain free. The Ministry said that consequently, approximately 96% of all P2M transactions will remain unaffected. It said that MDR will apply only to specified merchant transactions above 2,000 rupees. The ministry said that MDR is neither a tax nor a charge collected by the government or National Payments Corporation of India, NPCI. It is distributed among payment ecosystem participants, including banks and payment application providers, to support the operation and continued expansion of the UPI ecosystem. NPCI has said that a revised UPI merchant discount rate framework has been introduced on select merchant transactions effective from the 15th of next month, while keeping UPI free for consumers. Our correspondent reports that a dedicated fund for promoting use of UPI by small merchants will be set up with contribution of 5% of total MDR collections.
3: The Finance Ministry said that charges will apply only to person-to-merchant transactions exceeding 2,000 rupees. It said that UPI app providers are explicitly prohibited from levying platform fees or hidden charges. The Ministry said that banks have been advised to ensure that merchants do not pass merchant discount rate charges to customers for UPI payments. A nominal MDR of 0.4% will be levied on person-to-merchant transactions above 2,000 rupees.

0: भारत अमेरिका मुश्तरका फौजी मश्क युद्ध अभ्यास उत्तराखंड में औली और राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हो रही है। भारत और अमेरिका के दरमियान 22वीं मुश्तरका फौजी मशकों की इफ्तिताही तकरीब उत्तराखंड के चमोली जिले में औली के मकाम पर हुई। इसमें दोनों मुल्कों में से हर एक मुल्क के 600 एहलकारों के दस्तों ने हिस्सा लिया। इस फौजी मशक का मकसद पहाड़ी और नीम पहाड़ी इलाकों में मुश्तरका फौजी कार्रवाई के लिए दोनों मुल्कों की अफवाज की सलाहियत में इजाफा करना है। इसमें इन्फेंट्री पर मबनी कार्रवाई पर खास जोर दिया जा रहा है। इस तरबियत में निगरानी के लिए ड्रोन और खुद मुख्तार निजाम का इस्तेमाल शामिल है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पर जदीद तर्ज के असलह निजाम का मुजाहरा भी किया जाएगा। दोनों अफवाज के माहरीन उभरती हुई टेक्नोलॉजियों और कसी रुखी जंगी साजो सामान से मुतालिक हालात वाकयात पर अपना अपना नुक्ता नजर पेश करेंगे। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट ने भारत के साथ अपने आजाद तजारती समझौते पर अमल दरामद के लिए एक बिल को मंजूरी दी है, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान महसूलात में खातिरखाह कमी आ जाएगी और तजारत में वसत पैदा होगी। इस बिल को मंजूरी 29 के मुकाबले 93 वोटों से दी गई, जिसमें अपोजिशन लेबर पार्टी ने भी हिमायत का इजहार किया। न्यूजीलैंड के तजारत के वजीर टॉम मैकले ने कहा कि इस समझौते से बरामदकारों को फौरी और खातिरखाह फायदे हासिल होंगे। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि यह आला क्वालिटी वाला तजारती समझौता इस साल के आखिर तक लागू हो जाएगा। समझौते के तहत न्यूजीलैंड की तरफ से भारत को की जाने वाली तकरीबन 95% बरामदात पर से महसूलात हट जाएंगे या इनमें खातिरखा कमी कर दी जाएगी। इस समझौते में शामिल की गई आधी से ज्यादा मसनूआत महसूलात से आजाद हो जाएंगी। सभी भारतीय अशिया पर न्यूजीलैंड की मार्केट में रसाई पर महसूलात आयद नहीं होंगे। न्यूजीलैंड में भारत ने अगले 15 साल के दौरान 20 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी से भी इत्तेफाक किया है। मर्दों की क्रिकेट में भारत ने दूसरे T20 मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। इस तरह भारत ने 2-0 की सबकत हासिल करके 3 मैचों की सीरीज अपने नाम कर ली है। कल रात दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मैच में भारत ने 160 रन का जीत का निशाना 14 ओवर्स और 5 गेंदों में ही 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। संजू सैमसन ने 22 गेंदों पर धुआंधार 57 रन बनाए, जबकि अभिषेक शर्मा ने 19 गेंदों पर 39 रन स्कोर किए। ईशान किशन ने 23 गेंदों पर 38 रन बनाए और आखिर तक आउट नहीं हुए। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर अफगानिस्तान से बल्लेबाजी करने को कहा और उसने मुकर्रा 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 159 रन बनाए। कप्तान इब्राहिम जदान ने सबसे ज्यादा 37 रन स्कोर किए। भारत की तरफ से नीतीश कुमार रेड्डी ने 3 विकेट लिए, जबकि अर्शदीप सिंह ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। रेड्डी को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 मैच कल दिल्ली में इसी मैदान पर खेला जाएगा। भारतीय मौसमियात महकमे ने अंडमान निकोबार जजायर अरुणाचल प्रदेश आसाम मेघालय हरियाणा चंडीगढ़ और दिल्ली में आज तेज बारिश की पेशगोई की है। केरला माहे पंजाब मगरबी बंगाल में जैली हिमालयी खत्ते सिक्किम तमिलनाडु पुडुचेरी और कराईकल में भी इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। मौसमियात महकमे के मुताबिक अगले 2 दिन के दौरान बिहार जम्मू कश्मीर लद्दाख झारखंड ओडिशा और राजस्थान में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। आज दुनियाभर में ओजोन का दिन मनाया जा रहा है। यह दिन जमीन पर जिंदगी की हिफाजत में ओजोन परत के रोल की अहमियत के बारे में बेदारी में इजाफे के लिए मनाया जाता है। इस साल का मौजू है एक ज्यादा ठंडे कुर्रे अर्ज के लिए आलमी इकदाम। इस मौजू के तहत ओजोन परत के तहफ्फुज में बैन अलाक्वामी ताउन की हसूलियाबियों को उजागर किया गया है। जल शक्ति की वजारत ने जल संचय जन भागीदारी बारिश के पानी का तहफ्फुज करो तहरीक के लिए एक तराना जारी किया है। इसे मारूफ गुलूकार और मौसीकार शंकर महादेवन ने गाया है। इस गाने से लोगों की शिरकत के जरिए पानी के तहफ्फुज और बारिश के पानी को वापस जमीन में पहुंचाने के लिए एक मुल्कगीर तहरीक को मौसीकी पर मबनी एक आवाज मिली है। वजारत ने बताया कि इस तराने का मकसद वजीर आजम नरेंद्र मोदी के पैगाम को हर गांव कस्बे स्कूल इदारे और घर तक पहुंचाना है और नौजवानों में जज्बा पैदा करना है कि वो पानी के तहफ्फुज के सफीर बने। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ है फहीम अहमद।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप की शह सुर्खी है, इंजीनियर्स डे पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को मुबारकबाद दी, विश्वेश्वरैया के मुल्क की तामीर के विजन को याद किया। अखबारों ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के जरिए दिफाई शोबे में मुतअद्दिद नई पहलकदमियों के आगाज किए जाने के मौके पर उनके इस बयान को नुमाया किया है कि दिफाई शोबे में अहम एसएमई

0: स्टार्टअप्स के लिए आसान होगी राह। अखबार इंकलाब ने भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत के राम जेठमलानी मेमोरियल लेक्चर से खिताब को सुर्खी बनाते हुए लिखा है कि अदलिया खुद को एहतसाब से बालातर रखकर एतमाद हासिल नहीं कर सकती। किशाओ प्रोजेक्ट से दिल्ली को मिलेगा 109.9 MCM इजाफी पानी।
1: और आखिर में खास खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। सरकार ने कहा है कि एक शख्स से दूसरे शख्स तक यूपीआई लेन देन पर कोई चार्जेस आयत नहीं होंगे, हाँ कितनी ही रकम मुंतकिल की गई हो। महाराष्ट्र सरकार ने 2025-26 के पेराई के सीजन के लिए शकर मिलों को नर्म शराइत के कर्जे फराहम करने का फैसला किया है ताकि किसानों के बकायाजात अदा किए जा सकें। दिल्ली सरकार ने आशा कारकुनों के लिए महाना तरगीबी रकम 3,000 रूपए से दोगुना करके 6,000 रूपए करने का फैसला किया है। कौमी राजधानी में कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले 10,000 तलबा के लिए हॉस्टल भी बनाए जाएंगे। भारत अमरीका मुश्तरका फौजी मश युद्ध अभ्यास उत्तराखंड में होली और राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हो रही है। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट ने भारत के साथ आजादाना तजारत के समझौते को नाफिज करने के लिए मुतल्लिका बिल को मंजूरी दे दी है। और मर्दों की क्रिकेट में भारत ने दूसरे T20 मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। इस तरह भारत ने 2-0 की शिकस्त हासिल करके 3 मैचों की सीरीज अपने नाम कर ली है। खबरनामा खत्म।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। समय हुआ 8:45 और 15 सेकंड। प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा, जिसमें आप सुनेंगे श्वेता दुबे से गायन, राग है थुमरी दादरा और कजरी धुन। तबले पर संगत दी है फजल ढोलपुरी ने और हारमोनियम पे हैं करीम नियाजी। तो आइए सुनते हैं श्वेता दुबे को।

सामिन आदा वर्स, ये आकाशवाणी है। सुबह के 9:30 बजे हैं। उर्दू सर्विस की पहली मजलिस की नशियात का अब आगाज होता है। इस मजलिस में आप तमाम सामिन का खैर मकदम है। उर्दू सर्विस की नशियात आप सुन सकते हैं मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। एक मुख्तसर तारुफ इस मजलिस में नशोन वाले प्रोग्रामों के हवाले से। अब से कुछ ही देर के बाद यानी 9:35 पर सुबह का ही प्रोग्राम पेश किया जाएगा। 9:45 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम आज सवेरे। नौ बजकर 50 मिनट पर खबरें नशोंगी और सुबह 10 बजे आप सुनेंगे अख़बार नज़रे पर मबनी शम्मे फरोज़ा। 9:00 प्रोग्राम में आज के फनकार हैं मीनू पुरुषोत्तम और अब्दुल अजीज। आप पेश करेंगे चंद गैर फिल्मी गजलें। इस प्रोग्राम का वक्त रहेगा सुबह 10:05। सुबह 10:30 बजे डॉक्टर मोहम्मद तालिब का तहरीर करदा फीचर आप सुनेंगे हयात के मुहाफिज जंगलात। 11 बजे मेरी पसंद प्रोग्राम पेश किया जाएगा और 11:30 पर मोहतरमा रईसा परवीन की तहरीर करदा गीतों भरी कहानी आप सुनेंगे दिल की लगी। 12 बजे खबरें नशे की जाएंगी और 12:10 पर फिल्मी दुकानों का प्रोग्राम आप सुनेंगे मिले सुर मेरा तुम्हारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम आज जारी रहेगा 1 बजे तक दौरान प्रोग्राम। 12:40 पर तारीख साज प्रोग्राम पेश किया जाएगा। 12:40 है संस्कृत एक शीरी जबां। 1 बजे आलमी खबरें नशर की जाएंगी और 1:15 पर उर्दू सर्विस की पहली मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। सामिन ये था एक मुख्तसर तारुफ इस मजलिस में नशोनाले प्रोग्रामों के हवाले से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

मीडियम वेव से 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। पेश खिदमत प्रोग्राम सुबगाही। सुबगाही प्रोग्राम में आज समाप्त कीजिए शब्द पेश करें भाई सुरेंद्र सिंह जी जोधपुरी।

0: सुबह के प्रोग्राम में भी आप समाप्त कर रहे थे, शब्द पेश कर रहे थे भाई सुरेंद्र सिंह जी जोधपुरी। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, पेश खिदमत प्रोग्राम आज सवेरे।
1: अब हम पलटते हैं आज सवेरे का एक और पन्ना और नजर डालते हैं इतिहास की उन घटनाओं पर जो जुड़ी हुई हैं आज के दिन से, और उन्हीं को ढूंढकर उन्हीं को खोजकर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई सुबह, नई उम्मीदें, नई ऊर्जा और नया इतिहास। तो शुरुआत करते हैं 1987 से। 1987 में वो आज का दिन था जब ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1989 में वो आज का दिन था जब 8 लोगों ने हॉट एयर बैलून के जरिए ईस्ट जर्मनी से उड़ान भरकर पश्चिम जर्मनी की सीमा पार की थी। तो ये थी वो घटनाएं जो जुड़ी हुई थी आज के दिन से, और अब याद करते हैं उन व्यक्तियों को जिन्होंने आज के दिन या तो जन्म लिया या हमसे जुदा हो गए, लेकिन कुछ ऐसा कर गए कि अपनी छाप हम पर छोड़ गए। आज का दिन जुड़ा हुआ है उस महान योद्धा के साथ जिसको नमन करने का जी चाहता है, जिसने देश की रक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वर्ष 2017 में आज के दिन भारत ने खोया था मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स अर्जुन सिंह को। भारतीय वायुसेना के इतिहास में उनका नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। बात करें 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में, तो उन्होंने भारतीय वायुसेना का नेतृत्व किया था, और भारतीय वायुसेना के ऐसे महान अधिकारी थे जिन्हें देश ने 5 सितारा रैंक यानी मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स से सम्मानित किया था। और अब बात उस महान शास्त्रीय गायिका की जिसका आज जन्मदिन है, जिनकी आज जयंती है। आज के दिन 1916 में उनका जन्म हुआ था, भारत की महान शास्त्रीय गायिका एमएस सुभलक्ष्मी। उनकी आवाज में भक्ति थी, शास्त्रीय थी और मिठास थी जो सीधे उनके दिल तक पहुंचती थी। सुनते हैं उनके स्वर में यह खूबसूरत

साधना का ही प्रभाव था कि लता मंगेशकर ने उन्हें तपस्विनी कहा। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने उन्हें सुसुर लक्ष्मी का नाम दिया और किशोरी अमोलकर ने उन्हें आठवां सुर का नाम दिया, यानी जो संगीत के सात सुरों से भी ऊपर था, भारत रत्न से उनको अलंकार

0: Such a soulful voice and amazing. M.S. Subbalakshmi, we are definitely remembering her today.
1: जब बात गीतों की हो तो आज के दिन को हम बिल्कुल भी नहीं भुला सकते, क्योंकि आज एक और शानदार नाम आता है, वो है प्रसून जोशी का. आज उनका जन्मदिन है. बहुत ही खूबसूरत कविताएं, बहुत ही खूबसूरत लेखन रहा है उनका, बहुत ही खूबसूरत गीत उन्होंने लिखे हैं.

0: और अभी हम इतनी जल्दी बॉलीवुड को नहीं छोड़ने वाले हैं। आज ही के दिन में जन्म हुआ था एक ऐसे व्यक्ति का जिसने संगीत की दुनिया में बहुत कम काम किया लेकिन बहुत अच्छा काम किया, नाम राम लक्ष्मण का। और 1942 में उनका जन्म हुआ था, लेकिन जिस मूवी के लिए उन्होंने संगीत दिया था उसे हम कभी नहीं भूल सकते, मैंने प्यार किया। हम आपके हैं कौन, छोटे से मेडली है राम लक्ष्मण के संगीत के साथ, हम उनको याद करते हैं।
1: मैं

0: आप सभी के आज के संस्करण में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये अंक आपको बहुत पसंद आया होगा। खूबसूरत गीत का मजा लीजिए और इजाजत दीजिए मुझे नवीन और तन्वी को।
1: थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ वंडरफुल डे।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्रेडिश पर हमारी नशा जारी है। सुबह के 9:50 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशे की जाएंगी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप फहीम अहमद से खबरें सुनिए। सरकार ने कहा है कि एक शख्स से दूसरे शख्स तक UPI लेनदेन पर कोई चार्जेस आयद नहीं होंगे, खा कितनी ही रकम मुंतकिल की गई हो। महाराष्ट्र सरकार ने 2025-26 के पेराई के सीजन के लिए शक्कर मिलों को नर्म शरायत के कर्जे फराहम करने का फैसला किया है, ताकि किसानों के बकायाजात अदा किए जा सकें। दिल्ली सरकार ने आशा कारकुनों के लिए माहाना तरगीबी रकम 3,000 रूपये से दोगुना करके 6,000 रूपये करने का फैसला किया है। कौमी राजधानी में कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले 10,000 तलबा के लिए हॉस्टल भी बनाए जाएंगे। भारत अमरीका मुश्तरका फौजी मश्क युद्ध अभ्यास उत्तराखंड में औली और राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हो रही है। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट ने भारत के साथ आजादाना तजारत के समझौते को नाफिज करने के लिए मुतल्लिका बिल को मंजूरी दे दी है। और मर्दों की क्रिकेट में भारत ने दूसरे T20 मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। इस तरह भारत ने 2-0 की सबकत हासिल करके 3 मैचों की सीरीज अपने नाम कर ली है। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने वाजे किया है कि UPI के जरिए एक फर्द से दूसरे फर्द के दरमियान खा कितनी ही रकम का लेन देन किया गया हो, इस P2P लेन देन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। वजारत खजाना ने बताया कि कारोबारियों के लिए 2,000 रूपये तक की रकम की अदायगी और छोटे कारोबारियों के लिए जीरो मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR फ्रेमवर्क के तहत लेन देन भी मुफ्त रहेगा। वजारत ने बताया कि नतीजतन सभी P2M लेन देन का तकरीबन 96% हिस्सा इस उसूल से मुतासिर नहीं होगा। NPCI ने बताया कि UPI की मर्चेंट डिस्काउंट शरह का नजरसानी शुदा फ्रेमवर्क कुछ खास कारोबारी लेन देन पर आयद किया गया है। ये फ्रेमवर्क अगले महीने की 15 तारीख से लागू होगा, जबकि UPI सार्फिन के लिए मुफ्त रहेगा। हमारे नमानिगार ने बताया है कि छोटे कारोबारियों के हाथों UPI के इस्तेमाल को फरोग देने के लिए MDR की मजमुई हसूलियाबी के 5% हिस्से से एक खसूसी फंड कायम किया जाएगा। महाराष्ट्र काबीना ने इमदाद बामी शक्कर मिलों के लिए तकरीबन 750 करोड़ रूपये के नर्म शरायत के कर्जों को मंजूरी दे दी है, ताकि 2025-26 के पेराई सीजन के लिए गन्ना किसानों के वाजिब और मुनाफा बख्श कीमतों के बकायाजात अदा किए जा सकें और 2026-27 के सीजन के लिए मदद की जा सके। दिल्ली सरकार ने आशा कारकुनों के लिए माहाना मुकर्रा तरगीबी रकम को दोगुना करने का ऐलान किया है। अभी तक यह रकम 3,000 रूपये थी, जिसे 6,000 रूपये कर दिया गया है। यह फैसला कल नई दिल्ली में वजीर आला रेखा गुप्ता की सदारत में मुनक़िदा एक काबीना मीटिंग में किया गया। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में रियासती काबीना ने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG का इलाकाई मरकज कायम करने की खातिर अयोध्या की मिल्कीपुर तहसील में 26 हेक्टेयर बंजर जमीन उम्र दाखिला की मरकजी वजारत को मुंतकिल किए जाने की मंजूरी दे दी है। छत्तीसगढ़ का रियासती इंतखाबी कमीशन नवा रायपुर में रियासती इंतखाबी कमिश्नरों की एक दो रोजा ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस मुनाकिद कर रहा है, जो आज से शुरू हो रही है। इंतखाबी कमिश्नरों की इस 32वीं कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह गवर्नर रामेंडे का करेंगे। मुख्तलिफ रियासतों के इंतखाबी कमिश्नर, तीसरे दर्जे के पंचायती राज इदारों

0: और इन पेड़ों के दरमियान रिहायशी मकानात बनाना और कुदरत के मनाजर से लुत्फानदोज होना पेड़ लगाने के मकसद में शामिल था।
1: उसी रिवायत को हुमायूं ने भी जारी रखा। आप दिल्ली में हुमायूं का मकबरा और उसका खूबसूरत बगीचा निजामुद्दीन में देख सकते हैं।
2: पेड़ लगाने की रिवायत को मजीद फरोग देने वालों में शेरशाह सूरी का नाम भी लिया जा सकता है। उसने राहगीरों, गरीबों और आम आदमी को तपती गर्मी, लू और आंधियों से बचाने के लिए नेशनल हाईवे बनवाया, जिसने अहम शहरों और दारुल हुकूमतों के दरमियान राब्ता कायम किया। उसने लंबी चौड़ी सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े सायेदार दरख्तों को लगवाकर पेड़ और कुदरती माहौल को नजरानाए अकीदत पेश किया। शेरशाह सूरी मार्ग के दोनों तरफ घने सायेदार दरख्त आज भी पेड़ों की रिवायत का जीता जागता नमूना है।
0: मुगलिया दौर में जहांगीर और शाहजहां ने तो कश्मीर से जनूबी हिंद के कई हिस्सों में बड़े बड़े नामी बगीचे तैयार कराए, पेड़ों और बगीचों के लिए अलग शोभे खोले। निषाद बाग, पिंजौर के बाग और शालीमार बाग और न जाने कितने बागात आज भी देखे जा सकते हैं।
1: उसी रिवायत को बहुत से जाट राजाओं ने भी आगे बढ़ाया। भरतपुर और उसके अतराफ के बागात उस शानदार रिवायत की आज भी याद दिलाते हैं।
2: आजाद हिंदुस्तान के मेमार हिंदुस्तान के पेड़ों के तई एहतराम की रिवायत से बखूबी वाकिफ थे। हिंदुस्तान के आईन में जहां एक शहरी के जिंदा रहने के हक का एहतराफ किया गया है, वहां आर्टिकल 48 में कहा गया है कि हुकूमत माहौलियाती निजाम की हिफाजत और उसमें सुधार लाने के लिए और मुल्क के जंगलात और जंगल में रहने वाले जानदारों की हिफाजत की पूरी कोशिश करेगी।
0: आर्टिकल 51 के एक हिस्से में कहा गया है, शहरियों पर लाजिम है कि वो कुदरती माहौल जिसमें जंगलात, झीलें, नदियां और जंगल के दीगर जानदार शामिल हैं की हिफाजत और उसमें सुधार लाया जाए।
1: दूसरे लफ्जों में ये कहा गया है कि हर शहरी का ये बुनियादी फर्ज है कि वो समाज की भलाई और मुल्क की तरक्की के लिए कुदरती माहौल की हिफाजत करे और उसमें मजीद बेहतरी लाने के लिए हुकूमत का तआवुन करे।
2: हिंदुस्तान का नेशनल फॉरेस्ट एक्ट जो 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरपरस्ती में लिखा गया, दरअसल वाजे अल्फाज में ये तय करता है कि पूरे हिंदुस्तान की कुल जमीन का 1/3 हिस्सा जंगलात से ढका होना चाहिए। पहाड़ी इलाकों में जंगलात 60% होना चाहिए और मैदानी इलाकों में 20% होना चाहिए।
0: हम कुछ हकायक की तरफ आपकी तवज्जो मबसूल कराना चाहते हैं ताकि यौम माहौलियात एक तरह से यौम एहतसाब भी हो। माहौलियाती निजाम की हकीकी तस्वीर की अक्कासी करने में ये उम्मीद मुस्बिर है कि हम इस मैदान से निकलने वाले चैलेंजों का कैसे मुकाबला करें ताकि हमारी जिंदगी में मजीद बेहतरी आए और माहौल से इंसान का रिश्ता फिर से उस्तवार हो जाए।

0: पेड़ों के गिरने से जो माहौलियाती बहरान पैदा हुआ है उसका कुल हिंद जायजा इस तरह से लिया जा सकता है कि हम अलग अलग इलाकों की तफसीलात पर गौर करें।
1: सबसे पहले हम हिमालय की मगरबी सिमत पर बसने वाली आबादी में पेड़ों की हालत का मुआयना करते हैं। तमाम हिंदुस्तान के जंगलात का एक चौथाई हिस्सा यहाँ पाया जाता है। इस इलाके की कहानी कुछ इस तरह से है कि 2000 मीटर ऊंचाई से नीचे जंगलात और पेड़ों का सिलसिला गायब होना शुरू हो जाता है।
2: 3000 मीटर तक की ऊंचाई पर यहाँ के जंगलात का एक तिहाई हिस्सा हुआ करता था, जो मुख्तसर होते होते 6 से 8 फीसदी रह गया है।
0: जम्मू और कश्मीर, यहाँ पेड़ काटे जाने की 3 बुनियादी वजूहात हैं। सबसे अहम सबब लकड़ी का तिजारती इस्तेमाल है, जो शुरू में सिर्फ इन इलाकों तक महदूद था जहाँ दरिया बहता था। ऊपर के इलाकों में पेड़ों के तने काट कर दरिया में डाल दिए जाते थे, जो बहकर मैदानी इलाकों में बआसानी पहुँचा दिए जाते थे। मगर जदीद दौर में सड़कें बनी और आमदोरफ्त के वसाइल में आसानी हुई और लकड़ी की तिजारत मजीद फरोग पा गई। आज बड़े बड़े चिनार के दरख्त आम तौर से देखने को नहीं मिलते। इस बात का अंदाजा यूं भी लगाया जा सकता है कि 1947 में जंगलात से होने वाली आमदनी 85 लाख रुपए सालाना थी, जो बढ़कर 1980-81 में तकरीबन 34 करोड़ रुपए हो गई। आप बखूबी अंदाजा कर सकते हैं कि आमदनी के बढ़ने के पीछे वहाँ के दरख्तों का क्या हश्र हुआ होगा।
1: जम्मू कश्मीर में पेड़ों के काटे जाने की और जंगलात के साफ होने की दूसरी बड़ी वजह यह है कि यहाँ सड़कों की तामीर बगैर ये सोचे हुई है कि पेड़ गिराए जाने के बाद मिट्टी में बंधाव पैदा करने के मुख्तलिफ तरीकों को कैसे अपनाया जाए। इसके नतीजे में पहाड़ों की चट्टानें अपने मलबे के साथ अक्सर सड़कों पर गिर जाती हैं।
2: पेड़ों के खत्म होने की जम्मू कश्मीर में तीसरी बड़ी वजह यह है कि चीड़ के दरख्तों में शिगाफ लगाकर गोंद निकाला जाता है। ये गोंद बहुत महंगा बिकता है और इससे कुछ ऐसे कीमियाई मरकबात तैयार किए जाते हैं जिनकी मदद से प्लास्टिक, रबर, बारूद, चिपकाने की लेस, छपाई की रोशनाई, दवाएं, इत्र, वार्निश, लाख और सिंगार का सामान, तारपीन का तेल भी इसी से तैयार किया जाता है।
0: इन सब चीजों के बेचने से इस कदर मुनाफा होता है कि दरख्तों से गोंद निकालने का अमल उसी मुनासबत से दरख्तों के लिए नुकसानदेह साबित हो जाता है। गोंद का निकलना ऐसा ही होता है जैसे दरख्तों का खून निचोड़ लिया गया हो। नतीजे के तौर पर दरख्त सूख जाते हैं या बेहद कमजोर हो जाते हैं।
2: हिमाचल प्रदेश, यहाँ की सूरत हाल जम्मू कश्मीर के मुकाबले में कोई खास मुख्तलिफ नहीं है। 1950 में यहाँ की कुल जमीन का 48.5% हिस्सा जंगलात से घिरा हुआ था और अब यही जंगलात मुख्तसर होकर सिर्फ 18% रह गए हैं।
0: दूसरे लफ्जों में पिछले 25 वर्षों में जंगलात का 1% हिस्सा हर साल अपने पेड़ गंवाता रहा है।
1: कुल्लू की वादी को ही लीजिए, एक जमाने में यहाँ देवदार के दरख्त 150 फुट ऊंचे और 10 फुट से ज्यादा घेरे का तना लिए हुए होते थे, मगर अब यह किस्सा एक पारी ना हो गया है।
2: यहाँ दरख्तों की लकड़ी सबसे ज्यादा सेबों की तिजारत में मुआविन साबित होती है। इसकी मदद से सेब की

0: पेटियां तैयार की जाती हैं। सेब की ये पेटियां कितनी ज्यादा होंगी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पूरे मुल्क के सेब की पैदावार का 1/3 हिस्सा हिमाचल प्रदेश में पैदा होता है।
1: यहाँ लकड़ी बेचने का कारोबार बड़े पैमाने पर होता है। तकरीबन 2 लाख दरख्त हर साल गिराए जाते हैं, जिसमें एक दरख्त की औसतन कीमत 600 रुपए होती है। इसी दरख्त की कीमत अमृतसर पहुंचते पहुंचते 2000 रुपए से 2500 रुपए तक पहुंच जाती है।
0: उत्तर प्रदेश, यहाँ के पहाड़ों से मुत्तसिल मैदानी इलाकों के बेशतर जंगलात काटकर यहाँ की जमीनें काश्त के काम में लाई जाती हैं। यूपी के ज्यादातर जंगलात उत्तराखंड के इलाके में इकट्ठा हैं। यहाँ भी पेड़ों की काट छांट इतनी हुई है, उनका घनापन तकरीबन निस्फ के बराबर रह गया है। इसके नतीजे में मुख्तलिफ नदियों में सैलाब अब ज्यादा जल्दी जल्दी आते हैं।
2: उत्तराखंड में एक जमाना वो था जब लोग जंगल में पाए जाने वाले शेर से डरा करते थे। अब यहाँ शेर से ज्यादा सैलाब और चट्टानों के फिसलकर गिरने से दहशत फैलती है।
1: पेड़ों के काटे जाने का एक बुरा अंजाम ये हुआ कि गांवों में जलाने की लकड़ी कमयाब होनी शुरू हो गई है। यहाँ की औरतों को आमतौर से 1 किलोमीटर से 15 किलोमीटर तक की मुसाफत सिर्फ ईंधन की लकड़ी जमा करने में तय करनी पड़ती है।
0: तन्हा चमोली जिले में तकरीबन 1100 किलोमीटर लंबी पक्की सड़कों का ताना बाना बिछा हुआ है, जिसने पेड़ काटने वाले ठेकेदारों की बदउनवानियों को मजीद फरोग दिया है। पेड़ काटे जाने का ये सिलसिला तिब्बत की सरहद तक फैला हुआ है। दूसरे इलाकों की तरह सड़कों के बनने से न सिर्फ पेड़ काटे गए हैं, बल्कि मिट्टी की जरखेजी को भी नुकसान पहुंचा है।
2: इन इलाकों में पेड़ काटने का सबब यहाँ आने वाले सैयाह भी हैं। सैयाही के सबब ईंधन की लकड़ी की जरूरत 100 गुना ज्यादा बढ़ जाती है।
1: जरा सोचिए कि इस सूरत हाल के पेश नजर वैली ऑफ फ्लावर्स का क्या हश हुआ होगा।
0: ये इलाका इस वजह से भी महफूज था क्योंकि लोगों के बाद मजहबी और तहजीबी अकायद ने इस वादी के लिए बड़ा एहतराम पैदा किया था। मसलन लोगों का ख्याल था कि इस वादी में जूते पहनकर नहीं जाना चाहिए, बगैर इबादत और दुआ के फूल नहीं तोड़ने चाहिए, वादी में शोर नहीं मचाना चाहिए।
2: आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के इस रवैये से वैली ऑफ फ्लावर्स के फूल कितने खुश रंग और किस कदर तादाद में खिलते होंगे, मगर ये बात भी तारीख की याददाश्त का हिस्सा बनकर रह गई है।
0: हिमालया का शुमाली मशरकी हिस्सा, इस इलाके में आसाम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश आते हैं। पूरे मुल्क के पेड़ों और जंगलात का 1/7 हिस्सा यहाँ पाया जाता है, इसलिए यहाँ मुतअद्दद किस्म की चिड़ियाँ और जंगली जानवर पाए जाते हैं। मगर यहाँ के पेड़ों और जंगलात की तबाही की कहानी बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है।
2: यहाँ इक्तसादी तरक्की के नाम पर एक तरफ सड़कें और रेल की पटरियाँ बिछाई गयी, मगर दूसरी तरफ पेड़ों का भी खूब खूब सफाया हुआ।
1: ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे किनारे घने सदाबहार पेड़ हुआ करते थे, जो ट्रॉपिकल इलाकों से नीचे की खसूसियात होती हैं। इन पेड़ों और जंगलात के परवरदा तकरीबन 150 मुख्तलिफ कबायली जमायतें हुआ करती थीं। गर्चे वहाँ काश्त का रवायती तरीका झूम के नाम से आज भी अपनाया जाता है,
0: मगर पेड़ और इंसान के दरमियान जो खुशगवार हम आहंगी थी, उसमें बड़ी हद तक तनाव पैदा हो गया है। जंगलात का रकबा कम हो रहा है, इंसानी आबादी बढ़ रही है, मिट्टी की जरखेजी कम हो रही है, जिसके नतीजे में बंजर जमीन का फैलाव बढ़ रहा है।
2: मध्य प्रदेश, इस सूबे के जंगलात से होने वाली आमदनी दूसरे तमाम इलाकों से सबसे ज्यादा है। जंगलात से मजीद आमदनी बढ़ाने के लिए सूबाई हुकूमत ने 1976 में वर्ल्ड बैंक के साथ एक प्रोजेक्ट पर दस्तखत किए, जिसके रूह से 20,000 हेक्टेयर के जंगलात साफ करके उनमें चीड़ के दरख्त 20 साल तक लगाए जाएंगे। इससे तकरीबन 50,000 टन लकड़ी का गूदा हर साल दस्तयाब होगा और सूबे की पेपर मिल का काम चलेगा।
1: देखने में ये आया कि जिला बस्तर में 22,000 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे में जहां साल के पेड़ बड़ी तादाद में नजर आते थे, उन्हें काट दिया गया और उनकी जगह चीड़ के दरख्त लगा दिए गए।
0: यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि साल के दरख्त काट कर अगर चीड़ के दरख्त लगा दिए गए तो ऐसी क्या कयामत आ गई? आखिर चीड़ भी तो दरख्त है। बजाय इसके कि हम कोई जवाब तैयार करें, आइए हम बस्तर के कबायली लोगों की निगाह से साल के पेड़ों की अहमियत का अंदाजा लगाते हैं।
2: साल का दरख्त एक कबायली जिंदगी की रोजमर्रा की जरूरतों का हिस्सा है। इसकी लकड़ी टीक के पेड़ की लकड़ी से भी ज्यादा मजबूत होती है, घर बनाने के काम आती है। इसके पत्तों की प्लेटें और दोने बनाए जाते हैं।
0: एक और दरख्त जो कबायलियों की जिंदगी का हिस्सा है, चीड़ के दरख्तों को लगाने की मुहिम में एक बड़े पैमाने पर खत्म हुआ।

हयात के मुहाफिज जंगलात, अभी आप डॉक्टर मोहम्मद तालिब का तहरीर करता ये फीचर सुन रहे थे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम रेंज 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DT फ्रेडिश पर आप हमारी नशियात सुन रहे हैं, मेरी पसंद। ये प्रोग्राम लेकर आपका मेजबान नईम हाजिर खिदमत है। आप सभी को मेरा आदाब। प्रोग्राम की पहली पेशकश शान और कैलाश खेर की आवाजों में फना फिल्म का ये नगमा, नगमा निगार प्रसून जोशी।

अभी आप सुन रहे थे तेरी मेरी कहानी फिल्म का नगमा वाजिद और श्रेया घोषाल की आवाजों में। और ये आप सुनिए शान और आमिर खान का गाया हुआ ये नगमा, फिल्म है तारे जमी पर।

0: भाई इसमें झगड़ने की क्या बात है यार, मैं तो सुन, अरे बड़ा
1: जी मेरी पसंद प्रोग्राम के आखिर में सुनिए, फिर मिलेंगे फिल्म का नगमा सोनू निगम और श्रेया घोषाल का गाया हुआ।

शैला ने उसे जोर जोर से झंझोर डाला। उठो अभी, देखो कौन आया है, कौन आया है। फलक हड़बड़ा कर उठ बैठी। अमरीका वाले बड़े अब्बू के बेटे सात भाई आए हैं। अच्छा, एक झटके से फलक ने बिस्तर छोड़ दिया। काफी अरसे पहले बड़े अब्बू अपनी फैमिली के साथ अमरीका चले गए थे। उस वक्त हम बहन भाई बहुत छोटे थे। उनके दो बच्चे साद और जेबा भी छोटे थे। अब तो जैसे उनकी शक्लें भी ठीक से याद नहीं है। देखने का इश्तियाक लिए दोनों बहनें ड्राइंग रूम की तरफ चल दी। अस्सलाम वालेकुम साद भाई। साद ने चौंक कर देखा। शहला ने अपना तारुफ कराया

और फिर सिमटी हुई खड़ी फलक की तरफ इशारा करते हुए बोली, और ये मेरी प्यारी सी बड़ी बहन है फलकनाज। साद ने खुशदिली से दोनों के सलाम का जवाब दिया। अब्बा जान ने साद से दरियाफ्त किया कि भाई साहब नहीं आए, तो साद ने बताया कि जेबा के इम्तहान से फारिग होकर हम सबका यही मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार करने का इरादा है। अब्बा ये सुनकर बहुत खुश हुए। फलक चाय का इंतजाम करने की गरज से उठी तो साद की नजरें उसका ताकुब करने लगी और उसका दिल गुनगुना उठा।

चाय पीने के बाद साद और जावेद, जो फलक का भाई था, दोनों फूफी से मिलने चले गए। 9:30 बज चुके थे। साद और जावेद अभी तक नहीं आए थे। फलक ने खाने में बहुत एहतमाम कर रखा था। शहला को शरारत सूझी और फलक के कान में सरगोशी के अंदाज में बोली, साद भाई बहुत स्मार्ट है ना आपी? और फलक ने उसकी तरफ घूर कर देखा तो वो खामोश होकर हंस गई। अचानक लाइट चली गई। फलक ने किचन में मोमबत्ती तलाश करने के लिए माचिस की तीली जलाई और इधर उधर मोमबत्ती देखने लगी कि अचानक उसकी नजर दरवाजे की सिमत उठ गई। साद जाने कब आकर खड़ा हो गया था और उसे बड़ी दिलचस्प नजरों से देख रहा था।

एक दिन साथ सुबह सुबह फलक से मिलने उनके घर पहुंच गया। किस्मत उस पर मेहरबान थी, चचा कहीं काम से निकल चुके थे और चची पड़ोस में गई हुई थी। शैला कॉलेज के लिए निकल चुकी थी। फलक की तबीयत नासाज थी, इसलिए वो कॉलेज नहीं गई थी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो फलक ने दरवाजा खोला। साद सामने खड़ा था। वो अचानक साद को देखकर सटपटासी गई। घर में तो कोई नहीं है, तो क्या अंदर घुसने नहीं दोगी? वो शर्मिंदा होकर बोली, नहीं ऐसी बात नहीं है, और उसने साद को अंदर आने के लिए रास्ता दिया। मैं चाय लेकर आती हूँ। वो चाय बनाने की गरज से मुड़ी, लेकिन साद ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, इतने अच्छे मौके को मैं यूं ही जाया नहीं होने दूंगा। मैं तुमसे ही मिलने आया था। पूछोगी नहीं क्यों? वो फलक की लरजती पलकों को इश्तियाक से देखते हुए बोला, मैं जिंदगी भर के लिए तुमको अपनाना चाहता हूँ। बोलो, क्या तुम मेरी बनना पसंद करोगी? तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? फलक की आंखें शर्म से बोझल हुई जा रही थी। उसका हलक खुश्क हो चला था। प्लीज फलक, मेरी बात का जवाब दो। जवाब मेरे पास नहीं है। अम्मा अब्बा जो फैसला करेंगे वो मुझे मंजूर है। वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हारी भी तो कोई पसंद होगी। शर्म से फलक का चेहरा गुलनार हो गया। साद ने इत्मीनान का सांस लिया और कहा, ठीक है, मम्मी पापा के आ जाने के बाद मैं उन्हें चचा चची के पास रिश्ते की बात के लिए भेजूंगा। फलक, आज मैं बहुत खुश हूँ। साद की गर्म निगाहों की ताब न लाकर फलक जल्दी से किचन में घुस गई और साद जाने के लिए मुड़ गया और फलक को प्यार की हसीन वादियों में छोड़ गया। फलक को इस बात का यकीन नहीं था कि साद इतनी जल्दी अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगा। फलक सोते जागते एक ही सपना देखने लगी थी।

और फिर एक दिन ताया और उनकी फैमिली अमेरिका से अचानक आ गए। साद ने सुबह आकर खुशखबरी सुनाई और सब उनसे मिलने पहुंच गए। फूफी और उनके घर वाले भी मौजूद थे। बहुत जल्दी बेतकल्लुफी की फिजा पैदा हो गई। साद ने अपना क्लिनिक सेट कर लिया था और अब उसने बाकायदा प्रैक्टिस भी शुरू कर दी थी। बड़े अब्बू और बड़ी अम्मी को उनकी शादी की फिक्र लाहक हुई। उनकी नजर में फलक और शहला दोनों थीं। उन्हें दोनों लड़कियां पसंद थीं। साथ से पूछा तो उसने फलक के लिए रजामंदी जाहिर की। तो ये लोग रिश्ते की बात पक्की करने के लिए फलक के घर पहुंच गए। साथ की खुशी की इंतहा नहीं थी। आज उसकी मन की मुराद पूरी होने जा रही थी। वो बहुत मगन था। बड़े अबू ने चचा से फलक का हाथ मांगा तो चचा और चची दोनों सोच में पड़ गए और बोले, हम सोच का जवाब देंगे। बड़े अबू अपनी दौलत और इमारत के घमंड में वक्त की नजाकत को महसूस किए बगैर गोया हुए। अरे मोहलत तो वहां मांगी जाती है जहां जान पहचान ना हो। फलक आखिर हमारी ही बच्ची है। अब्बा अम्मी का मुंह तकने लगे। उन दोनों का ख्याल था कि रिश्ता बराबर वालों में ही अच्छा लगता है। क्योंकि उनकी माली हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी लिहाजा वो शशोपंच में पड़ गए। अरे भाई आपने तो मसला बना लिया। अब्बा ने कहा, हम फैसला करने से पहले फलक की पसंद मालूम करना चाहते हैं। बस इतनी सी बात है, लो हम अभी फलक को बुलाकर उसकी पसंद मालूम किए लेते हैं। ये कहकर बड़े अब्बा ने फलक को आवाज दे दी। फलक घबराई हुई कमरे में दाखिल हुई। अभी वो कुछ समझ भी नहीं पाई थी कि ताया अब्बू ने फलक को बराहे रास्त मुखातिब करते पूछा, कहो फलक बेटा, तुम्हें साथ के साथ शादी पर कोई एतराज तो नहीं है? फलक को अचानक इस सवाल की तवक्को नहीं थी। उसकी आवाज हलक में अटक गई। उसने शर्म से बोझल पलके उठाकर अम्मी अब्बू की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर तफक्कुर की लकीरें रक्सा थी। उसका दिल अम्मी अब्बू की परेशानी पर कटकर रह गया। उसने हिम्मत करके पुर एतमाद लहजे में कहा, सॉरी बड़े अब्बू, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। बड़े अब्बू बड़ी अम्मी जैसे सन्नाटे में रह गए। साद की हालत तो बिल्कुल अबतर थी। बड़े अब्बू यूरोप में रहकर मशरकी तौर तरीके जैसे बिल्कुल भुला बैठे थे। भरी महफिल में एक मशरकी लड़की से इस तरह के सवाल का जवाब मांगना यूं भी मुनासिब नहीं है। साद के मुंह से एक सर्द आह निकली। पापा ने जल्दबाजी करके उसकी दुनिया ही जैसे उजाड़ कर रख दी थी। उधर फलक की हालत भी अबतर थी। वो इतनी मॉडर्न भी नहीं थी कि सब बड़े छोटों के सामने अपनी पसंद का इजहार बेबाकाना कर देती। एक तूफान था जो गुजर चुका था लेकिन अपनी तबाहियों की निशानियां छोड़ गया था। फलक की दुनिया अंधेरी हो गई थी।

0: जब याद आए बहुत याद आए।
1: फलक की शादी से इनकार करने के बाद बड़े अब्बू और अम्मी ने साथ को बहुत समझाया कि वो कहीं और शादी कर ले, लेकिन साथ अपनी जिद पर अटल था, अगर फलक नहीं तो कोई मेरी जिंदगी में नहीं आ सकती। अगर आप लोग उसके इनकार को इकरार में तब्दील कर सकते हैं तो ठीक है, वरना मैं उम्र भर शादी नहीं करूंगा। ये कहते हुए साथ की आवाज भर्रा गई। वो तेजी से उठकर अपने कमरे में चला आया। बहुत सारे दिन गुजर गए। एक दिन फूफी साथ के घर आई और ये मुजदा सुना गई कि हारिस और फलक की निस्बत तय हो गई है। साथ की थोड़ी बहुत उम्मीद भी टूट गई और अब वो बरसों का मरीज लगने लगा। हारिस को उसने कभी भी पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखा था, लेकिन बार बार इनकार उसकी शख्सियत को मुश्तबा कर सकता था, लिहाजा उसने खामोश रहकर इस जहर को पी लिया जिसकी तलछट से उसकी तमाम जिंदगी जहर आलूद हो गई। शादी के बाद फलक को महसूस हुआ कि हारिस ने उससे इंतकामन शादी की थी। वो साद और फलक के रिश्ते के बारे में भी जान चुका था और दिल में तरह तरह के शकूक पालने लगा था। फलक ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके जहन से ये खुराफात निकाल नहीं सकी। एक दिन साद चचा के घर गया तो शहला ने उसे बताया कि हारिस भाई आप ही को आपके नाम का ताना देते रहते हैं और यहाँ आने पर पाबंदी लगा रखी है। ये सुनकर साद को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो तो अभी तक इस गुमान में था कि फलक बहुत खुश है, उसने अपनी मर्जी से ये शादी की है। लेकिन शहला की जबानी तमाम हालात सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। शहला ने कहा, ये सब आपकी वजह से हुआ है साद भाई, अब मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप जल्द अज जल्द शादी कर लें ताकि हारिस भाई के दिल से शकूक निकल जाए। साद ने इनकार किया तो शहला ने झुंझलाकर कहा, आखिर आप शादी से दामन क्यों मचा रहे हैं? शहला, मेरे पास किसी को देने के लिए कुछ बाकी नहीं बचा है, तुम खूब जानती हो मैं अधूरा शख्स हूँ, मैं फलक को ता उम्र भूल नहीं सकता। मेरे अधूरेपन के साथ कोई लड़की समझौता नहीं कर सकती, क्या तुम? बराहे रास्त शहला की आंखों में देखते हुए वो बिला इरादा उसे चैलेंज कर गया और शहला शशदर सी रह गई। आई एम सॉरी शहला, मैं किसी को मोहब्बत का फरेब नहीं दे सकता और जाने मुझे कौन फरेब खाएगी भला। मैं, शहला ने पूरे एतमाद लहजे में साद का चैलेंज कबूल करते हुए अपना फैसला सुना दिया। बेवकूफ मत बनो, मैं तुम्हें ऐसा अहमकाना फैसला करने की इजाजत नहीं दूंगा। साद, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता शहला। उसके बाद कई बार साद ने शहला को समझाने की कोशिशें की, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही और आखिर शहला की जिद रंग लाई और साद ने उसकी जिद के आगे हथियार डाल दिए। शहला ने साद से वादा किया कि वो जिंदगी भर उससे कुछ नहीं मांगेगी और साद ने जिच होते हुए कहा, मुझे इस बात का इत्मीनान है कि तुम सब कुछ जानती हो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी भर हर गांव पर मुझे इसका एहसास दिलाते रहेंगे। शहला ने नजरें झुकाते हुए कहा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं तुम्हारे पास ये कहने आया था कि तुम सारी बातें भूल जाओ, मैं अब इस बात को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहता हूँ, अलबत्ता मुझे तुम्हारी तरफ मायल होने में कुछ वक्त लगेगा, मैं इंतजार कर लूंगी, शहला ने शर्माते हुए कहा। फलक को शहला और साद के रिश्ते का सुनकर बहुत खुशी मिली और उसने शहला से कहा, मुझे यकीन है कि तुम साद के साथ बहुत खुश रहोगी, वो बहुत अच्छे इंसान है, वो तुम्हें हमेशा खुश रखेंगे। ये कहते हुए फलक के लहजे में दुनिया भर का दर्द सिमट आया था और शहला सारे वजूद से कांप गई थी। अभी वो अपने आप को संभाल भी नहीं पाई थी कि साद उधर निकल आए। अरे, दोनों किचन में खुसर खुसर में लगी हो और वहाँ सब चाय के इंतजार में सूख रहे हैं। शहला ने चाय की ट्रे फलक को थमाते हुए कहा, आप ही आप चाय ले जाएं, तुम भी आओ।

ये कहकर फलक चाय की ट्रे पकड़े साथ के करीब से गुजर गई। शैला ने जो कर्ब फलक के चेहरे पर देखा था वही कर्ब साथ के चेहरे से भी आया था। ये देखकर शैला को अपना दिल बैठता हुआ महसूस हुआ। अभी अभी तो साथ ने कहा था कि वो अपनी जिंदगी के इस बाब को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देना चाहता है, लेकिन फलक के लिए अब भी उनके दिल के दरवाजे वाह हैं। शैला ने अपने वजूद का एहसास दिलाने की गरज से खांसा तो साद ने उसकी तरफ देखे बगैर फलक के अल्फाज दोहराते हुए कहा, तुम भी तो आओ शैला, और फलक के पीछे हो लिया। शैला उन दोनों के पीछे फौरन न जा सकी क्योंकि आंखों की नमी को छुपाने के लिए उसे कुछ वक्त दरकार था।

0: ठीक ही लगी। अभी आप सुन रहे थे मोहतरमा रईसा परवीन की तहरीर करदा ये गीतों भरी कहानी। तरतीब पेशकश परवीन सलाम फरीदी की थी। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। बीगम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फेडेश पर आप हमें सुन रहे हैं। दिन के 12 बजे चाहते हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप फहीम अहमद से खबरें सुनिए। सरकार ने कहा है कि एक शख्स से दूसरे शख्स तक यूपीआई लेन देन पर कोई चार्जेस आयद नहीं होंगे, खा कितनी ही रकम मुंतकिल की गई हो। बैनुल-अक़वामी माली फंड आईएमएफ ने कहा है कि भारत मजबूत इक्तसादी बुनियाद और प्राइवेट शोबे की मुतहरिक पॉलिसियों की बदौलत आलमी सतह पर तरक्की की नई लहर में सरकर्दा रोल अदा कर सकता है। भारत अमरीका मुश्तरका फौजी मश्क युद्ध अभ्यास उत्तराखंड में औली और राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हो रही है। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट ने भारत के साथ आजादाना तजारत के समझौते को नाफिज करने के लिए मुतल्लिका बिल को मंजूरी दे दी है। और मर्दों की क्रिकेट में भारत ने दूसरे T20 मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। इस तरह भारत ने 2-0 की सबकत हासिल करके 3 मैचों की सीरीज अपने नाम कर ली है। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने वाजे किया है कि यूपीआई के जरिए एक फर्द से दूसरे फर्द के दरमियान खा कितनी ही रकम का लेन देन किया गया हो, इस P2P लेन देन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। वजारत खजाना ने बताया कि कारोबारियों के लिए 2,000 रूपये तक की रकम की अदायगी और छोटे कारोबारियों के लिए 0 मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR फ्रेमवर्क के तहत लेन देन भी मुफ्त रहेगा। वजारत ने बताया कि नतीजतन सभी P2M लेन देन का तकरीबन 96% हिस्सा इस उसूल से मुतासिर नहीं होगा। NPCI ने बताया कि UPI की मर्चेंट डिस्काउंट शरह का नजरसानी शुदा फ्रेमवर्क कुछ खास कारोबारी लेन देन पर आयद किया गया है। ये फ्रेमवर्क अगले महीने की 15 तारीख से लागू होगा, जबकि UPI सार्फिन के लिए मुफ्त रहेगा। हमारे नमानिगार ने बताया कि छोटे कारोबारियों के हाथों यूपीआई के इस्तेमाल को फरोग देने के लिए MDR की मजमूई हसूलियाबी के 5% हिस्से से एक खसूसी फंड कायम किया जाएगा। वजारत खजाना ने कहा कि ये चार्जेस किसी फर्ज से किसी कारोबारी को 2,000 रूपये से ज्यादा की रकम के P2M लेन देन पर आयद होंगे। वजारत ने बताया कि यूपीआई ऐप फराहम करने वाली कंपनियों को वाजे तौर पर मना कर दिया गया है कि वो अपने प्लेटफॉर्म पर किसी तरह की फीस या कोई पोशीदा चार्जेस आयद न करें। वजारत ने कहा है कि बैंकों को मशवरा दिया गया है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि कारोबारी अपनी रियायती शरह MDR के चार्जेस यूपीआई लेन देन के लिए सार्फिन को मुंतकिल नहीं कर रहे हैं। 0.4% की एक बराए नाम शरह P2M लेन देन पर आयद की जाएगी और वो भी 2,000 रूपये की रकम से ज्यादा पर। अलबत्ता 75,000 रूपये और इससे ज्यादा की रकम वाले लेन देन पर ज्यादा चार्जेस लिए जाएंगे। MDR की ज्यादा से ज्यादा रकम फी लेन देन ज्यादा से ज्यादा 300 रूपये होगी। बाईसवीं भारत अमरीका मुश्तरका फौजी मश्क युद्ध अभ्यास कल उत्तराखंड के औली इलाके में शुरू हुई। मश्क की इफ्तिताही तकरीब औली के गैर मुल्की तरबियती मकाम पर मुनक़िद हुई। ये मश्क उत्तराखंड में औली और राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में एक साथ की जा रही है। इस मश्क का मकसद दो तरफा दिफाई शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम बनाने के साथ साथ दोनों फौजों के दरमियान मिलकर काम करने के अमल को फरोग देना और उभरते हुए चैलेंजों से निपटना है। इस मश्क का मकसद ये भी है कि पहाड़ी और नीम पहाड़ी इलाकों में मरबूत जंगी ग्रुपों को तैनात करने के लिए दोनों फौजों की मुश्तरका फौजी सलाहियत में इजाफा किया जाए, जिसमें इन्फेंट्री के गलबे वाली कार्रवाई पर जोर दिया जाए। वजारत दफा ने बताया कि इससे दोनों फौजों के मिलकर काम करने की सलाहियत में इजाफा होगा, कार्रवाई के बेहतरीन तौर तरीकों से एक दूसरे को वाकफियत हासिल होगी और मुश्तरका मनसूबाबंदी और इसके अमल दरामद में मजबूती आएगी। ट्रंप इंतजामिया वस्ती और जनूबी अमरीका की कदामत पसंद हुकूमतों की हिमायत के लिए यूरोप और मशरक वस्ती के ममालिक के करोड़ों डॉलर की अमरीकी फौजी इमदाद में कमी कर रही है। महकमे खारजा ने कांग्रेस को इतला दी है कि वह स्लोवाकिया, शिमाली मकदूनिया, ट्यूनिस और इराक की गैर मुल्की फौजी इमदाद से 52 मिलियन अमरीकी डॉलर का रुख मोड़कर इसे पनामा, पेरू, इक्वाडोर और कोलम्बिया को मुंतकिल करेगा। महकमे खारजा के मुताबिक यह रकम हमारे पड़ोस में मनशियात की दहशतगर्दी से निपटने और नहर पनामा को महफूज रखने

0: के लिए इस्तेमाल की जाएगी। नीज ये भी कहा गया है कि मगरबी कुर्रे अर्ज को तारीखी तौर पर अमरीकी फौजी इमदाद में नजरअंदाज किया गया है। गैर मुल्की फौजी इमदाद का मकसद नकद रकम फराहम करके गरीब ममालिक को अमरीकी दिफाई ठेकेदारों से ही जंगी सामान खरीदने का पाबंद बनाना है। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट ने भारत के साथ अपने आजाद तजारती समझौते पर अमल दरामद के लिए एक बिल को मंजूरी दी है, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान महसूलात में खातिरख्वाह कमी आ जाएगी और तजारत में वसअत पैदा होगी। इस बिल को मंजूरी 29 के मुकाबले 93 वोटों से दी गई, जिसमें अपोजिशन लेबर पार्टी ने भी हिमायत का इजहार किया। न्यूजीलैंड के तजारत के वजीर टॉड मैकले ने कहा कि इस समझौते से बरामदकारों को फौरी और खातिरख्वाह फायदे हासिल होंगे। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि यह आला क्वालिटी वाला तजारती समझौता इस साल के आखिर तक लागू हो जाएगा। समझौते के तहत न्यूजीलैंड की तरफ से भारत को की जाने वाली तकरीबन 95% बरामदात पर से महसूलात हट जाएंगे। ये उनमें खातिरख्वाह कमी कर दी जाएगी। इस समझौते में शामिल की गई आधी से ज्यादा मसनूआत महसूलात से आजाद हो जाएंगी। सभी भारतीय अशिया पर न्यूजीलैंड की मार्केट में रसाई पर महसूलात आयद नहीं होंगे। न्यूजीलैंड में भारत ने अगले 15 साल के दौरान 20 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी से भी इत्तेफाक किया है। वजीर खारजा डॉ जयशंकर आज से भूटान के दो रोजा सरकारी दौरे पर रहेंगे। दौरे के दौरान डॉ जयशंकर भूटान के वजीर खारजा लियोम्पो डीएन दुंगेल के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। वो भूटान के शाह और भूटान के वजीर आजम से सभी मुलाकात करेंगे। वजारत खारजा ने कहा कि ये दौरा भारत और भूटान के दरमियान आला सतही तबादलों की रिवायत के मुताबिक है। इसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती और ताउन के मौजूदा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना है। बैनुल अक्वामी माली फंड IMF ने कहा है कि भारत मजबूत इक्तसादी बुनियाद और प्राइवेट शोबे की मुतहरिक पॉलिसियों की बदौलत आलमी सतह पर तरक्की की नई लहर में सरकर्दा रोल अदा कर सकता है। रूस और यूक्रेन ने तवानाई से मुतालिक एक दूसरे के बुनियादी ढांचे पर हमले किए हैं। अगरचे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि दोनों मुल्कों ने इस तरह के हमले रोकने से इत्तेफाक कर लिया है। यूक्रेन के अफसरान ने बताया कि रूस ने कीव और दूसरे शहरों पर रात भर में तकरीबन 200 ड्रोन दागे, जिसमें दो अफराद हलाक हो गए। इसी दौरान यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उनके मुल्क ने रूस के समारा खित्ते में सैज़रान के मकाम पर एक तेल रिफाइनरी पर हमला किया। मर्दों के क्रिकेट में भारत ने दूसरे T20 मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। इस तरह भारत ने 2-0 की सबकत हासिल करके 3 मैचों की सीरीज अपने नाम कर ली है। आखिर में खास-खास खबरें एक बार फिर। सरकार ने कहा है कि एक शख्स से दूसरे शख्स तक UPI लेन देन पर कोई चार्जेज आयद नहीं होंगे, ख्वाह कितनी ही रकम मुंतकिल की गई हो। बैनुल अक्वामी माली फंड IMF ने कहा है कि भारत मजबूत इक्तसादी बुनियाद और प्राइवेट शोबे की मुतहरिक पॉलिसियों की बदौलत आलमी सतह पर तरक्की की नई लहर में सरकर्दा रोल अदा कर सकता है। भारत अमरीका मुश्तरक फौजी मश्क युद्धाभ्यास उत्तराखंड में औली और राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हो रही है। न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट ने भारत के साथ आजादाना तजारत के समझौते को नाफिज करने के लिए मुतालिका बिल को मंजूरी दे दी है। और मर्दों के क्रिकेट में भारत ने दूसरे T20 मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। इस तरह भारत ने 2-0 की सबकत हासिल करके 3 मैचों की सीरीज अपने नाम कर ली है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव से 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्रेटेज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। मिले सुर मेरा तुम्हारा, इस प्रोग्राम में सुनिए फिल्मी दो गाने। आगाज मैंने प्यार किया फिल्म के नगमे से। आवाजें लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर, शैलेंद्र।

दिलेश्वर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम मिली जब सुनिए पत्थर के फूल फिल्म का नगमा लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम का गाया हुआ। मौसीकी तरतीब दी है राम लक्ष्मण ने।

फिलिस्तर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से। अगली पेशकश पुलिस पब्लिक फिल्म का दोगाना लता मंगेशकर और अमित कुमार का गाया हुआ। मौसिकी तरतीब दी है राम लक्ष्मण ने।

जब सुनिए हम साथ साथ हैं फिल्म का नगमा कविता कृष्णमूर्ति अलका याग्निक अनुराधा पौडवाल साथियों का गाया हुआ मौसीकी राम लक्ष्मण की।

और ये है 100 डेज फिल्म का नगमा लता मंगेशकर और SP बाला सुब्रमण्यम का गाया हुआ। नगमा निगार देव कोहली, मौसीकी तरतीब दी राम लक्ष्मण ने।

यह है प्रोग्राम की आखिरी पेशकश सुन सजना फिल्म का नगमा यसुदास और अनुराधा पौडवाल का गाया हुआ। मौसी की तरतीब दी है राम लक्ष्मण ने।

कितनी ही रकम का लेन देन किया गया हो, इस पी टू पी लेन देन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। वजारत खजाना ने बताया कि कारोबारियों के लिए 2000 रुपए तक की रकम की अदायगी और छोटे कारोबारियों के लिए जीरो मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर फ्रेमवर्क के तहत लेन देन भी मुफ्त रहेगा। वजारत ने बताया कि नतीजतन सभी पी टू एम लेन देन का तकरीबन 96% हिस्सा इस उसूल से मुतासर नहीं होगा। एनपीसीआई ने बताया कि यूपीआई के मर्चेंट डिस्काउंट शरह का नजरसानी शुदा फ्रेमवर्क कुछ खास कारोबारी लेन देन पर आयद किया गया है। यह फ्रेमवर्क अगले महीने की 15 तारीख से लागू होगा, जबकि यूपीआई सारिफिन के लिए मुफ्त रहेगी। हमारे नामनिगार ने बताया कि छोटे कारोबारियों के हाथों यूपीआई के इस्तेमाल को फरोग देने के लिए एमडीआर की मजमुई हसूलियाबी के 5% हिस्से से एक खसूसी फंड कायम किया जाएगा। वजारत खजाना ने कहा है कि ये चार्जेस किसी फर्द से किसी कारोबारी को 2000 रुपए से ज्यादा की रकम के पी टू एम लेन देन पर आयद होंगे। वजारत ने बताया कि यूपीआई ऐप फराहम करने वाली कंपनियों को वाज़ह तौर पर मना कर दिया गया है कि वो अपने प्लेटफॉर्म पर किसी तरह की फीस या कोई पोशीदा चार्जेस आयद न करें। वजारत ने कहा कि बैंकों को मशवरा दिया गया है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि कारोबारी अपनी रियायती शरह एमडीआर के चार्जेस यूपीआई लेन देन के लिए सारिफिन को मुंतकिल नहीं कर रहे हैं। 0.4% की एक बराए नाम शरह पी टू एम लेन देन पर आयद की जाएगी और वो भी 2000 रुपए की रकम से ज्यादा पर। अलबत्ता 75000 रुपए और इससे ज्यादा की रकम वाले लेन देन पर ज्यादा चार्जेस लिए जाएंगे। एमडीआर की ज्यादा से ज्यादा रकम फी लेन देन ज्यादा से ज्यादा 300 रुपए रहेगी। बैन अलावी माली फंड आईएमएफ ने कहा है कि भारत मजबूत इकतसादी बुनियाद, प्राइवेट शोबे की मुतहरिक पॉलिसियों और तकनीकी सलाहियत में इजाफे की बदौलत आलमी सतह पर तरक्की की नई लहर में सरकर्दा रोल अदा कर सकता है। आईएमएफ के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर निहल क्लार्क ने भारत को दुनिया की सबसे तेज रफ्तार तरक्की करने वाली मईशत करार दिया और कहा कि बैन अलावी इकतसादी तोसी में भारत मरकजी रोल अदा कर रहा है। उन्होंने भारत का 5 दिन का दौरा मुकम्मल करने के बाद यह बयान दिया है। जनाब क्लार्क के इस दौरे में नई दिल्ली, मुंबई और चेन्नई की मीटिंगें शामिल थीं। उन्होंने भारत के वलवलांगेज प्राइवेट सेक्टर, बड़ी तादाद में बासलाहियत अफराद और टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग के शोबों में तेजी के साथ बढ़ती हुई सलाहियत की सताइश की। उन्होंने इख्तरा, डिजिटल कायापलट, जदीद तर्ज की मैन्युफैक्चरिंग और वसी तर तकनीक इख्तियार करने को पैदावार और मुसाबकत का अहम वसीला करार दिया। अपने इस दौरे में आईएमएफ के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ने वजीर खजाना निर्मला सीतारमन, रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा और नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अशोक कुमार लहरी से मुलाकात की। जनाब क्लार्क ने बताया कि भारत के पॉलिसी साज अहदेदारों के साथ उनके तबादला ख्याल में मुल्क के इकतसादी मंजरनामे, आलमी माहौलियात में होने वाली तब्दीलियों और पायदार और जामे तरक्की के लिए दरकार इकदाम जेरे गौर आए। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर आज से भूटान के 2 रोजा सरकारी दौरे पर रहेंगे। दौरे के दौरान डॉ जयशंकर भूटान के वजीर खारजा लियोनपो ध्योनगिल के साथ दोतरफा मुसाकरात करेंगे। वो भूटान के बादशाह और भूटान के वजीर आजम से भी मुलाकात करेंगे। वजारत खारजा ने कहा है कि यह दौरा भारत और भूटान के दरमियान आला सतही तबादलों की रिवायत के मुताबिक है। इसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूदा करीबी दोस्ती और ताउन के ताल्लुक को मजीद मजबूत बनाना है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आज दुनिया भर में ओजोन का दिन मनाया जा रहा है। यह दिन जमीन पर जिंदगी की हिफाजत में ओजोन परत के रोल की अहमियत के बारे में बेदारी में इजाफे के लिए मनाया जाता है। इस साल का मौजू है एक ज्यादा ठंडे कुरेयर्स के लिए आलमी इकदाम। इस मौजू के तहत ओजोन परत के तहफ्फुज में बैन अलाक्वामी तआवुन की हसूलियाबियों को उजागर किया गया है। 22वीं भारत अमरीका मुश्तरका फौजी मश्क युद्ध अभ्यास कल उत्तराखंड के ओली इलाके में शुरू हुई। मश्क की इफ्तिताही तकरीब ओली के गैर मुल्की तरबियती मकाम पर मुनक्किद हुई। ये मश्क उत्तराखंड में ओली और राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में एक साथ की जा रही है। इस मश्क का मकसद दोतरफा दिफाई शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम बनाने के साथ साथ दोनों फौजों के दरमियान मिलकर काम करने के अमल को फरोग देना और उभरते हुए चैलेंजों से निपटना है। इस मश्क का मकसद यह भी है कि पहाड़ी और नीम पहाड़ी इलाकों में मरबूत जंगी ग्रुपों को तैनात करने के लिए दोनों फौजों की मुश्तरका फौजी सलाहियत में इजाफा किया जाए, जिसमें इन्फेंट्री के गलबे वाली कार्रवाईयों पर

0: आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क।

0: ये
1: क्या खूब कहा है, छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई और प्यार बन के गले का हार बन गई। ये गीत फिल्म के शीर्षक को जैसे पूरी तरह जीवंत कर देता है। मोहब्बत की शुरुआत अक्सर किसी बड़ी घटना से नहीं होती, कभी एक छोटी सी मुलाकात ही दिल में ऐसी जगह बना लेती है जिसे फिर उम्र भर भुलाया नहीं जा सकता।

फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में थे बंगाल के महान अभिनेता उत्तम कुमार और हिंदी सिनेमा की बेहद खूबसूरत और प्रतिभाशाली अभिनेत्री वैजयंती माला। फिल्म का निर्देशन किया था आलू सरकार ने और संगीत तैयार किया था शंकर जयकिशन ने। आपको बता दें कि फिल्म मुख्य रूप से बंगाली कहानी पर आधारित थी, साथ ही 1954 की बंगाली फिल्म अग्नि परीक्षा का हिंदी रूपांतरण थी, जिसकी कहानी प्रसिद्ध लेखिका आशा पूर्णा देवी के उपन्यास पर आधारित थी। और दिलचस्प बात यह है कि बंगाली सिनेमा के सुपरस्टार उत्तम कुमार ने इस फिल्म में अभिनय के साथ साथ निर्माण की जिम्मेदारी भी संभाली थी।

0: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और हमारी आज की फिल्म है छोटी सी मुलाकात, और आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त अर्चना गोयल।
1: बदलो बदलो आदत बदलो,
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: इस फिल्म की कहानी रिश्तों की उन उलझनों को सामने लाती है जहां बचपन में लिया गया एक फैसला बड़े होकर जिंदगी के सामने एक बड़ा सवाल बन जाता है। फिल्म की कहानी में बचपन में हुआ एक विवाह आगे चलकर रिश्तों के बीच उलझन पैदा करता है। दोनों बच्चे उस उम्र में रिश्ते की गंभीरता को समझ नहीं पाते। समय गुजरता है, बच्चे बड़े होते हैं और फिर परिस्थितियां उन्हें एक दूसरे के सामने ला खड़ा करती हैं। यहीं से कहानी में प्रेम, पहचान, परिवार और सामाजिक बंधनों की परतें खुलने लगती हैं। यानी कहानी का मूल सवाल सिर्फ ये नहीं कि दो लोग मिलेंगे या नहीं, बल्कि ये है कि क्या बचपन में बंधा रिश्ता बड़े होने पर दिल का रिश्ता बन सकता है।

1960 का दशक हिंदी फिल्म संगीत का सुनहरा दौर था और शंकर जयकिशन की खासियत यही थी कि वे प्रेम गीतों में भी अलग रंग भर देते थे। कहीं शरारत, कहीं रोमांस और कहीं विरह और कहीं मन की बेचैनी। और अब बात उस जोड़ी की जिसने फिल्म को खास बनाया। एक तरफ थी वैजयंती माला, शास्त्रीय नृत्य में पारंगत, खूबसूरती और अभिनय दोनों में अपनी अलग अलग पहचान बनाने वाली अभिनेत्री। दूसरी तरफ थे उत्तम कुमार, बंगाली सिनेमा के महानतम सितारों में से गिने जाने वाले कलाकार। दोनों की स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म के रोमांटिक पक्ष को एक अलग आकर्षण देती है। फिल्म में राजेंद्र नाथ, शशिकला, तरुण बोस जैसे कलाकार भी नजर आए।

फिल्में गीतों में मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, आशा भोसले और सुमन कल्याणपुर जैसे दिग्गज गायकों की आवाजें सुनाई देती हैं। फिल्म के गीतों में बचपन की मासूमियत भी है और जीवन की उलझन भी, यानी एक ही फिल्म के संगीत में भावनाओं की पूरी दुनिया समाई हुई है।

इस फिल्म में गीतकार शैलेंद्र ने गीतों में ऐसी बेचैनी रखी कि गीत सुनते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई प्रिया की राह देख रहा हो। शाम ढलती है, आंगन सूना लगता है और आंखें बार बार उसी राह को देखती हैं। यही तो प्रेम है। और अब सुनते हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में वो गीत जिसमें प्रेम का आग्रह हमेशा कुछ अलग ही लगता है। आवाज में मिठास भी, मनुहार भी और सामने वाले को रोक लेने की एक मासूम कोशिश भी। 1967 की ये फिल्म शायद अपने समय में उतनी बड़ी व्यावसायिक सफलता हासिल नहीं

कर सकी, लेकिन इसका संगीत आज भी लोगों के दिलों में है। शायद यही सिनेमा की खूबसूरती है कि कभी कोई अचानक मिल जाए, कुछ पल बातें हों और फिर रास्ते अलग हो जाएं, लेकिन वो छोटी सी मुलाकात याद बनकर हमेशा साथ रहती है।

तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या।

0: आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्तुत चैनल से बोल रहे हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर पर 1:40 होने को है। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन में अमन देव। पहला चोणवीं खबरां। सरकार ने स्पष्ट किया कि व्यक्ति तो व्यक्ति दरमियान यूपीआई लैन देन से कोई चार्ज नहीं लगेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि दरां विच कटौती ते छूट की बजाय सरकार नूं टैक्स संबंधी तजवीज़ां च देश नूं पहला रखना चाहिदा है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर अज तो भूटान के दो रोजा सरकारी दौरे ते होंगे। धरती ते जीवन की रक्षा विच ओजोन परत की अहमियत बारे जागरूकता पैदा करने लई अज विश्व ओजोन दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के कालजां ते यूनिवर्सिटियां विच पढ़ रहे 10,000 विद्यार्थियों लई होस्टल बनाने का फैसला किया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि व्यक्ति तो व्यक्ति दरमियान यूपीआई लैन देन से कोई चार्ज नहीं लगेगा, भावें भेजी गई रकम किन्नी भी होए। वित्त मंत्रालय ने कहा कि छोटे व्यापारियों लिए जीरो मर्चेंट डिस्काउंट

0: in Akashwani News, Dehradun.
1: Saudi Arabia has said that its air defenses intercepted and destroyed a Houthi drone near Makkah last evening. The spokesperson for the coalition forces to support legitimacy in Yemen, Major General Turki al-Maliki, described the incident as the second attempted Houthi attack on Makkah, referring to an earlier ballistic missile incident in 2017. He also warned that the Saudi-led coalition would take necessary measures against further attacks. Meanwhile, the Houthis have denied targeting Makkah. The incident is reported amid a sharp escalation between Saudi Arabia and the Houthis. Yesterday, civil defense of Saudi Arabia also issued alerts and then lifted them in six cities, including Yanbu, its main Red Sea oil port. Well, World Ozone Day is being observed across the globe today. The day is dedicated to raising awareness about the crucial role of the ozone layer in safeguarding life on Earth. The theme of 2026 is Global Action for a Cooler Planet. Union Minister of State for Environment, Forest and Climate Change, Kirti Vardhan Singh, today said that India has demonstrated that sustainable economic growth is possible while protecting the environment. He was addressing a program in Mumbai to mark the 32nd World Ozone Day. Mr. Singh said, India has exceeded its targets under the Montreal Protocol without compromising on development. The India Meteorological Department has forecast heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Haryana, Chandigarh, Punjab for today. Similar weather conditions are also expected to prevail over Kerala, Mahe, Punjab, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal for the day. For Delhi, the weather agency has forecast a spell of light rainfall during the evening today. The Met Department said that thunderstorms and lightning conditions are expected over Bihar, Jammu and Kashmir, Ladakh, Jharkhand, Odisha and Rajasthan for the next 2 to 3 days. In men's cricket, India defeated Afghanistan by 7 wickets in the second T20 international at the Arun Jaitley Stadium in Delhi last night to take an unassailable 2-0 lead in the 3-match series. Chasing a target of 160 runs, India comfortably reached 163 for 3 in 14.5 overs. Sanju Samson top scored with a blistering 57 off 22 balls, while Abhishek Sharma contributed 39 runs off 19 balls. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% up in the afternoon session today. The Sensex rose 297 points to 74,301, while Nifty added 106 points to 23,225 when reports last came in. And before we end the bulletin, the headlines once again. Finance Minister Nirmala Sitharaman calls for mature tax policy debate, keeping national interest first. India lodges strong protest with Pakistan over unacceptable conduct of Pakistani naval units, leading to naval collision in international waters. India Electric Mobility Index 2025 announced by Niti Aayog, Delhi emerges top performer in adopting electric mobility, followed by Maharashtra and Karnataka. Saudi Arabia says it's intercepted Houthi drone near Makkah. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नास। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का कर से जुड़ी नीतियों पर राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आह्वान। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नौसैनिक टकराव के लिए पाकिस्तान के नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य आचरण पर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध व्यक्त किया। नीति आयोग ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 जारी किया। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली का शीर्ष प्रदर्शन। सऊदी अरब ने कहा उसने मक्का के पास हौसी ड्रोन को रोककर नष्ट किया। हमले के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी, हौसी ने शहर को निशाना बनाने से इनकार किया। और हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर से जुड़े प्रस्तावों में देश हित को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कर दरों में कमी, छूट या रियायत की मांग से पहले राष्ट्रहित पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री आज बेंगलुरु में इंटरनेशनल टैक्स रिसर्च एंड एनालिसिस फाउंडेशन द्वारा आयोजित दो दिन के सम्मेलन न्यू एज टैक्सेशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रही थी। श्रीमती सीतारामन ने शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और थिंक टैंक से कर नीति पर स्वतंत्र शोध को बढ़ावा देने का आग्रह किया।
3: सवाल सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि इस साल के बजट में हमारे क्षेत्र को क्या मिलेगा, बड़ा सवाल यह है कि अगले दो दशकों में भारत की टैक्स व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, क्योंकि देश विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए टैक्स नीतियों पर बेहतर और व्यापक शोध की जरूरत है, साथ ही जहां भी संभव हो ऐसी नीतियों के व्यावहारिक विकल्प सामने आने चाहिए जिन्हें वास्तव में लागू किया जा सके।
2: विदेश मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी राजनयिक को तलब कर समुद्र में पाकिस्तानी नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य आचरण पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। मंत्रालय ने कहा कि इससे भारतीय नौसेना की एक पाकिस्तानी नौसैनिक इकाई से टक्कर हुई। घटना अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुई और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मंत्रालय ने कहा कि अप्रैल 1991 में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास और सैन्य टुकड़ियों की आवाजाही की अग्रिम सूचना संबंधी समझौते का सीधा उल्लंघन है। मंत्रालय ने पाकिस्तान के प्रभारी राजनयिक से संबंधित पाकिस्तानी अधिकारियों को ये बताने को कहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतनी चाहिए और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करना चाहिए। मंत्रालय ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय प्रभारी राजनयिक को भी पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के समक्ष विरोध दर्ज कराने का निर्देश दिया। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज से तीन दिन की रूस यात्रा पर हैं। यात्रा का उद्देश्य भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों और सैन्य सहयोग को और मजबूत करना है। जनरल सेठ रूस के थलसेना के कमांडर इन चीफ कर्नल जनरल आंद्रेई मोर्दोवीचेव के साथ पेशेवर सैन्य सहयोग और प्रशिक्षण सहित आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वे मॉस्को में राष्ट्रीय रक्षा नियंत्रण केंद्र का दौरा करेंगे और रूसी रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर भूटान की दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान डॉ जयशंकर भूटान के विदेश मंत्री योनपो डीएन ढुंगेल के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भूटान नरेश से मुलाकात करेंगे और भूटान के प्रधानमंत्री से भी भेंट करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परम्परा के अनुरूप है। इसका उद्देश्य मैत्री और सहयोग के मौजूदा घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट, एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
2: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नीति आयोग के इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली शीर्ष प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश रहा है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा हैं। इस सूचकांक का शुभारंभ आज नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा किया गया, जिसमें उपराष्ट्रीय स्तर पर ई गतिशीलता के लिए नीतिगत ढांचा और क्रियान्वयन परिणाम दोनों का विवरण दिया गया। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बदलाव विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए आर्थिक, पर्यावरणीय और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। श्री गौबा ने कहा कि 2040 तक सभी नई कार बिक्री का 40% विद्युत वाहन होंगे। उन्होंने बताया कि 2025 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का अधिकतम स्कोर 84 रहा, जो 2024 में 77 था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के पांचवें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। तीन दिन का ये सम्मेलन एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करेगा। ये सहयोग को बढ़ावा, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती, निवेश आकर्षित करने और प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को साथ लाएगा। एक रिपोर्ट।
5: सम्मेलन में 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हो रहे हैं। इस प्रदर्शनी में 6 देशों के पवेलियन, 12 राज्य सरकारों के पवेलियन और एक समर्पित स्टार्टअप पवेलियन भी शामिल है। भारत के प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी सेमिकॉन इंडिया को संयुक्त रूप से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में सेमीकंडक्टर विनिर्माण और प्रौद्योगिकी सहित पूरे सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम के उभरते रुझानों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर पैनल चर्चा और रणनीतिक सत्र आयोजित किए जाएंगे। यह सम्मेलन भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए साझेदारी, निवेश के अवसर, तकनीकी सहयोग को तलाशने तथा विश्वसनीय वैश्विक सेमीकंडक्टर भागीदार के रूप में देश की स्थिति को और मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से

0: किसी भी राशि के यूपीआई लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेन देन के साथ साथ व्यापारियों को 2000 रूपये तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल 2000 रूपये से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी पीटीएम लेन देन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी

0: द्वारा छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया। ईडी की एक टीम केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के साथ उत्तर कोलकाता के नारकेलडांगा इलाके में एक कारोबारी के घर पहुंची। सूत्रों के अनुसार कारोबारी ने आकर्षक रिटर्न का वादा कर लोगों से धनराशि जुटाई और इसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया। इसी मामले में उत्तर और दक्षिण कोलकाता के 5 अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान कल से देशभर में शुरू होगा। ये अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। ये विषय स्वच्छ और विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में सामूहिक भागीदारी और साझा जिम्मेदारी के महत्व को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
1: साल 2017 में शुरू हुआ स्वच्छता ही सेवा अभियान स्वच्छ भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। यह अभियान हर साल आयोजित किया जाता है और देश भर के लोगों को अपने आसपास की सफाई की जिम्मेदारी लेने और स्वच्छता में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर के अवसर पर शहरी स्थानीय निकाय द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा एक पेड़ माँ के नाम पहल के तहत पौधारोपण भी किया जाएगा। राज्यों से अपील की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की सार्वजनिक सेवा पूरी होने के अवसर पर 7 अक्टूबर को विशेष स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित करें। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। इससे खुले में शौच की समस्या खत्म हुई है और महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को भी बढ़ावा मिला है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में केंद्रीय दल आज बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा ले रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी दल के साथ हैं।
2: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में केंद्रीय दल आज राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। केंद्रीय टीम ने पटना जिले के मनेर और दानापुर के दियारा क्षेत्रों का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर हो रहे इस दौरे के दौरान श्री चौहान राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे तथा प्रभावित किसानों और परिवारों से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय मंत्री पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी करेंगे। बैठक में बाढ़ की स्थिति, आपदा प्रबंधन, राहत और बचाव कार्यों तथा प्रभावित किसानों को दी जा रही सहायता की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी आज इसी तरह का मौसम रहेगा। दिल्ली में शाम को हल्की बारिश होने का अनुमान है। वहीं बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा और राजस्थान में अगले 2 से 3 दिन के दौरान बिजली चमकने के साथ तूफान की आशंका है। आज विश्व ओजोन दिवस है। इस वर्ष के विश्व ओजोन दिवस का विषय है ठंडे ग्रह के लिए वैश्विक कार्रवाई। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोककर एक सुरक्षा कवच का काम करती है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने इस अवसर पर कहा कि भारत ने पर्यावरण की रक्षा के साथ टिकाऊ आर्थिक विकास का उदाहरण पेश किया। मुंबई में 32वें विश्व ओजोन दिवस के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत तय लक्ष्यों को विकास से समझौता किए बिना हासिल किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@airnewshindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: यमन के हौसी विद्रोहियों ने आज दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब के F-15 जेट को मार गिराया है। हौसी का यह भी कहना है कि पिछले कुछ दिनों में सऊदी अरब ने उनके विभिन्न जिलों पर 450 से ज्यादा हमले किए हैं। एक रिपोर्ट। हौसी सेना के प्रवक्ता याहया सरी ने बताया है कि यमन के मारिब प्रांत के ऊपर सऊदी अरब के F-15 फाइटर जेट को मार गिराया गया है। उनके अनुसार स्थानीय स्तर पर बनी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से सऊदी लड़ाकू विमान को निशाना बनाया गया। हालांकि सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन की ओर से इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने कहा कि इन हमलों में आम नागरिक हताहत हुए हैं। इससे पहले आज सुबह इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र स्थल मक्का में सऊदी अरब के सिविल डिफेंस ने संभावित हवाई हमले की चेतावनी जारी की है। हौसियों ने मक्का को निशाना बनाने से इनकार किया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में करीब 0.5% की बढ़त

0: की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 297 अंक बढ़कर 74,301 पर रहा। आज भारतीय शास्त्रीय संगीत की अमर साधिका और भारत रत्न से सम्मानित MS सुब्बुलक्ष्मी की जयंती है। कर्नाटक संगीत की रानी कहे जाने वाली MS सुब्बुलक्ष्मी भारत की सबसे सम्मानित शास्त्रीय गायिकाओं में से एक थी। 16 सितंबर 1916 को तमिलनाडु के मदुरै में जन्मी सुब्बुलक्ष्मी भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली संगीतकार बनी। डॉक्टर MS सुब्बुलक्ष्मी ने अपनी पहली रिकॉर्डिंग 10 साल की उम्र में की थी। कुंभकोणम में महामहम उत्सव में उन्होंने अपनी पहली सार्वजनिक प्रस्तुति दी जब वे महज 16 साल की थी। MS सुब्बुलक्ष्मी ने कई भाषाओं में प्रदर्शन किया जिनमें हिंदी, बंगाली, गुजराती, तमिल, मलयालम, तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़ शामिल है। सुब्बुलक्ष्मी ने अभिनय के क्षेत्र में भी प्रवेश किया और कई फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने अपनी फिल्म की शुरुआत वर्ष 1938 में फिल्म सेवा सदन से की। फिल्म मीरा में उनके अभिनय को भी काफी सराहा गया।
1: परमेश्वर के सामने राजा क्या, स्वामी क्या, गुलाम क्या, गौवें चराने वाले ग्वाल बालों के साथ मायावी कृष्ण को नाच गाना नहीं भाया, दुर्योधन के आलीशान महल को तजकर दीन विदुर की कुटिया को भगवान ने क्या नहीं अपनाया।
0: पद्म भूषण, पद्म विभूषण, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार समेत कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। समाचार कक्ष से वैष्णवी। इस अवसर पर देशभर के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने भी उनके योगदान का स्मरण किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का कर से जुड़ी नीतियों पर राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आह्वान। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नौसैनिक टकराव के लिए पाकिस्तान के नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य आचरण पर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध व्यक्त किया। नीति आयोग ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 जारी किया। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली का शीर्ष प्रदर्शन। सऊदी अरब ने कहा उसने मक्का के पास हौजी ड्रोन को रोककर नष्ट किया, हमले के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। और हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीएलएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार। श्रोताओं, कभी कभी किसी फिल्म की कहानी हमें कुछ घंटों तक बांधे रखती है, लेकिन उस कहानी के गीत सालों साल हमारे साथ चलते हैं। कभी किसी गीत में प्यार की मासूमियत सुनाई देती है, तो कभी परिवार की खुशियां, कभी दोस्ती और कभी त्योहारों का ऐसा रंग जो सुनते ही चेहरे पर मुस्कान ले आता है। तो आज ऐसे ही एक संगीतकार जोड़ी की बात करने वाले हैं अपने इस कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं कार्यक्रम में आपके साथ इस कार्यक्रम की होस्ट विजेता चतुर्वेदी। श्रोताओं, हिंदी सिनेमा में जब यादगार धुनों की बात करते हैं ना, तो राम लक्ष्मण का नाम ना आए ऐसा हो नहीं सकता। मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, इन फिल्मों के गीतों ने सिर्फ लोकप्रियता हासिल नहीं की बल्कि एक दौर की पारिवारिक और रोमांटिक फिल्म संगीत की पहचान भी बना दी थी। लेकिन आज की कहानी सिर्फ एक मशहूर संगीतकार की नहीं, आज की कहानी एक ऐसे संगीतकार की है जिसने अपने साथी की मृत्यु के बाद भी उसकी पहचान को अपने नाम से अलग नहीं होने दिया। ये कहानी है काशीनाथ पाटिल यानी हमारे जाने पहचाने राम लक्ष्मण की।

श्री बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की आवाज में ये खूबसूरत संगीत फिल्म 100 डेज से लिया गया है। तो दोस्तों बात कर रहे हैं हम कलाकार यानी कि एक ही कलाकार जो आज हमने चुना है राम लक्ष्मण। विजय पाटिल का जन्म 16 सितंबर 1942 को नागपुर में हुआ था। संगीत उनके जीवन में बहुत जल्दी आ गया था। उन्होंने शुरुआती संगीत शिक्षा अपने परिवार से ही हासिल की और आगे चलकर शास्त्रीय संगीत का भी अध्ययन किया। नागपुर में वे गायक और वाद्य यंत्र बजाने वाले कलाकार के रूप में ऑर्केस्ट्रा से जुड़ गए, लेकिन उनके सपने सिर्फ मंच पर गाने या वाद्य बजाने तक तो सीमित नहीं थे। वो संगीतकार बनना चाहते थे और इसी सपने को लेकर विजय पाटिल मुंबई पहुंच गए। हालांकि मुंबई में आना संघर्ष को और ज्यादा बढ़ाना था, यहां पर उनका संघर्ष भी बढ़ा और मुलाकात हुई सुरेंद्र कदम से। सुरेंद्र भी संगीतकार बनने का सपना लेकर आगे बढ़ रहे थे। दोनों की दोस्ती हो गई, संगीत को लेकर सोच भी मिली और धीरे धीरे दोनों ने साथ काम करने का फैसला ले लिया। यहीं से जन्म हुआ उस जोड़ी का जिसे आगे चलकर हिंदी सिनेमा में राम लक्ष्मण के रूप में जाना। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि ये नाम उन्होंने खुद नहीं चुना था। मराठी सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता निर्माता दादा कोंडके ने इस जोड़ी को राम लक्ष्मण नाम दिया था। दादा कोंडके ने अपनी फिल्म पांडु हवलदार में इसको संगीत देने का मौका दिया था और यहीं से उनकी प्रतिभा की पहचान हुई थी। साल 1975 ये मौका दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। फिल्म का संगीत लोकप्रिय हुआ और राम लक्ष्मण की जोड़ी को फिल्म इंडस्ट्री में पहचान मिलने लगी। यानी जिस जोड़ी ने आगे चलकर हिंदी सिनेमा में रोमांस, परिवार और उत्सव के गीतों की नई लोकप्रियता दी, उनकी शुरुआत हुई थी मराठी सिनेमा से। इसके बाद एक ऐसा मोड़ आया जिसने इस कहानी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कौन सा वो मोड़ था बात करेंगे इस प्यारे से गीत के बाद।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार और इस कार्यक्रम में मैं हूं आपकी होस्ट विजेता चतुर्वेदी। श्रोताओं, राम लक्ष्मण का संगीत के जो करियर की शुरुआत है वो बहुत जबरदस्त हुई और जैसे ही उनका कदम हिंदी फिल्मों में रखा गया राम लक्ष्मण को हिंदी फिल्म एजेंट विनोद मिली। लेकिन फिल्म के साथ जुड़ने के कुछ ही समय बाद सुरेंद्र कदम यानी कि राम का निधन हो गया। विजय पाटिल के सामने अब एक बड़ा सवाल था कि क्या वो राम लक्ष्मण नाम छोड़ दें या अपने साथी की याद को अपने काम के साथ जीवित रखें। विजय पाटिल ने दूसरा रास्ता चुना, उन्होंने अकेले ही संगीत देना जारी रखा लेकिन नाम वही रखा राम लक्ष्मण। यानी एक व्यक्ति संगीत दे रहा था लेकिन नाम में दो लोगों की साझेदारी कायम थी। ये फैसला सिर्फ कमर्शियल पहचान बनाने का नहीं था बल्कि वो अपनी यादों में संगीत में अपने साथी को सम्मान देना चाहते थे, उन्हें हमेशा संगीत में याद रखना चाहते थे। और इसी कहानी को शायद सभी लोगों ने बहुत ही भावुकता से देखा। समय आगे बढ़ता गया, राम लक्ष्मण नाम से विजय पाटिल ने हिंदी मराठी भोजपुरी सिनेमा में लगातार संगीत दिया। एजेंट विनोद, तराना, 100 डेज, पुलिस पब्लिक, पत्थर के फूल और उसके बाद दौर आया 1989 का। फिल्म थी मैंने प्यार किया, निर्देशक सूरज पटचात्या, मुख्य भूमिका में थे सलमान खान और भाग्यश्री और संगीत दिया राम लक्ष्मण ने। फिल्म की कहानी में प्यार था, दोस्ती थी, परिवार था और इन भावनाओं को गीतों ने आवाज दी। इस संगीत को भी लोगों के यादों का हिस्सा बन गया। मैंने प्यार किया कि सफलता ने राम लक्ष्मण को देश भर में एक बड़े फिल्म संगीतकार के रूप में स्थापित कर दिया और इसी फिल्म के संगीत के लिए विजय पाटिल को फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला।

और अपने अपने संदेश, प्यारे प्यारे संदेश भेज रहे हैं। तो ये पहला संदेश आया है चानीसर गौत से, अमर रमेश कुमार खत्री, टेलर मास्टर कृष्णा लाल खत्री, मोहम्मद अमीन, जफर सादिक, शेख शंकर, गुल शर्मा, बिरानी वाले, और सारे गाने उन्हें बहुत ही अच्छे लिख रहे हैं, ऐसा संदेश उनका है। और अगले संदेश के साथ हैं तुलसी मस्कीन जी, जो जुड़ रहे हैं बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, वीना मस्कीन, डब्बू सम्राट, चैतन्य मस्कीन, मेघा, और चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधाना खुराना, और ये लिख रहे हैं नाइस सॉन्ग से आगाज हुआ सुन बेलिया। और आज कार्यक्रम में एक ही कलाकार में राम लक्ष्मण जी को याद किया जा रहा है। अगला संदेश भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, ईशान चीपा, पूजा परिहार का है। लिखते हैं आज फिल्म जगत के मशहूर संगीतकार राम लक्ष्मण के बारे में बेहतरीन बातें, रोचक किस्से और नगमे सुनवाए जा रहे हैं, हमें भी बेहतरीन जानकारी मिल रही है, हमें भी प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल आप कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। अगला संदेश ग्राउंड फ्रांसिस से है राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी का। अगले संदेश के साथ है संजय ढींगिया, संजय ढींगिया जी जुड़ रहे हैं बागपत उत्तर प्रदेश से, और हमारे श्रोता हैं सरवन श्रवण सिंह गिल, लोहागढ़ ठकुरावाला से दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर, गुरलाल, अविराज जी, और संदीप मक्कड़ जी जुड़ रहे हैं, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल सहानी, पिंगावाला चौक, गोराया जालंधर से, निसार अली जुड़ रहे हैं धनौरी तेलीवाल से, निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू, और कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं पी एस नुहावकर, निर्मला नुहावकर और विशाल नुहावकर, और लिख रहे हैं कार्यक्रम बेहद अच्छा लग रहा है। साथ ही राधेश्याम देवगन, चंपा देवगन, राजू नेहा, जगदीश देवगन भवरपुर बसना से जुड़ रहे हैं। अगले संदेश के साथ छत्तीसगढ़ चुड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद असहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, अफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर, और देवशंकर तमूरिया, अजय सिंह, अजय देव तमूरिया, पोता मास्टर अली कबीर जुड़ रहे हैं और लिख रहे हैं एक ही कलाकार में राम लक्ष्मण के बारे में सुन रहे, कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ये हमारे साथ जुड़े हैं छत्तीसगढ़ से। तो जी हमारे बहुत सारे श्रोता कार्यक्रम को सुन रहे हैं और साथ ही साथ अपने संदेश भी भेज रहे हैं। तो चलिए अब सुन लेते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, जो है फिल्म हम आपके हैं कौन से, आवाज एसपी बाला सुब्रमण्यम की।

श्रोताओं, राम लक्ष्मण की असली पहचान सिर्फ रोमांटिक गानों तक सीमित नहीं थी, उनकी धुनों में भारतीय पारिवारिक माहौल की मिठास भी थी। हम आपके हैं कौन, साल 1994 में आई थी राजश्री प्रोडक्शंस की ये फिल्म। भारतीय परिवारों के लिए एक उत्सव, रिश्तों और परंपराओं को केंद्र में लेकर बनाई गई थी और इसके गीत राम लक्ष्मण की खासियत ये थी कि उनकी धुनें सीधे दिल तक पहुंचती थी, वो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाती थी। और एक खास बात यह है कि राम लक्ष्मण के गायकों के साथ काम करने की शैली बिल्कुल अलग थी। फिर आया साल 1999, हम साथ साथ हैं, एक बार फिर सूरज बर जाते, एक बार फिर राजश्री प्रोडक्शन और एक बार फिर राम लक्ष्मण की धुनें। विजय पाटिल ने राजश्री के साथ कई फिल्मों में काम किया, मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं उनके करियर के प्रमुख पड़ाव थे। लेकिन राम लक्ष्मण की कहानी को केवल 3 फिल्मों तक सीमित करना उनके पूरे सफर के साथ न्याय नहीं होगा। अपने 4 दशक से अधिक लंबे करियर में उन्होंने हिंदी, मराठी, भोजपुरी में 150 से अधिक फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया। मनमोहन देसाई, महेश भट्ट, जीपी सिप्पी, अनिल गांगुली, सूरज बड़जात्या जैसे प्रसिद्ध फिल्म निर्देशकों के साथ काम किया। आज की संगीत यात्रा में बस इतना ही। अगली बार जब आप इस तरह का कोई भी गाना सुने तो सिर्फ गायक की आवाज पर मत रुकिएगा, उस धुन के पीछे बैठे उस संगीतकार को भी जरूर याद कीजिएगा जिसने सुरों को कहानी का हिस्सा बनाया। अभी के लिए लेती हूं आपसे विदा और छोड़े जाती हूं आपको एक और प्यारे से गीत के साथ।

और इस गीत के बाद यानी कि 3 बजे आप सुन सकते हैं कार्यक्रम गोल्डन एरा, जहां पर आपको हमारी साथी अर्चना गोयल जी ले जाएंगी बॉलीवुड के स्वर्णिम युग की तरफ।

मीडियम न्यूज 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है। अब से चंद ही लम्हों के बाद खबरें नशर की जाएंगी।

ये आकाशवाणी है। अब आप नीतिका त्यागी से खबरें सुनिए। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने मुल्क के मफाद को मुकदम रखते हुए टैक्स पॉलिसी पर जामे बहस मुबाहिसे पर जोर दिया है। भारत में पाकिस्तानी बहरिया के यूनिटों के नाकाबिले कबूल तर्ज अमल पर पाकिस्तान से सख्त एहतजाज किया है, जिसके नतीजे में बैनुल अक्वामी आबी हदूद में बहरिया के साथ टकराव का वाकया पेश आया था। नीति आयोग ने 2025 के इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इशारे का ऐलान किया है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इख्तियार करने में दिल्ली की कारकर्दगी सबसे शानदार रही। इसके बाद महाराष्ट्र

और कर्नाटक का नंबर है। सऊदी अरब ने कहा है कि उसने मक्का मुअज्जमा के नजदीक हौसियों के एक ड्रोन को मार गिराया। उसने मजीद हमलों के खिलाफ तंबीह भी की है, जबकि हौसियों ने शहर को निशाना बनाने से इनकार किया है। और न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट ने भारत के साथ आजादाना तजारत के समझौते को नाफिज करने के लिए मुतालिका बिल को मंजूरी दे दी है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने जोर देकर कहा कि हुकूमत को टैक्स से मुतालिक पेश की जाने वाली तजावीज में टैक्स की शरह में कमी, छूट या रियायत हासिल करने से बढ़कर मुल्क के मफाद को तरजीह देनी जानी चाहिए। वो आज बेंगलुरु में इंटरनेशनल टैक्स रिसर्च एंड एनालिसिस फाउंडेशन के जेर एहतमाम नए दौर की टैक्स कार्य के मौजू पर मुनाकिदा दो रोजा कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताह के मौके पर इजहार ख्याल कर रही थीं। वजीर खजाना ने माहिरीन तालीम, मुहक्किकीन और थिंक टैंक से अपील की कि वो टैक्स पॉलिसी के बारे में आजादाना तहकीक को अवामी बहस का बाकायदा हिस्सा बनाए ताकि तहकीक का जायजा लिया जा सके, इस पर सवाल उठाए जा सकें और इसे मजीद बेहतर बनाया जा सके। अपनी वजारत की जानिब से बजट से पहले की जाने वाली मुशावरत का जिक्र करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि मुशावरती सरगर्मियों में ये बड़े सवाल भी उठाए जाने चाहिए कि विकसित भारत 2047 की जानिब बढ़ते हुए आइंदा दो दहाइयों के लिए भारत का टैक्स निजाम कैसा होना चाहिए। उन्होंने टैक्स से मुतालिक बेहतर तहकीक की जरूरत पर जोर दिया, जो तमाम पहलुओं का जायजा ले, इसके असरात की पैमाइश करे, मुख्तलिफ मफादात के दरमियान समझौते को तस्लीम करे और हर मुमकिन सरकारी आमदनी के नुकसान के बदले काबिल अमल मुतबादल तजावीज पेश करे। उन्होंने कहा कि इस तरह की तहकीक हुकूमत को मुख्तलिफ मुतबादलों में से मुनासिब इंतखाब करने में मदद देगी, जिसके नतीजे में एक बेहतर टैक्स पॉलिसी तश्कील दी जा सकती है। वज़ीर आज़म नरेन्द्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में पांचवें सेमीकोड इंडिया 2026 का इफ्तिताह करेंगे। ये तीन रोजा कॉन्फ्रेंस इश्तराक व तआवुन को फरोग देने, जद्दत तराजी को रफ्तार फराहम करने, मैन्युफैक्चरिंग की सलाहियतों को मजबूत बनाने, सरमायाकारी को रागिब करने और मुस्तकबल के लिए तैयार महारत को फरोग देने की खातिर आलमी सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को यकजा करने के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म साबित होगी। इस प्रोग्राम में 600 से ज्यादा नुमाइशकार, 300 बैनुल अख्वामी कंपनियां और 40 से ज्यादा मुमालिक के वफूद शिरकत करेंगे। नुमाइश में 6 मुमालिक के पवेलियन, 12 रियासती हुकूमतों के पवेलियन के अलावा एक खसूसी स्टार्टअप पवेलियन भी होगा। सेमीकॉन इंडिया भारत की सबसे अहम सेमीकंडक्टर कॉन्फ्रेंस और नुमाइश है, जिसका इनेकाद मुश्तरक तौर पर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत और SEMI कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में आला सतह के कलीदी खुतबे, पैनल मुबाहिसे और कलीदी अहमियत के हामिल अजलास मुनाकिद होंगे, जिसमें सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी समेत सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इको निजाम के अहम शोबों और उभरते रुझानात पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। ये प्रोग्राम भारतीय और बैनुल अक्वामी कंपनियों को शराकतदारी, सरमायाकारी के मौके और टेक्नोलॉजी के इश्तराक के इम्कान तलाश करने के लिए अहम मौका फराहम करेगा। इसके अलावा ये एक काबिल एतमाद आलमी सेमीकंडक्टर शराकतदार के तौर पर भारत की पोजीशन को मजीद मुस्तहकम करेगा। नई दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमीशन के नाजिमुल उमूर को आज वजारत खारिजा में तलब किया गया और समंदर में पाकिस्तानी बहरिया की यूनिटों के नाकाबिल कबूल तर्ज अमल पर सख्त एहतजाज किया गया, जिसके नतीजे में भारतीय बहरिया के एक यूनिट के साथ टकराव हुआ था। एक बयान में वजारत ने कहा है कि यह वाकया बैनुल अक्वामी आबी हदूद में पेश आया था, अगरचे इसकी वजह से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यह फौजी मशकों और फौजियों की नकलो हरकत के बारे में पेशगी नोटिस से मुतालिक भारत और पाकिस्तान के दरमियान अप्रैल 1991 के समझौते के मुनाफी था। वजारत खारिजा ने पाकिस्तान हाई कमीशन के नाजिमुल उमूर से यह कह दिया है कि मुतालिका पाकिस्तानी हुकाम को इस बात से मुत्तला कर दें कि सभी फौजी यूनिटों को पूरी एहतियात बरतने और दोनों मुल्कों के दरमियान मुतालिका समझौतों की दफात का एहतराम करने की जरूरत है, ताकि मुस्तकबिल में इस तरह का कोई वाकया पेश न आए। उधर इस्लामाबाद में भारत के नाजिमुल उमूर को भी यह हिदायत दी गई है कि वो पाकिस्तान की वजारत खारिजा को इसी तरह के एहतजाज से मुत्तला करें। फौज के सरबराह जनरल धीरज सेठ आज से इस महीने की 18 तारीख तक रूस के सरकारी दौरे पर हैं। तीन रोजा दौरे के दौरान जनरल सेठ पेशेवराना फौजी तआवुन और तरबियत समेत बाहमी दिलचस्पी के मामलों पर रूस की बर्री अफवाज के कमांडर इन चीफ कर्नल जनरल एंड्रे निकोएविच के साथ बातचीत करेंगे। उन्हें बाजाब्ता तौर पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा और वो मॉस्को में टूम ऑफ द अननोन सोल्जर

0: पर शहीद सिपाहियों को खिराज अकीदत पेश करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इशारे 2025 के मुताबिक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इख्तियार करने के एतबार से रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में दिल्ली को सर फहरिस्त रखा गया है। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में यह इशारिया जारी किया। इसमें पॉलिसी फ्रेमवर्क और जैली कौमी सतह पर ई मोबिलिटी के निफाज से मुतालिक नतीजों दोनों को उजागर किया गया है। दिल्ली के बाद उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा शामिल हैं। इस तरह का दूसरा इशारिया है। इसमें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के मकासद हासिल करने में रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की पेशरफ्त का तज़िया किया जाता है। सऊदी अरब ने कहा है कि उसने फजाई दिफाई निजाम ने कल शाम मक्का मुअज्जमा के नजदीक एक हौसी ड्रोन को तबाह कर दिया है। यमन में जायज और कानूनी हुकूमत की हिमायत से मुतालिक इत्तेहादी फोर्सेस के तर्जुमान मेजर जनरल तुर्की अल मालिकी ने इस वाकये को मक्का मुअज्जमा पर हौसियों का दूसरा हमला बताया। इससे पहले 2017 में हौसियों ने बैलिस्टिक मिजाइल हमला किया था। उन्होंने मुतनब्बे किया कि सऊदी अरब की क्यादत में इत्तेहाद आइंदा हमलों के खिलाफ जरूरी इकदाम करेगा। इस दौरान हौसियों ने मक्का मुअज्जमा पर हमला करने से इनकार किया है। यह हमला सऊदी अरब और हौसियों के दरमियान बढ़ती कशीदगी के बीच सामने आया है। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट ने भारत के साथ अपने आजाद तजारती समझौते पर अमल दरामद के लिए एक बिल को मंजूरी दी है, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान महसूलात में खातिरख्वाह कमी आ जाएगी और तजारत में फुसत पैदा होगी। इस बिल को 29 के मुकाबले 93 वोटों से मंजूरी दी गई, जिसमें अपोजिशन लेबर पार्टी ने भी हिमायत का इजहार किया। न्यूजीलैंड के तजारत के वजीर टॉड मैकले ने कहा कि इस समझौते से बरामदकारों को फौरी और खातिरख्वाह फायदा हासिल होंगे। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि यह आला क्वालिटी वाला तजारती समझौता इस साल के आखिर तक लागू हो जाएगा। समझौते के तहत न्यूजीलैंड की तरफ से भारत को की जाने वाली तकरीबन 95% बरामदात पर से महसूलात हट जाएंगे या इनमें खातिरख्वाह कमी कर दी जाएगी। इस समझौते में शामिल की गई आधी से ज्यादा मसनूआत महसूलात से आजाद हो जाएंगी। सभी भारतीय अशिया पर न्यूजीलैंड की मार्केट में रिसाई पर महसूलात आयद नहीं होंगे। न्यूजीलैंड में भारत ने अगले 15 साल के दौरान 20 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी से भी इत्तेफाक किया है। आज दुनिया भर में ओजोन का दिन मनाया जा रहा है। यह दिन जमीन पर जिंदगी की हिफाजत में ओजोन परत के रोल की अहमियत के बारे में बेदारी में इजाफे के लिए मनाया जाता है। इस साल का मौजू है एक ज्यादा ठंडे कोराए अर्ज के लिए आलमी इकदाम। इस मौजू के तहत ओजोन परत के तहफ्फुज में बैन अल-अक़वामी तआवुन की हुसूलियाबियों को उजागर किया गया है। माहौलियात, जंगलात और आबो हवा की तब्दीली के वजीर मुमलिकत कीर्ति वर्धन सिंह ने उजागर किया कि यह दिन हमें इस बात की याद दिलाता है कि ओजोन परत की हिफाजत करने का अमल घर से शुरू होता है। नेपाल के शिमाल मगरबी मुगू जिले में आज सुबह सवेरे 3 घंटे के अंदर ही 2 बार जलजले आए। किसी तरह के जानो माल के नुकसान की फौरी तौर पर कोई इत्तला नहीं है। जलजले से मुतालिक निगरानी और तहकीक के नेपाल के सेंटर के मुताबिक पहले 4.5 शिद्दत का और फिर 4.2 शिद्दत का जलजला आया। इन दोनों के मरकज मुगू जिले में कलाई के अतराफ थे। ये जलजले ऐसे वक्त आए हैं जब नेपाल 26 अगस्त के अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब के असरात से अभी पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाया है। पोटेकोशी के इस सैलाब में कम से कम 1403 लाशें बरामद की गई हैं, जबकि 4089 अफराद अब भी लापता हैं। मुतासरा इलाकों में तलाश शिनाख्त और राहत की कार्रवाई जारी है। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने मुल्क के मफाद को मुकदम रखते हुए टैक्स पॉलिसी पर जामे बहस मुबाहिसे पर जोर दिया है। भारत ने पाकिस्तानी बहरिया के यूनिटों के नाकाबिल कबूल तर्ज अमल पर पाकिस्तान से सख्त एहतजाज किया है, जिसके नतीजे में बैन अल-अक़वामी आबी हदूद में बहरिया के साथ टकराव का वाकया पेश आया था। नीति आयोग ने 2025 के इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इशारे का ऐलान किया है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इख्तियार करने में दिल्ली की कारकर्दगी सबसे शानदार रही और इसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक का नंबर है। सऊदी अरब ने कहा है कि उसने मक्का मुअज्जमा के नजदीक हौसियों के एक ड्रोन को मार गिराया। उसने मजीद हमलों के खिलाफ तंबीह भी की है, जबकि हौसियों ने शहर को निशाना बनाने से इनकार किया है। और न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट ने भारत के साथ आजादाना तजारत के समझौते को नाफिज करने के लिए मुतालिका बिल को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात।

0: इस नगमे के साथ ही आज का मेरे पसंद प्रोग्राम अब खत्म हुआ। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शहरनामा प्रोग्राम के तहत सुनिए आगरा के हवाले से ये मालूमाती प्रोग्राम।
1: ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम शहरनामा। शहरनामा के तहत आज का मौजू है तहजीबी व सकाफती पस मंजर में आगरा की सियाहती अहमियत, और पेश कर रहे हैं डॉक्टर अतीक अनवर सिद्दीकी साहब।
2: तारीख गवाह है कि इंसान ने इस दुनिया में कदम रखते ही तब्दीली और तगैयुर के अमल को शुरू कर दिया था। पहले कबीला, फिर माशरा, फिर गांव, फिर शहर, और धीरे धीरे इंसान ने अपने वजूद को मुल्कों में फैलाकर इस बात का यकीन दिलाया कि वो सब कुछ कर सकता है और इस कायनात को वो अपनी मर्जी से चला भी सकता है। इंसान और आबादी के लिहाज से जब शहरों की बात आती है तो अगर सिर्फ हिंदुस्तान का जायजा लिया जाए तो हजारों से भी ज्यादा तादाद इस मुल्क के शहरों की निकल आएगी। इसमें कोई शक नहीं कि हद कदीम से लेकर अब तक के शहरों की दरियाफ्त अगर की जाए तो बहुत से नाम ऐसे भी होंगे जिनका वजूद तक अब बाकी नहीं है, जो शायद किसी जमाने में मशहूर शहर की हैसियत से जाने जाते थे। इसी तरह कुछ शहर ऐसे भी हैं जो हद माजी में तो न थे मगर अब जाने पहचाने और मशहूर शहर की हैसियत रखते हैं। उर्दू जो जवाल की यही दास्तान जिंदगी की कहानी है, लेकिन इन्हीं शहरों में से अगर कुछ जगहों का इंतखाब किया जाए तो बाद शहर ऐसे भी जरूर होंगे जिनको अगर तारीखी

होने लगी। अब तक यहाँ ब्रज भाषा बोली जाने का चलन था और सनातन धर्म का गलबा था, लेकिन मुगल हुकूमत के आ जाने से फारसी जबान व अदब की तरफ तवज्जो आम होने लगी। बाबर के बाद हुमायूं का जमाना भी अफरा तफरी का रहा। उसका कयाम आगरा के बजाय दिल्ली में हो गया। फिर भी हुमायूं के अहद की बनाई हुई एक मस्जिद जमुना नदी के पार मेहताब बाग के पास कछवाहा गांव में आज भी मौजूद है, जिसके सदर दरवाजे पर अहद हुमायूं में बनाए जाने की तारीख 1537 ईस्वी कंडा है। हुमायूं ने आगरा के किले का थोड़ा सा हिस्सा जरूर तामीर करवाया, मगर जल्दी उसके दिल्ली मुंतकिल हो जाने से आगरा में कोई खास तामीरी काम न हो सका। हुमायूं के बाद जब तीसरे मुगल शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दौर आया, तो सन 1556 से 1605 ईस्वी तक तकरीबन 50 साल की मुद्दत में आगरा और उसके आसपास फतेहपुर सीकरी के इलाके को इम्तियाजी मर्तबा हासिल रहा और पूरे हिंदुस्तान में आगरा को बेशते बनी बना दिया गया। तहजीबी और माशरती एतबार से पूरी दुनिया के ताजरीन की निगाहें यहां कायम थी। बड़े बड़े सयाह और मजहबी मुफक्किरीन अकबर के दरबार के मेहमान बनते थे। फतेहपुर सीकरी में तो इबादत खाना जैसी जगह पर हर धर्म और हर ख्याल के उलमा जमा होते थे और दीन इलाही जैसे अकीदे की बुनियाद भी यहीं पड़ी थी। अकबर के नौरतन जिनमें अबुल फजल, बदायूनी, फैजी, तानसेन, बीरबल, मुल्ला दोप्याजा और अब्दुल रहीम खान खाना जैसे काबिल आलिम और लायक फायक मौरखीन व आलिमीन फन भी इसी आगरा व फतेहपुर सीकरी की जमीन का हिस्सा थे। कहा जाता है कि अकबर आजम के अहद में इस जगह को जिस कदर अहमियत और अजमत मिली है वो न तो इससे पहले कभी मिली है और न बाद में ये मर्तबा हासिल हुआ है। अकबर ही के अहद में आगरा से मुंसलिक फतेहपुर सीकरी में पीर मुर्शिद हजरत ख्वाजा सलीम चिश्ती के दौरों से अकबर को न सिर्फ औलाद मिली बल्कि उसकी पूरी हुकूमत पर ख्वाजा सलीम चिश्ती का दस्त शफकत कायम रहा। आज भी ख्वाजा सलीम चिश्ती की मजार पर जाकर जो आसूदगी का एहसास होता है उससे दिल झूम झूम जाता है और अकीदत से सर तस्लीम खम करके यही जी चाहता है कि ख्वाजा सलीम चिश्ती के जिक्र से दिल को मसरूर करें।

और दरबारी जबान फारसी ही थी, लेकिन आगरा के बाजारों और आवाम में उर्दू भी बोली और समझी जाती थी। एक लतीफा ही सही, मगर ये सच है कि शाहजहां बादशाह सलामत भी उर्दू समझते थे, और वो यूं कि एक उनके अहद में एक सिपाही था जो उर्दू में शायरी भी करता था, जिसका नाम था चंद्रभान ब्रह्मन। उसका तबादला आगरा के बजाय कहीं दूर बेकैफ सी जगह पर कर दिया गया। दोबारा आगरा वापस आना चाहता था तो उसने एक लतीफा यानी किता उर्दू में लिखकर किसी तरह बादशाह सलामत के हुजूर में पेश कर दिया। वो किता कुछ इस तरह था, खुदा ने किस शहर अंदर हमन को लाए डाला है, न साकी है न सहबा है, न शीशा है न प्याला है, और ब्राह्मण वास्ते अशनांज के फिरता है बगिया सुन, न गंगा है न जमुना है, न नदी है न नाला है। इन अशार से अंदाजा होता है कि शाहजहां के जमाने में उर्दू जबान मुअदब का मिजाज कैसा था। बादशाह सलामत को उसकी दरख्वास्त पसंद आई और ब्राह्मण को दोबारा आगरा शहर में जमुना नदी में स्नान करने के लिए वापस बुला लिया गया। शाहजहां का नाम लेते ही फौरन मुगलिया हुकूमत का शाहकार ताजमहल का नाम फौरन जहन नशीन हो जाता है। वैसे तो ये एक मकबरा है जो शाहजहां की बीवी मलिका अर्जुमन बानो बेगम उस मुमताज महल के इंतकाल के बाद उसके जसद खाकी को बुरहानपुर से मुंतकिल करके यहां ले आया गया था, और फिर धीरे धीरे ताजमहल की तामीर होने लगी। यहां तक कि 17 साल की मुद्दत में यह मुकम्मल हो गया, जहां सुर्ख और सफेद संगमरमर से इसे सजाया और संवारा गया है, जहां कीमती पत्थरों से उसकी नक्काशी और मीनाकारी की गई है, जहां बहते हुए झरनों और फव्वारों को देखा जा सकता है। मकबरे के अतराफ बागात का हुस्न काबिले दीद है, और जमुना नदी के दामन में पूरी इमारत खामोश खड़ी हुई है। ताज के दर दीवार पर कसरत से पुरानी आयात कंदा हैं, इनको हिंदुस्तान, ईरान, इराक और कश्मीर के हुनरमंद कारीगरों ने तैयार किया है, और इसी मकबरे के नीचे बेगम मुमताज महल के साथ खुद शाहजहां बादशाह की मजार भी है, जो सन 1666 में उनके इंतकाल के बाद बनाई गई। आगरा के किले में दीवान खास, मोती मस्जिद, मुसम्मन बुर्ज और बाज दूसरी सफेद संगमरमर की तामीरात हुई, लेकिन ताजमहल की इनफरादियत और अजमत का कोई सानी नहीं। बादशाह सलामत किसी जगह भी पूरे मुल्क में ये मकबरा बनवा सकते थे, वो चाहते तो कश्मीर, कराची, लाहौर को उसके लिए चुन सकते थे, मगर आगरा की सरजमीन पर दरियाए जमुना के किनारे उसका इंतखाब किया। शायद ये जमुना नदी का तकद्दुस था जिसने उसी जगह पर ताजमहल की तामीर करवाई। ताज सिर्फ एक मकबरा नहीं है, ये एक ऐसा शाहकार है जिसको कायनात सलाम करती है, और जिसके दीदार के लिए दुनिया भर से लोग लाखों की तादाद में देखने हर रोज आते हैं। ये सिर्फ एक बादशाह की मोहब्बत की निशानी ही नहीं है, उसमें वलियों, बुजुर्गों, साधु संतों और करोड़ों मोहब्बत करने वालों की दुआएं शामिल हैं। वक्त जैसे जैसे गुजरता जा रहा है, वैसे वैसे ताजमहल का हुस्न निखरता जा रहा है, और खामोश जबान में जैसे ये कह रहा हो कि मुझको तारीख के किस्सों में न ढूंढो लोगों, मैं हकीकत हूँ, मुझे आंख से देखा जाए।

शहरनामा प्रोग्राम के तहत आपने आगरा के हवाले से ये मालूमाती प्रोग्राम सुना। तहरीर डॉक्टर अतीकुर रहमान सिद्दीकी की थी और रावी थे इफ्तखारुज़्ज़मा, पेशकश इफ्तखारुज़्ज़मा की थी। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आइए अब सुनते हैं फिल्मी नगमे। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में ये नगमा है बड़ा दिन फिल्म से।

जो गीत सिंह की आवाज में ये नगमा था तुम बिन फिल्म से। अब सुनिए किशोर कुमार और आशा भोसले को, फिल्म का नाम है स्वर्ग से सुंदर।

एसपी बाला सुब्रमण्यम और अलका याग्निक की आवाजों में ये नगमा था सर्जन फिल्म से। हमारे आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश आशा भोसले और अमित कुमार को सुनिए फिल्म है जीवा।

0: आशा भोसले और अमित कुमार के गाये हुए इस गीत के साथ ही आज का फिल्मी नगमों का ये प्रोग्राम अब खत्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, अब खबरें नष्ट होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप नीतिका त्यागी से खबरें सुनिए। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने मुल्क के मफाद को मुकदम रखते हुए टैक्स पॉलिसी पर जाम बहस मुबाहिसे पर जोर दिया है। भारत ने पाकिस्तानी बहरिया के यूनिटों के नाकाबिल कबूल तर्ज अमल पर पाकिस्तान से सख्त एहतजाज किया है, जिसके नतीजे में बैन अल-अक़वामी आबी हदूद में बहरिया के साथ टकराव का वाकया पेश आया था। सऊदी अरब ने कहा है कि उसने मक्का मुअज्जमा के नजदीक हौसियों के एक ड्रोन को मार गिराया। उसने मजीद हमलों के खिलाफ तंबीह भी की है, जबकि हौसियों ने शहर को निशाना बनाने से इनकार किया है। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट ने भारत के साथ आजादाना तजारत के समझौते को नाफिज करने के लिए मुतालिका बिल को मंजूरी दे दी है और हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और शिमाल मशरक के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश होने की पेशगोई की गई है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने जोर देकर कहा कि हुकूमत को टैक्स से मुतालिक पेश की जाने वाली तजावीज में टैक्स की शरह में कमी, छूट या रियायत हासिल करने से बढ़कर मुल्क के मफाद को तरजीह देनी चाहिए। वो आज बेंगलुरु में इंटरनेशनल टैक्स रिसर्च एंड एनालिसिस फाउंडेशन के जेर एहतमाम नए दौर की टैक्सकारी के मौजू पर मुनक़िदा दो रोजा कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताह के मौके पर इजहार ख्याल कर रही थीं। वजीर खजाना ने माहिरीन तालीम, मुहक्किकीन और थिंक टैंक से अपील की कि वो टैक्स पॉलिसी के बारे में आजादाना तहकीक को अवामी बहस का बाकायदा हिस्सा बनाएं, ताकि तहकीक का जायजा लिया जा सके, इस पर सवालात उठाए जा सके और इसे मजीद बेहतर बनाया जा सके। अपनी वजारत की जानिब से बजट से पहले की जाने वाली मुशावरत का जिक्र करते हुए मुहतरमा सीतारमन ने कहा कि मुशावरती सरगर्मियों में ये बड़े सवालात भी उठाए जाने चाहिए कि विकसित भारत 2047 की जानिब बढ़ते हुए आइंदा दो दहाइयों के लिए भारत का टैक्स निजाम कैसा होना चाहिए। उन्होंने टैक्स से मुतालिक बेहतर तहकीक की जरूरत पर जोर दिया, जो तमाम पहलुओं का जायजा ले, उसके असरात की पैमाइश करे, मुख्तलिफ मफादात के दरमियान समझौते को तस्लीम करे और हर मुमकिन सरकारी आमदनी के नुकसान के बदले काबिल अमल मुतबादिल तजवीज पेश करे। उन्होंने कहा कि इस तरह की तहकीक हुकूमत को मुख्तलिफ तबादलों में से मुनासिब इंतखाब करने में मदद देगी, जिसके नतीजे में एक बेहतर टैक्स पॉलिसी तश्कील दी जा सकेगी। वज़ीर आज़म नरेन्द्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में पांचवीं सेमिकॉन इंडिया 2026 का इफ्तिताह करेंगे। यह तीन रोजा कॉन्फ्रेंस इश्तराक और तआवुन को फरोग देने, जिद्दत तराजी को रफ्तार फराहम करने, मैन्युफैक्चरिंग की सलाहियतों को मजबूत बनाने, सरमायाकारी को राग़िब करने और मुस्तकबिल के लिए तैयार महारत को फरोग देने की खातिर आलमी सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को यकजा करने के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म साबित होगी। इस प्रोग्राम में 600 से ज्यादा नुमाइशकार, 300 बैन अल-अक़वामी कंपनियां और 40 से ज्यादा ममालिक के वफूद शिरकत करेंगे। नुमाइश में 6 ममालिक के पवेलियन, 12 रियासती हुकूमतों के पवेलियन के अलावा एक खसूसी स्टार्टअप पवेलियन भी होगा। सेमिकॉन इंडिया भारत की सबसे अहम सेमीकंडक्टर कॉन्फ्रेंस और नुमाइश है, जिसका इनेकाद मुश्तरका तौर पर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत और SEMI कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में आला सतह के कलीदी खुतबे, पैनल मुबाहिसे और कलीदी अहमियत के हामिल अजलास मुनक़िद होंगे, जिनमें सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी समेत सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इको निजाम के अहम शोबों और उभरते हुए रुझानात पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। नई दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमीशन के नाजिमुल उमूर को आज वजारत खारिजा में तलब किया गया और समंदर में पाकिस्तानी बहरिया के यूनिटों के नाकाबिल कबूल तर्ज अमल पर सख्त एहतजाज किया गया, जिसके नतीजे में भारतीय बहरिया

के एक यूनिट के साथ टकराव हुआ था। एक बयान में वजारत ने कहा है कि ये वाकया बैनुल अक्वामी आबी हदूद में पेश आया था। अगरचे इसकी वजह से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये फौजी मशकों और फौजियों की नकलो हरकत के बारे में पेश की नोटिस से मुतालिक भारत और पाकिस्तान के दरमियान अप्रैल 1991 के समझौते के मुनाफी था। वजारत खारिजा ने पाकिस्तान हाई कमीशन के नाजिम उल उमूर से ये कह दिया है कि मुतालिका पाकिस्तानी हुकाम को इस बात से मुतला कर दें कि सभी फौजी यूनिटों को पूरी एहतियात बरतने और दोनों मुल्कों के दरमियान मुतालिका समझौतों के दफात का एहतराम करने की जरूरत है ताकि मुस्तकबिल में इस तरह का कोई वाकया पेश न आए। फौज के सरबराह जनरल धीरज सेठ आज से इस महीने की 18 तारीख तक रूस के सरकारी दौरे पर हैं। 3 रोजा दौरे के दौरान जनरल सेठ पेशेवराना फौजी तआवुन और तरबियत समेत बाहमी दिलचस्पी के मामलों पर रूस की बड़ी बर्री अफवाज के कमांडर इन चीफ के साथ बातचीत करेंगे। उन्हें बाजाबता तौर पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा और वो मॉस्को में टूम ऑफ द अननोन सोल्जर पर शहीद सिपाहियों को खिराज अकीदत पेश करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सऊदी अरब ने कहा है कि उसके फजाई दिफाई निजाम ने कल शाम मक्का मुअज्जमा के नजदीक एक हौसी ड्रोन को तबाह कर दिया है। यमन में जायज और कानूनी हुकूमत की हिमायत से मुतालिक इत्तेहादी फोर्सेस के तर्जुमान मेजर जनरल तुर्की अल मालिकी ने इस वाकये को मक्का मुअज्जमा पर हौसियों का दूसरा हमला बताया। इससे पहले 2017 में हौसियों ने बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया था। उन्होंने मुतनब्बे किया कि सऊदी की क्यादत में इत्तेहाद आइंदा हमलों के खिलाफ जरूरी इकदाम करेगा। इस दौरान हौसियों ने मक्का मुअज्जमा पर हमला करने से इनकार किया है। यह हमला सऊदी अरब और हौसियों के दरमियान बढ़ती कशीदगी के बीच सामने आया है। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट ने भारत के साथ अपने आजाद तजारती समझौते पर अमल दरामद के लिए एक बिल को मंजूरी दी है, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान महसूलात में खातिरखा कमी आ जाएगी और तजारत में वसत पैदा होगी। इस बिल को 29 के मुकाबले 93 वोटों से मंजूरी दी गई, जिसमें अपोजिशन लेबर पार्टी ने भी हिमायत का इजहार किया। न्यूजीलैंड के तजारत के वजीर टॉड मैकले ने कहा कि इस समझौते से बरामदकारों को फौरी और खातिरखा फायदा हासिल होंगे। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि यह आला क्वालिटी वाला तजारती समझौता इस साल के आखिर तक लागू हो जाएगा। समझौते के तहत न्यूजीलैंड की तरफ से भारत को की जाने वाली तकरीबन 95% बरामदात पर से महसूलात हट जाएंगे या इनमें खातिरखा कमी कर दी जाएगी। इस समझौते में शामिल की गई आधी से ज्यादा मसनूआत महसूलात से आजाद हो जाएंगी। सभी भारतीय अशिया पर न्यूजीलैंड के मार्केट में रिसाई पर महसूलात आयद नहीं होंगे। न्यूजीलैंड में भारत ने अगले 15 साल के दौरान 20 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी से भी इत्तेफाक किया। आज दुनिया भर में ओजोन का दिन मनाया जा रहा है। यह दिन ओजोन जमीन पर जिंदगी की हिफाजत में ओजोन परत के रोल की अहमियत के बारे में बेदारी में इजाफे के लिए मनाया जाता है। इस साल का मौजू है एक ज्यादा ठंडे को राय अर्ज के लिए आलमी इकदाम। इस मौजू के तहत ओजोन परत के तहफ्फुज़ में बैनुल अक़वामी तआवुन की हुसूलियाबियों को उजागर किया गया है। माहौलियात जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के वजीर मुमलिकत कीर्तिवर्धन सिंह ने उजागर किया कि ये दिन हमें इस बात की याद दिलाता है कि ओजोन परत की हिफाजत करने का अमल घर से शुरू होता है। उन्होंने कहा कि एसी को 24 डिग्री सेल्सियस पर रखना और किफायती बिजली वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान को मुंतखब करने जैसे मामूली इकदाम सेहतमंद कुरए अर्ज के लिए कार्बन के इखराज को कम करते हैं। उन्होंने शहरियों पर जोर दिया कि वो महफूज मुस्तकबिल के लिए पायदार तरीकों को अपनाएं। भारतीय मौसमियात महकमे ने अंडमान निकोबार जजायर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली में आज तेज बारिश होने की पेशगोई की है। केरलम, माहे, मगरबी बंगाल में जैली हिमालयी खित्ते, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। मौसमियात महकमे के मुताबिक अगले 2-3 दिन के दौरान बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा और राजस्थान में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। और मर्दों के क्रिकेट में भारत ने दूसरे टी20 मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। इस तरह भारत ने 2-0 की सबकत हासिल करके 3 मैचों की सीरीज अपने नाम कर ली है। कल रात दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मैच में भारत ने 160 रन का जीत का निशाना 14 ओवर्स और 5 गेंदों में ही 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। संजू सैमसन ने 22 गेंदों पर धुआंधार 57 रन बनाए, जबकि अभिषेक शर्मा ने 19 गेंदों पर 39 रन स्कोर किए। सीरीज का तीसरा और आखिरी टी20 मैच कल दिल्ली में इसी मैदान पर खेला जाएगा। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर।
وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے ملک کے مفاد

0: मुकदम रखते हुए टैक्स पॉलिसी पर जामे बहस मुबाहिसे पर जोर दिया है। भारत ने पाकिस्तानी बहरिया की यूनिटों के नाकाबिले कबूल तर्ज़-ए-अमल पर पाकिस्तान से सख्त एहतजाज किया है, जिसके नतीजे में बैन अल-अक़वामी आबी हदूद में बहरिया के साथ टकराव का वाकया पेश आया था। सऊदी अरब ने कहा है कि उसने मक्का मुअज़्ज़मा के नजदीक हौसियों के एक ड्रोन को मार गिराया। उसने मजीद हमलों के खिलाफ तंबीह भी की है, जबकि हौसियों ने शहर को निशाना बनाने से इनकार किया है। न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट ने भारत के साथ आजादाना तजारत के समझौते को नाफिज करने के लिए मुतालिका बिल को मंजूरी दे दी है। और हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और शिमाल मशरक के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश होने की पेशगोई की गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे थे उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात। शाम के 5 बजने को है हमारी आज की दूसरी मजलिस का वक्त अब खत्म होता है। रात 9:15 पर उर्दू सर्विस की तीसरी मजलिस के साथ हम एक मरतबा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस दिन दी ए पंजाबी सेवा है। शाम दे 5 बजे ने हुण साडी दूजी सभा शुरू हुंदी है। सभा दी शुरुआत दे विच आओ सुनदे आं सराय की प्रोग्राम जोक माही दी।

सुहा को पसंद आया होसी। कलाकार हम कुलदीप माणक। सिलाई की भेड़ो भरावो, आजकल लड़ाई झगड़े बहु वधेंदे पाए हैं। आखा वेंदा कि लोगों इच धीरज कैनी, जदन के धीरज हर तकलीफ का हाल है। पर होना की है, लोग छोटी जही गाल ते झगड़न लग पौंदे हैं। सड़क तो जरा को अगू टक्कर थी जावे तो लोग केड़िया गाला कड़ेंदे, मारन ते उतर आंदे हैं। हुन कह को आखे इस तरह ना करो, कुछ ता धीरज रखो। कावर नाल ता झगड़ा बिया वधेंदा है, प्यार नाल गाल मुक वंजे ता झगड़ा होंदा ही क्या नी। कावर ता आंदा है पर नुकसान भी ता अपना ही होसी, के फायदा। बाबा फरीद कहंदे हैं, फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, देही रोग न लग गई, पल्ले सब किछ पाए। केडी चंगी गाल आखी है शेख फरीद ने, के कावर नाल रोग लगेंदे हैं। आजकल तुसा डेढ़े बीपी शुगर हम को लगन आले रोग, ये सारा कावर नाल ही थींदे पए हैं। धीरज जो कहनी, धीरज नाल प्रेम वधेदा है, रिश्ते वधेंदे हैं। आखा वेदा कि परिवार तू घिन के पूरे संसार तीकन शांति ताही आसी जदन धीरज होसी। तो हुण वारी है गीत दी। गीत है एक मेरी आंख काशनी, दूजा रात दे उनींदरे ने मारिया, शीशे ते तरेड़ पै गई, वाल वांदी ने ध्यान जदो मारिया। गायिका हिन सुरिंदर कौर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: इससे सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। सरकार ने 3 लाख रुपए तक की छोटी निर्यात खेपों के लिए पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र आरसीएमसी या पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता से छूट दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य नए और छोटे निर्यातकों के लिए अनुपालन बोझ कम करना तथा डाक, कुरियर और अन्य उभरते चैनलों के माध्यम से निर्यात को सुगम बनाना है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर कल 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। इस दौरान देश भर में 12 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। श्री मोदी 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में अपनी 25 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे। कोलकाता में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि श्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर यह अभियान समाज से हर वर्ग से जुड़ने का अवसर है।
2: इस अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जिस सेवा, जिस समर्पण और जिस निष्काम भाव से मोदी जी ने आजीवन काम किया है उसी स्पिरिट के साथ हम उनके जीवन के माइल स्टोन्स को भी मनाएं। और सेवा संकल्प अभियान, मैं मानता हूं कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि समाज के हर वर्ग को सेवा, सहयोग और जन भागीदारी से जोड़ने का हमारा यह फर्म कन्विक्शन है, एक दृढ़ संकल्प है।
0: महान कलाकार अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि कई दशकों से उनके सहज अभिनय, अद्भुत बहुमुखी प्रतिभा और शानदार काम ने भारतीय सिनेमा और विशेषकर कन्नड़ सिनेमा पर गहरी छाप छोड़ी है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इससे 1 अरब 40 करोड़ भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच आसान होगी और न्यूजीलैंड में रोजगार तथा आय में वृद्धि होगी। इससे पहले आज न्यूजीलैंड की संसद में समझौते को लागू करने के लिए आवश्यक विधेयक पारित किया गया। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के नजदीक ड्रोन हमले की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब पर हमलों में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज थिम्फू में भूटान के विदेश मंत्री लिन्यो डी एन थुंगेल से मुलाकात की और व्यापक सहयोग की समीक्षा की। इस दौरान विकास, साझेदारी, ऊर्जा, व्यापार, संपर्क, संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में भारत भूटान की बहुआयामी सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर लोगों से विज्ञान आधारित उपायों, टिकाऊ शीतलन और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। श्री यादव ने कहा कि ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा कवच है और इसकी रक्षा करना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में दिल्ली को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान मिला है। इस सूचकांक में उपराष्ट्रीय स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत ढांचे और कार्यान्वयन परिणामों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा का स्थान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। 7:05 हो चुके हैं। अब सुनिए कार्यक्रम कृषि जगत। कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी किसान भाइयों बहनों को हमारा राम राम। आज के कृषि जगत कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे विशेष फोन इन कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड।

0: मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक IPL की पॉलीहैलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद।
1: IPL की पॉलीहैलाइट।
2: आज की विशेष फोन इन कार्यक्रम में गन्ने की पाठशाला के अंतर्गत आज का हमारा विषय है गन्ना फसल में AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग। और आज के हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विकास कुमार मलिक, जो कि वैज्ञानिक एवं प्रभारी हैं गन्ना उत्कृष्टता केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र बागपत उत्तर प्रदेश से। और दूसरे हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रऊफ अहमद परे, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं कृषि अभियांत्रिकी संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद पूसा नई दिल्ली से। गन्ना में AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विषय में संबंधित अगर आपकी कोई समस्या हो तो आप विशेषज्ञ से सीधे फोन पर बात कर सकते हैं और समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो हमारा फोन नंबर नोट करें 2342108 दिल्ली के बाहर के जो हमारे श्रोता हैं वो कोड लगाना ना भूलें, कोड है 011। तो कार्यक्रम का जो संचालन कर रहे हैं हमारे साथी बैठे हैं नरेश पारासर जी, तो बिना देर की ले चलते हैं आपको स्टूडियो की तरफ।
3: डॉक्टर मलिक, डॉक्टर परे, आप दोनों का पुनः हम स्वागत करते हैं कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद सर। धन्यवाद।
3: और डॉक्टर साहब, फोन आ रहे हैं किसानों के, और मेरे को लगता है कि जो युवा किसान हैं अगर इस समय सुन रहे हैं मेरे को, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप कृषि की तरफ ध्यान दीजिए। आज का विषय खास तौर पे हमारे जो पढ़े लिखे किसान हैं, युवा किसान हैं, जो समझते हैं AI के बारे में, जानते हैं उसकी उपयोगिता क्या हो सकती है आने वाले समय में, तो आप जरूर हमें फोन कीजिएगा। हम बैठे हैं 7:35 तक, तो बहुत समय है। फोन नंबर बता दिए यमुना बहन ने आपको, आप जरूर फोन कीजिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, आप चर्चा पे आते हैं
4: जी,
3: थोड़ा सा समय है, लग रहा तो है मेरे को फोन आ रहा है, बट बताइए आप।
4: जी जी जी, जो
3: आ गया जी एक फोन। पहले फोन ही लेते हैं।
4: नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल।
3: हेलो,
5: नमस्कार सर।
3: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं
5: जी? मैं विकास बोल रहा हूँ।
3: विकास भाई कहाँ से?
5: जिला बागपत से जी।
3: हाँ जी, बताओ विकास, क्या सवाल है?
5: सर, हमारे गन्ने की फसल में पत्ती काली काली हो रही है
4: जी,
5: और उस पर व्हाइट भी और ब्लैक फंगस आ जा रही, जो चिपकन सी रहे भित्ती सी भी चिपक रही है उसका। सर,
4: जो वे चिपकी हुई है सफेद और काले से धब्बे, वो बैक साइड में है पत्ती की, उल्टी सतह पे या सीधी सतह पे है?
5: सर, वो बैक साइड में भी है और सीधी सतह पे भी है, सीधी तरफ भी है।
4: हाँ हाँ हाँ, बेसिकली
5: जी। सर, मैंने स्प्रे भी कराया था जी।
4: किस चीज का?
5: तो वे हटी नहीं सर।
4: नहीं नहीं, स्प्रे किस चीज का किया?
5: स्प्रे जब कराया था।
4: स्प्रे किस चीज का किया?
5: हेलो,
3: स्प्रे किस चीज का किया विकास? कौन सी दवाई स्प्रे करी?
5: सर, मैंने स्प्रे करा था, मैंने थाइकोफिनेट मिथाइल थी सर, और एमिडा क्लोरोप्राइड थी
4: जी,
5: प्रोफिनोफोस थी
4: जी, बहुत बढ़िया,
5: और एक सर डेल्टा मैथ्रीन थी।
4: बहुत बढ़िया।
5: तो सर, मैंने अभी 2 हफ्ते हो गए तब स्प्रे कराया था, लेकिन ये तो हटी नहीं सर, वे और ज्यादा ही सी लग रही सर।
4: हाँ, बहुत बढ़िया। ये दोनों ही समस्याएं बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ जनपद में देखने को मिल रही है। व्हाइट फ्लाई भी है और माइट भी है।
5: हाँ जी,
4: दोनों ही, क्योंकि पत्ती की निचली सतह पर जब सफेद और काले रंग के धब्बे मिलेंगे तो इट मींस वो व्हाइट फ्लाई है, सफेद मक्खी के कारण वहां पर सफेद और काले रंग के डॉट डॉट से आपको दिखाई देंगे, और उसके बाद वो पत्ती ऊपर से भी काली पड़ जाएगी। बिल्कुल, मैं उसी की
5: मकड़ी मकड़ी भी बहुत ज्यादा आ रही है।
4: हाँ हाँ हाँ, मकड़ी
3: वो माइट जो है वो मकड़ी
4: मकड़ी ही है। लेकिन लेकिन एक चीज मैं इसी के साथ जोड़ता हूँ विकास जी, आपके जुड़ने से पहले मैं खुद ही अभी यहाँ पे चर्चा कर रहे थे कि बागपत जनपद में या शामली जनपद में या मुजफ्फरनगर मेरठ जनपद में ये जो इस प्रकार का प्रभाव देखने को मिल रहा है उसके कई कारण हैं। एक कारण, सबसे महत्वपूर्ण कारण मैं बताता हूं कि एक तो जो स्प्रे करने का तरीका है वो, और एक दवाई जो टेक्निकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वे दोनों चीजों को लेकर चलते हैं। मैं आपको वन बाय वन आग्रह करूंगा। पहला तो ये कि जब भी आप स्प्रे करें, हमेशा एक और निवेदन मैं आपसे करूंगा कि इनका जो लाइफ साइकिल है, चाहे व्हाइट फ्लाई है चाहे माइट है, बेसिकली इनका लाइफ साइकिल बहुत छोटा है, 10-12-15 दिन में ही अपना जीवन चक्र पूरा कर देती है। ऐसी परिस्थिति में यदि आपके खेत में आपने स्प्रे किया और आपने 100% उस दवाई आपका अच्छी थी, आपने 100% वो खेत साफ हो गया, लेकिन 99% किसान, जितने भी मैं किसानों से बात करता हूं बागपत में शामली में, मेड पर कोई स्प्रे नहीं करता है, रास्ते पर कोई स्प्रे नहीं करता है, खेत के कॉर्नर में खरपतवार जहां पर है वहां पर स्प्रे नहीं करता है। कारण क्या हुआ, हमने अपनी गन्ने की फसल सुरक्षित कर दी 100% वहां से इंसेक्ट को रिमूव कर दिया,
3: वही हो गया डॉक्टर साहब, पॉइजनस निकाल के बाहर गड़ी में डाल दिया,
4: और उसमें वो अल्टरनेट होस्ट के ऊपर वो जिंदा रहती है, जैसे ही एक सप्ताह 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद आपके खेत में उस पॉइजन का, उस जहर का असर कम होता है, वो दोबारा से आपके खेत पर अटैक कर, लाइफ साइकिल कम है, वो जल्दी से फिर दोबारा से अंडे देके आपके वहां पर प्रभाव डालना शुरू कर देती है। पहला तो निवेदन ये है, जब भी अब की बार स्प्रे करें हमेशा मेड को भी अपनी मान के चलें, पड़ोसी को भी जब स्प्रे करें उसको भी कहें भाई साहब जब आप स्प्रे कर रहे हैं इस मेड पर भी ये जो अल्टरनेट वीड, क्योंकि बरसात का मौसम है, पहला तो नियम यही कहता है कि आप मेड को साफ रखें, खरपतवार रहित रहे, लेकिन बरसात के मौसम में आपके वहां पर खरपतवार बार बार उगते रहते हैं, तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उस खरपतवार को भी, और मेड हो चाहे वो रास्ते की साइड हो, उस पर स्प्रे करते रहे, पड़ोसी भी स्प्रे करते हैं। एक तो पहला तो निवेदन यही है, 100% कंट्रोल होगी मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। दूसरा, केमिकल एसिटामिप्रिड करके आता है आप उसका इस्तेमाल करें, इमिड आता है उसका इस्तेमाल करें, लेकिन 10 से 12 दिन के अंतराल पर दोबारा से रिपीट जरूर कर दें और टेक्निकल को बदल के करें। आपने पहले इमीडा लिया है, अब जा एसिटामिप्रिड को ले लें, यदि पहले एसिटामिप्रिड लिया है तो अब जीव की बार मोनोक्रोटोफॉस को ले लें, तो इस प्रकार यदि आप दूसरे सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड को ले लेंगे तो वो बदलने से इंसेक्ट में रेजिस्टेंसी नहीं आएगी, वो पौधे पर आपका प्रभाव आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। हमारे यहां की टेंडेंसी क्या है, मैं एक और विकास जी आपको भी रेफरेंस देते हुए बता देता हूं कि एक बार आप दुकान पर गए और वहां पर आपको क्लोरोसाइपर का कॉम्बिनेशन अच्छा मिल गया, आपने ला के खेत पे स्प्रे करा उसका रिजल्ट मिला, तो अगली बार दुकान पर जाएंगे तो बोलेंगे वो क्लोरोसाइप वही दवाई देना जो पहली बार दी थी, आप उसको लाके फिर ट्राई करेंगे उसका फिर रिजल्ट आएगा, तीसरी बार उसका रिजल्ट नहीं आएगा, आप ऑब्जेक्शन करेंगे, दुकानदार भी कहेगा अब की बार आपने अच्छी दवाई नहीं दी, अब की बार रिजल्ट अच्छा नहीं, नहीं नहीं, हो सकता है दवाई अच्छी हो सकता है दवाई भी गड़बड़ हो, लेकिन जब दवाई अच्छी हो इट मींस इंसेक्ट में रेजिस्टेंसी आ गई है, बार बार एक ही केमिकल
3: बढ़ गई उसकी
4: सहन शक्ति, इसलिए केमिकल को हमेशा बदलें। दूसरा, मानसून सीजन चल रहा है, बरसात का सीजन है, सरफेस टेंट जरूर मिला है, यदि आपने उसमें सरफेस टेंट सिलिकॉन बेस स्टिकर नहीं मिलाया है तो जो हमारी लीफ की सरफेस है वो उस पानी को, उस ड्रॉपलेट्स को बड़ा जल्दी अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करती है, जिस कारण से वो वहां पर यदि 3 घंटे बाद बारिश हो जाती है, 4 घंटे बाद बारिश हो जाती है, तो उसका दवाई का इम्प्रेशन उतना अच्छा उस पौधे पर नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए यदि आप उसमें सिलिकॉन बेस स्टिकर सर्फेस्टेंट ऐड करेंगे तो नो डाउट वो ड्रोपलेट नहीं बनने देगा और हमारे उस इंसेक्टिसाइड का वहां पर इम्प्रेशन ज्यादा अच्छा आएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण है, और बड़ा अच्छा मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विकास जी, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि हम AI पर चल रहे थे, आवश्यकता इस समय इस मैसेज की भी थी, जो हमारे क्षेत्र में आवश्यकता है व्हाइट फ्लाई की भी, और माइट का भी मैं बता देता हूँ, पत्ती की निचली सतह पर, जहां पत्ती की निचली सतह है वहां डॉट डॉट डॉट डॉट बनाते हुए उस पर लाइनर मिलते हैं, लेकिन उसमें आप, मेरा निवेदन है या तो लाइम सल्फर और प्लस चूने का इस्तेमाल करें, 400 ग्राम सल्फर और 15 ग्राम चूना प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में, या फिर एकेरिसाइट का इस्तेमाल करें, प्रोपोगाइट करके एकेरिसाइट आता है उसका इस्तेमाल करें, उससे ज्यादा बेटर आपको रिजल्ट मिलेंगे।
3: विकास जी बहुत बहुत धन्यवाद, अगला फोन लेते हैं जी। हेलो,
5: हाँ जी नमस्कार।
3: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं
5: जी? मेरा नाम अब्दुल हमीद है, बीजनौर से बात कर रही हूँ
3: जी। अब्दुल भाई बताएं
5: जी, बताना ये है, गन्ना तो वैसे सही खड़ा पर कुछ कुछ टॉप बॉलर का असर दिखाई दे रहा, गन्ने की बंधाई कराई थी
4: जी,
5: तो उसमें हम कौन सी दवाई लगाऊं? कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि नीम का तेल अगर लगाया जाए तो वो क्या फायदेमंद हो सकता है इसमें?
4: वो इनिशियल स्टेज में बिल्कुल फायदेमंद है जी, जब आपका पहली जब पीढ़ी आनी प्रारंभ होती है, क्योंकि टॉप बोरर की 5 पीढ़ियां आती है, सबसे खतरनाक कीट है, वेस्टर्न यूपी या हरियाणा पंजाब की बात करूं तो ये सबसे डेंजरस इसलिए क्योंकि 5 पीढ़ी और अभी भी 5वीं पीढ़ी का समय है
5: जी।
4: सरप्राइजिंग ये है कि अभी 4-4 चौथी पीढ़ी अंदर 5वीं पीढ़ी का समय अब चल रहा है।
5: अच्छा,
4: तो अब यदि आपको खेत में लगता है इंटेंसिटी ज्यादा है और इस विशेष रूप से यदि पौधा है, पेड़ी नहीं है, पौधा है, और क्योंकि वो हम फरवरी और मार्च तक जाएंगे, तो ऐसी दशा में एक सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल, नीम ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे, उसकी एक कंडीशन मैं आपको बताता हूं। आप अपने खेत की मॉनिटरिंग करें, जो हम AI लागू कर रहे हैं या AI का जिक्र कर रहे हैं, AI की बात कर रहे हैं, वो मॉनिटरिंग है, इसी प्रकार की मॉनिटरिंग आपको स्वयं करनी है। मेरे खेत में इस 5वीं ब्रूड का एडल्ट मोथ कब आ रहा है,
3: उस मौत को जब वो आपके खेत में तितली दिखाई देनी शुरू हो जाए उस समय पर किसी भी सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का, चाहे इमीडा हो, चाहे क्लोरोसाइपर हो, प्रोपेनोपोसाइपर हो, एक स्प्रे आप कर देंगे तो वो मौत वहीं पर समाप्त हो जाएगा, आगे लार्वल स्टेज या एग स्टेज।
6: पिछले उसमें जब हमने लगाया था तो लिसेंटर लगाया था, प्रसन्ना फोर्स भी लगाया, सब दवाई लगाते हैं हम।
3: जी जी
6: अब जो, हाँ अब जो आखिरी वो है तो मेरा ये वो है, जैसे 0050 लगाए और नीम का तेल लगा के इसका स्प्रे अगर हम करते तो क्या सही रहेगा वो या नहीं रहेगा?
3: बहुत हद तक नहीं, नहीं, आप उसकी स्टेज को पहचान लो, यदि तितली बटरफ्लाई मौत स्टेज उसमें आ रही है।
6: नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत मामूली सा, वो देखना जब
3: मामूली सा है तो वो नेग्लिजेबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों का 0050 बेस्ट रहेगा आपका पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए, और इधर आप इसमें नीम ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
6: उससे पहले हमने उसमें वो
3: 52034
6: वो लगाया,
3: बहुत बढ़िया, बहुत
6: बहुत अच्छी स्टेज में गन्ना खड़ा, बहुत अच्छा गन्ना खड़ा।
7: बहुत ज्यादा अब्दुल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया,
6: बहुत बहुत धन्यवाद। अजी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी अच्छी जानकारी देते हैं, इधर अपना बहुमूल्य कीमती टाइम हमारे लिए लगाते हैं।
7: कार्यक्रम आपके लिए है, बहुत बहुत शुक्रिया,
6: हम तो सुनते हैं और बहुत लाभ उठाते हैं आपके उससे, बहुत आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
7: अगला फोन लेते हैं जी। हेलो जी, कट गया फोन जी डॉक्टर साहब, अब एआई नहीं हो पाया है, एआई पे आ जाते हैं जी। तो
3: अभी
7: डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहते
8: जो अभी चर्चा चल रही थी, क्योंकि जो हमारे साथी हैं, क्योंकि जो पिछले दो तीन प्रश्न है इससे हमारे किसान भाई समझ सकते हैं कि क्यों एआई की जरूरत है।
7: जरूर,
8: आप देखिए कि हमारे पहला जो प्रश्न था और हमारे साथी ने उनको बताया कि ये समस्या कितने तरीकों से हो सकती है।
7: डॉक्टर साहब माफी चाहूंगा, फोन आ गया। हेलो हेलो
9: हेलो, नमस्कार सर।
7: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
9: सचिन बात कर रहा हूँ, जिला संभल से।
7: जी सचिन भाई बताएं, क्या सवाल है?
9: सर ये सवाल था कि जो नीम के पौधे होते हैं ना, तो हमारी तरफ नीम के पौधे नहीं हो पाते हैं, सुंडी लग जाती है, इसका कुछ समाधान है?
3: समाधान है जी, नीम का पौधा तो वेस्टर्न यूपी संभल, वेस्टर्न यूपी का मुरादाबाद और आपका बदायूं के बीच का हिस्सा है, बहुत अच्छा, वहाँ पर नीम के पौधे होंगे उसमें नो डाउट। इनिशियल स्टेज में लगती है, किस स्टेज में लगती है उसका थोड़ा एक देखना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड के साथ में हम क्लोरोसाइपर के साथ में चलेंगे तो नो डाउट उसकी सुंडी को हम कंट्रोल कर लेंगे।
9: जो ताजी छोटी छोटी मुलायम वो पत्तियां होती हैं ना, वहाँ पे वो उन्हें खाते हैं, मोड़ देती हैं और वहाँ पे फिर वो बढ़वार नहीं हो पाती।
3: बिल्कुल, आप दो स्प्रे करें, पहला प्रोफेनोफोस साइपर का इस्तेमाल करें, दूसरा थायो लैम्डा का एक इस्तेमाल करें, थोड़ा लैम्डा हार्ड नेचर में होती है, आप दोनों में एक एक स्प्रे करेंगे तो नो डाउट आपका पौधा सर्वाइव करेगा और उस इंसेक्ट को वहीं पर मारने के लिए कारगर होंगे।
9: एक लैम्डा और
3: थायो लैम्डा करके कॉम्बिनेशन आता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
9: ठीक है
7: बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी। डॉक्टर साहब
8: जी, जो हम बात कर रहे थे कि जैसे हम ये बीमारी की बात कर रहे थे कि वो कितने वजह से हो सकती है, उनको सिम्टम दिख रहा है, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है, कोई और चीज भी हो सकता है। अब कितनी बड़ी समस्या है कि इसको निकालना कि किस वजह से, क्योंकि तभी इसको मैनेज कर पाएंगे।
7: डॉक्टर साहब ने पांच वजह ही बताई,
8: पांच वजह और भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं। अब यहीं पे है कि अगर हमारे पास इन वजहों का डेटाबेस होता कि इस वजह से ये चेंज आती है, इस वजह से ये चेंज आती है, तो एक मॉडल से मिली सेकंड

0: में डिसीजन मिल सकता है
1: जी, जी,
0: जहां आप पूरा दिन लगा देंगे एक एक चीज को, कितने रिसोर्सेज हैं। दूसरी बात जो दूसरा प्रश्न था कि हमारे किसान भाई ने पूछा कि ये बीमारी, और हमारे साथी ने पूछा कि ऊपर के सर्दी है या नीचे,
1: नीचे
0: के। अब यहाँ पे देखे हमारे किसान भाई जब ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं उसका जो स्प्रे है वो पेंट्रेट करता है, उसके बरक्स जो कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी है नैपसैक स्प्रे जो बैक में है, अक्सर ये होता है कि ऊपरी सतह में तो कंट्रोल होता है,
1: नीचे नहीं जा रहा
0: है। उसके साथ जो मेन है कि इसमें पौधे में बीमारी है तो चलिए आपने स्प्रे किया, लेकिन जो उसके आसपास मेड है या उसके आसपास गैप है उसमें से अगर स्पोर चले गए और या उसमें से कोई पेस्ट आ गया उसको पहचान लेना, उसके लिए हमको मॉनिटरिंग करना है।
1: जी डॉक्टर साहब, फिर रोकूंगा आपको, एक फोन आ गया है। हेलो
2: हेलो नरेश भाई नमस्कार।
1: नमस्कार जी, कौन साहब बोल रहे हैं?
2: ऋषिपाल नागर बोल रहा हूँ जी, दादूपुर धनकौर जिला गौतम बुद्ध नगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से।
1: बहुत बहुत स्वागत है ऋषिपाल जी, क्या हाल चाल है?
2: मैं ठीक है जी, आप सुनाओ, बच्चे परिवार सब ठीक है?
1: सब बढ़िया है, बताएं सवाल क्या है?
2: मैं ठीक है नरेश भाई, एक हमने जो है इक्का पौधा लगा रखा है सर, अब उसमें वैसे गन्ने तो पूरे हो रहे हैं लेकिन उसमें जो है कंसुआ ज्यादा निकल रहे हैं।
1: अच्छा, कितना लगा कितना लगाया है?
2: है 10-12, ज्यादा नहीं है, 10-12 मीट है, घर में ही लगा।
1: अच्छा, घर में ही लगा रखा आपने गन्ने
2: को, उसमें जो है कम से ज्यादा निकल रहे हैं, कैसे
1: कल्ले ज्यादा निकल रहे हैं?
2: हाँ, उसमें से गन्ने में गांठ नहीं होती है सर?
1: हाँ,
2: जो गांठ होती है गांठ में से फूट फूट के निकल रहे हैं ज्यादा।
1: जमीन के पास वाली जमीन में से निकल रहे हैं या ऊपर की आंखें फुटाव कर गई है?
2: ऊपर निकल रहे सर, ऊपर की बढ़ोतरी होगी, जो ऊपर नहीं छते अगोला बोलते हैं हमारे यहाँ पे, अगोला जो बोलते हैं जैसे ऊपर
1: जी,
2: तो वो कम हो गए हैं, फुटे ज्यादा चल रही है नीचे से।
1: उसमें देखो ऊपर कहीं उसमें कोई सुंडी तो नहीं है?
2: क्योंकि शायद कीड़ा का प्रकोप
1: टॉप बोरर के लग जाने से, जब टॉप बोरर का अटैक होता है तो मेन गोब वहाँ पर प्रभावित हो जाती है, तो उसके बराबर वाली आंखें फुटाव करके चलना शुरू कर देती है।
2: जी जी, वही है सर। हाँ, वही है तो जो आप बता रहे हो।
1: टॉप बोरर अगोला बेधक जब लगता है तो वो इस कारण से क्या होगा कि उसमें साइड वाली आंखें फुटाव होगी, तो ये घर पे चूहा खाने के लिए इस्तेमाल करना है या किसी और पर्पज से है?
2: ना, खाने के लिए, बच्चे के लिए, घर पे
1: बच्चन के लिए। फिर तो आपको वहाँ पे लाइट ट्रैप और फेरोमोन ट्रैप लगा देते, उन्हीं से कंट्रोल हो जाता है। दो ट्रैप, लाइट ट्रैप और फेरोमोन ट्रैप लगा दो अपने घर पे। टॉप बोरर का विशेष एक ल्यूर आता है, वो लगा दो तो आगे भविष्य में, क्योंकि अब तो आपके खाने का समय आ चुका है, पांचवी पीढ़ी है, तब भी प्रयास करो उसमें एक, क्योंकि नीम ऑयल का आप इस्तेमाल करें जब तितली आए उस समय, और लाइट ट्रैप दो तीन बल्ब लगा दो आसपास, और बल्ब के नीचे एक किसी बर्तन में थोड़ी सा दवाई या तो क्लोरो या प्रोपेनोफोसाइपर पर कोई थोड़े से उस बर्तन में बल्ब के नीचे रख दो और उसमें पानी भर दो, ताकि जो बल्ब के पास वो कीड़ा आए और वो नीचे उसमें गिरे और गिरने के बाद वहां पर समाप्त हो जाए, आपकी फसल सुरक्षित रहेगी। फिर उससे इसको लाइट ट्रैप का मॉडल बना।
3: ऋषिपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, अगला फोन लेते हैं जी। हेलो
4: नमस्कार जी।
3: नमस्कार जी, कौन सा बोल रहे हैं?
4: अलीगढ़ यूपी से हरिओम जी बोल रहा था।
3: जी हरिओम जी, बताएं क्या सवाल है?
4: सर जी हमारा सवाल ये है कि हमारे पास जो तीन आम के पेड़ हैं,
3: आम के
4: जी
3: जी,
4: वो लगभग 12 फीट के लगभग ऊंचाई है उनकी।
3: अच्छा,
4: उनमें 4-6 महीने से उसके जो नई कोंपल निकलती है, उसके कल्ले निकलते हैं उसके, उनको पता नहीं कोई कीड़ा आया क्या, वो छोटे कच्चे निकलने पर ही वो खत्म कर देता, उनको उनकी बढ़वा नहीं हो रही।
1: ये तो दोनों चीजें इस टाइप की है, क्योंकि थोड़ा सा डायग्नोस करके देखने वाली है, मैंगो मॉल फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है कहीं पे, वहां पे बंच बन जा रहा हो, छोटी छोटी कोंपले फुटाव करती रहती है, क्योंकि वैसे तो बेसिकली ये डिफरेंट चीजें हैं। दूसरा, उसको कीट काटने के कारण भी ऐसा होता है कि आपने वहां पे निकली और फुटाव उसमें आ गया।
4: आज वो काट के डाल देते हैं, जमीन पर गिर जाते हैं पत्ते।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, तो हो सकता है किसी इंसेक्ट का, कीड़े का प्रभाव वहां पर रहा हो, जिस कारण से वो काट के नीचे डलता रहता हो उस पर। यदि ऐसा प्रभाव नजर आ रहा है तो आप उसमें क्लोरो प्लस साइपर आता है या क्लोरोपाइरिफास, ये कीड़े की दवाई है, आप इसका इस्तेमाल उसमें कर सकते हैं, स्प्रे कर।
3: हरिओम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका फोन करने के लिए।

0: यहीं पे उसका जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज है। एक ड्रोन को आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको 2.5 हेक्टेयर 1 घंटे में सर्वे हो जाएगा। अब हमारा किसान भाई पूरा दिन भी चलेगा तब भी कुछ एकड़ करना भी मुश्किल है। तो ये इसका टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, लेकिन ये तब है जब हमारे किसान भाई इसको सही वे में इस्तेमाल करें। जैसे हम जैसे ड्रोन की बात करें, अब हमारा हर कोई किसान सोचेगा मुझे ड्रोन खरीदना चाहिए, तो उसका इकोनॉमिक सही नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा? ड्रोन है 8 लाख का, किसान भाई इस्तेमाल करेगा 50 घंटे 100 घंटे। अब 8 लाख रुपए आपने घर में बंद कर दिए 1 साल के लिए 50 घंटे के लिए। हाँ, यही हमारा युवा ये ड्रोन खरीदेगा और हर एक किसान की खेत पे दे देगा तो इकोनॉमिक सही है। दूसरा ही इंपॉर्टेंट क्या है जो हमको समझना पड़ेगा, इस टेक्नोलॉजी से AI से सोशल चेंज आई है। आज आप देख रहे हैं, आज जो टेक्नोलॉजी है वो स्किल न्यूट्रल हो गई। मतलब पहले क्या होता था, लेटेस्ट सपोज आप मान लीजिए ट्रैक्टर है, अब उसमें जो मेल ड्राइवर्स होते हैं वो ज्यादा चला पाते थे क्योंकि फीमेल को सूट नहीं करता था उसके जो कंट्रोल सिस्टम। लेकिन वही ड्रोन का आप रिमोट कंट्रोल दे दीजिए महिला के हाथ में,
1: वो चलाएगी आराम
0: वो
1: से।
0: चलाएगी। तो इसने टेक्नोलॉजी को स्केल न्यूट्रल कर दिया कि कोई भी उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है।
1: जी डॉक्टर साहब, अब आप पे आते हैं। मलिक साहब, आप बताएं और मोटा मोटी बताओ जी, किसान को क्या लाभ है? सीधी बात है, हम क्योंकि किसान के फायदे की बात कर रहे
2: बिल्कुल
1: हैं।
2: बिल्कुल,
1: AI से किसान को क्या लाभ होने वाला
2: क्या
1: है?
2: लाभ है वास्तव में किसान को, यदि हम अपने गन्ने के केस में, क्योंकि मैं गन्ने पे ही फोकस करूंगा, जनरल नहीं, गन्ने के केस में यदि हम AI मॉडल किसान के लिए लेके आते हैं और किसान उसको एडॉप्ट करता है, तो उसको प्रिडिक्शन पहले से ही पता लग जाएगा कि उसके खेत में किस प्रकार के कीट का प्रकोप होने वाला है या प्रारंभ हुआ है, तो कितने छोटे से क्षेत्र में। जैसे आज हम स्प्रे करते हैं, हमारे किसान को नहीं पता है कि मेरे खेत में कौन सा कीट और कितने क्षेत्र में है, वो पूरे 1 एकड़ पर स्प्रे करता है। AI में हम उस पर्टिकुलर 10 मीटर स्क्वायर में या 5 मीटर स्क्वायर में यहां पर कीट का इंटेंसिटी वहां पर बढ़ी है, वहीं पर ही हम उसको स्प्रे करके वहीं कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारा जो पेस्टिसाइड का यूज है वो मिनिमम लेवल पे जा सकता है। दूसरा, आप उसमें यदि मैं बात करूं, जब हम AI पे गन्ने में चलते हैं तो ड्रिप मस्ट है, तो उसके लिए वाटर सेविंग लगभग 40% तक आप वाटर सेविंग प्लस न्यूट्रिएंट सेविंग, पोषक तत्व तो उतनी ही मात्रा में हमको पौधे के रूट जोन में देने हैं जहां पर उसको नीड है। हमें ब्रॉडकास्टिंग नहीं करना है, हमें उसको उसी जोन में पानी देना है, उसी जोन में हमें न्यूट्रिएंट देना है, और उसी में हम 30% वाटर सेविंग कर रहे हैं, 30% हम उसमें न्यूट्रिएंट की सेविंग कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ सबसे मेन है कि यदि हम उसके प्रेडिक्शन कर लेंगे पहले ही, हम सारे न्यूट्रिएंट अप्लाई करके पहले से हमें पता होगा, इंडस्ट्री तक को पता होगा कि आपका इस इतने ज्योग्राफिकल एरिया में आपको इतनी प्रोडक्टिविटी मिलने वाली है। ये सारी चीजें हमारे किसान को भी पता होगी और इंडस्ट्री को भी पता होगी। हमारे किसान को भी पता होगा कि मेरी ये फसल इस समय मैच्योर हो गई है, और क्योंकि वो मैच्योरिटी के पैरामीटर हम उसके साथ कोरिलेट करेंगे, और इंडस्ट्री को भी पता होगा कि इस वैरायटी की हम हार्वेस्टिंग इस समय करते हैं तो हमें इतनी ब्रिक्स मिलेगी, इतनी उसमें रिकवरी उसको प्राप्त होगी। तो उसी के बेस पे हम AI का मॉडल किसान के लिए, वो सेविंग का मॉडल है उसके लिए, जो आपका पेस्टिसाइड है उसकी सेविंग होगी, वाटर की सेविंग होगी, न्यूट्रेंट की सेविंग होगी, और 2-4% नहीं, आपकी 30-35% तक सेविंग होगी, प्लस 30-40% तक प्रोडक्शन में इंक्रीज होगा। ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है।
1: अभी इंद्रवीर भाई का फोन आया था कि भाई कोशिश कर रहे हैं कि किसान की आमदनी दुगनी हो, तो ऐसे होगी?
2: बिल्कुल बिल्कुल, इसमें नो डाउट, क्योंकि लागत कम हो रही है।
1: जी
2: भाई, मुझे जिस क्षेत्र में उसको यूज करना है केवल उतने छोटे हिस्से में, जो हम AI का मॉडल लगाते हैं तो हमारे सेंसर है जमीन में भी, हम प्लांट के पास में सेंसर लगा रहे हैं, कितने न्यूट्रेंट की रिक्वायरमेंट है, हम उतना ही न्यूट्रेंट उसको सप्लाई में दे रहे हैं। हम सोयल का डाटा पहले हम अपना जनरेट करते हैं ताकि उसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट जनरेट करते हैं कि इतनी प्लांट को रिक्वायरमेंट है, उसके बेस पे ही हम उसको अप्लाई वहां पे करा रहे हैं। तो वे सारी चीजें हमारे पास है मॉनिटरिंग करने के लिए। मॉनिटरिंग आप जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया ड्रोन का,
1: ड्रोन
2: हमारा केवल किसान की भाषा में अभी केवल स्प्रे के लिए है, लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में जब हम इसमें बात करते हैं AI में, वो वहां पर सर्विलेंस के लिए है, वो जानकारी के लिए भी है, कहीं डिजीज का या इंसेक्ट का या न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी का इम्प्रेशन तो नहीं आ रहा है, स्ट्रेस का इम्प्रेशन तो नहीं आ रहा है, वो सारा डाटा बेस हम उसके बेस पे हम उसको एनालिसिस करते हैं कि भाई ये चीजें इस फील्ड में आ रही, और इसको कोरिलेट करके हम फार्मर्स को फिर उसी के अकॉर्डिंग एडवाइज करते हैं कि आपको ये चीज इस अंतराल पे इतनी वाटर सेविंग के साथ में आपको उसमें जाना है।
1: तो डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया है कि ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जैसे आपने

0: एआई की बात करिए, आपने कहा कि ड्रिप लगाएंगे तो
1: बिल्कुल
0: वो
1: बिल्कुल
0: जैसे ही आपका एआई बताएगा कि भाई पानी की जरूरत पड़ी है
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: पानी आपने दे दिया, पानी क्योंकि जितनी जरूरत है उतना देना
1: उतना दिया
0: है,
1: जाएगा
0: तो वो
1: बिल्कुल
0: पानी की भी बचत हो जाएगी,
1: जी
0: बिजली की बचत भी हो जाएगी,
1: बिल्कुल
0: और उसके साथ साथ ड्रिप के साथ हम शायद अपना न्यूट्रिएंट्स हैं जो
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: जो पोषक तत्व
1: पोषक तत्व
0: वो
1: हैं
0: भी उसी के द्वारा
1: उसी के अकॉर्डिंग जाएंगे,
0: तो वो बिल्कुल जड़ में जहां जरूरत है वहीं
1: वहीं पर जाएंगे उसको।
0: तो जो बाकी जो खाली जमीन है छिड़काव पे तो सब जगह गिरेगी, वो
1: ब्रॉडकास्टिंग करते हैं तो सब जगह जाती है, बिल्कुल
0: सेम हो जाएगा दवाओं का,
1: दवाओं का
0: है ना। तो कुल मिला के जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, डॉक्टर मलिक, कि बहुत सा पैसा हम बचा सकते हैं, जरूरत इस बात की है कि हम इस चीज को खुले दिल से एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें,
1: भविष्य है।
0: जी जी जी
1: बिल्कुल।
0: ये अब डॉक्टर साहब उत्पादन तो आपने बताया है कि लगभग कितना
1: बढ़ेगा, 30 से 40%।
0: 30 से 40%
1: उत्पादन को इस तरीके से भी कोरिलेट करो कि उत्पादन 30 से 40% बढ़ेगा, लागत 30 से 40% कम होगी। जो आप दे रहे हैं उससे लागत में भी कमी आएगी और उत्पादन में वृद्धि होगी,
0: यानी आपका खर्चा कम हो जाएगा और इनकम जो है वो
1: बढ़ जाएगी।
0: तो डॉक्टर साहब जो अब कुल मिला के जो हमारे युवा किसान है खासतौर पर,
1: जी
0: क्योंकि हमारे पास अब लगभग एक मिनट है, एक
1: अच्छा,
0: मिनट
1: अच्छा।
0: में उनको ये बता दो कि भाई आने वाला समय एआई का है,
1: नो डाउट,
0: क्यों है?
1: इसके लिए मैं गन्ने के केस में विशेष रूप से बताना चाहूंगा किसान भाइयों को जो हमारे युवा है, क्योंकि हम हर चीज को जब तक डाटा बेस जनरेट करके हम एनालिसिस करके, जो आज का समय है हम साइंटिफिक लेवल पर जब हम किसान को बताते हैं वो केवल एनालिसिस करके बताते हैं। जब भी मैं शुरू की बात से ही यहां को रिलेट करना चाहूंगा, किसान केवल एक चीज देखता है, कलर
0: जी,
1: किसान केवल उसकी हाइट और कलर दो चीज को मेजर करता है, एआई आपकी सब चीज को मेजर करेगा, हाइट को भी, कलर को भी, वेट को भी, उसका कोरिलेशन वेदर से भी निकालेगा, उसका कोरिलेशन आपके वहां पर सोयल स्ट्रक्चर से भी निकालेगा, जो एक्यूरेसी के साथ में किसानों के लिए और हमारे पूरी इंडस्ट्री के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज और वो एक बहुत बड़ा उनके लिए बेनिफिशियल पॉइंट बनने वाला है।
0: डॉक्टर मलिक, डॉक्टर परे, बहुत मजा आ रहा था लेकिन समय की पाबंदी है डॉक्टर साहब, अब समय है कि हम किसानों से विदा लें, तो इसी के साथ हम आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
1: धन्यवाद सर, धन्यवाद।
2: किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, आईपीएल की किसान मित्र जैविक खाद, मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए, फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ, किसान भाइयों सुन लो मेरी बात।

0: अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें।
1: आज के विशेष फोन इन कार्यक्रम में आप सुन रहे थे गन्ने की पाठशाला के अंतर्गत गन्ना फसल में AI का प्रयोग। आज के हमारे विशेषज्ञ थे डॉक्टर विकास कुमार मलिक, वैज्ञानिक एवं प्रभारी गन्ना उत्कृष्टता केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र बागपत उत्तर प्रदेश से। और जो दुमारे दूसरे जो विशेषज्ञ थे डॉक्टर रऊफ अहमद परे, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक थे कृषि अभियांत्रिकी संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूसा नई दिल्ली से, और कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे नरेश पारासर। तो इसी के साथ हमारा आज का कृषि जगत कार्यक्रम समाप्त होता है। सभी सुनने वाले किसान भाइयों बहनों को हमारा राम राम। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और कार्यक्रम संयोजक थे शिवनंदन लाल।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 7:35 हो चुके हैं। अब सुनिए कार्यक्रम कव्वाली। कव्वाली के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ पूजा भारती। गजल और कव्वाली में आज आप सुनेंगे सबसे पहले जगजीत सिंह की आवाज में गजल।

यूं ही मोहब्बत में जा रहे थे हम चलते हुए, रास्ते में तुम मिल गए और मुलाकात हो गई। लोगों ने जाने क्या कर दिया कि अब मुलाकात के लिए भी तरसते हैं। दिल यूं ही बेकरार है, बेकरारी जीवन में छाई है। और ऐसे ही कई लाइन, कई ऐसे गज़लें और कई ऐसे लफ्ज़ को कई लोगों ने बहुत खूबसूरती से पिरोया है। उनमें से एक गज़ल चंदन दास के

0: गजलों का कार्यक्रम यहीं पर खत्म होता है। मुझे पूजा भारती को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 7:45 होने को है। अब कुछ ही पलों में सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये प्रति माह की। दिल्ली कैबिनेट बैठक में गुरु तेग बहादुर अस्पताल में 250 बेड के सुपर स्पेशलिटी ट्रॉमा ब्लॉक के निर्माण

0: को मंजूरी दी गई। नीति आयोग ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 जारी किया। इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग में दिल्ली शीर्ष पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली सरकार कल सेवा, समर्पण और जनभागीदारी से जुड़े चार प्रमुख कार्यक्रम आयोजित करेगी। और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज विश्व ओजोन दिवस पर ओजोन परत के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता दोहराने का आह्वान किया। समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: इससे सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मंजूरी से भविष्य निधि बचत तक पहुंच बढ़ेगी और कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन सुरक्षा का विस्तार होगा।
2: वेतन की सीमा बढ़ाने का फैसला देश में सभी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फिलहाल अगर कोई नया कर्मचारी हर महीने 15,000 रुपए से अधिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है तो वह अपने आप कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ के दायरे में नहीं आता था। वहीं अब वेतन सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपए करने से अब बड़ी संख्या में कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था से जुड़ सकेंगे। इससे अस्थायी और औपचारिक रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को भविष्य निधि में बचत, कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन और बीमा सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दिलशाद गार्डन स्थित गुरु तेग बहादुर अस्पताल में 250 बेड के सुपर स्पेशलिटी कम ट्रॉमा ब्लॉक के निर्माण को मंजूरी दी गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस परियोजना की लागत 244,87,00,000 रूपये होगी।
3: नया ब्लॉक जीडीपी अस्पताल के मौजूदा परिसर में ही बनाया जाएगा। 7 मंजिला इमारत में 77 क्रिटिकल केयर बेड, 9 आधुनिक ऑपरेशन थिएटर और 38 ओपीडी कमरे होंगे। ब्लॉक में 24 घंटे आपातकालीन सेवा के साथ सिटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे और प्रयोगशाला जैसी जांच सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परियोजना का निर्माण प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के चौथे चरण के तहत किया जाएगा और इसे 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि नए ब्लॉक के शुरू होने से गंभीर मरीजों को 24 घंटे सातों दिन इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर के साथ विशेषज्ञ चिकित्सा, जांच, सर्जरी और गहन चिकित्सा की सुविधाएं एक ही स्थान पर मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे पूर्वी दिल्ली में गंभीर दुर्घटनाओं और आपातकालीन मामलों के इलाज की क्षमता बढ़ेगी। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
0: इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स आईईएमआई 2025 के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में दिल्ली को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान मिला है। इस सूचकांक का शुभारंभ आज नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा किया गया। इसमें उपराष्ट्रीय स्तर पर ई मोबिलिटी के लिए नीतिगत ढांचे और कार्यान्वयन परिणामों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। एक रिपोर्ट।
4: दिल्ली के बाद अन्य शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा हैं। ये सूचकांक का दूसरा संस्करण है। ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपने इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में हुई प्रगति का आकलन करता है। इस सूचकांक के अंतर्गत 3 प्रमुख विषयों, परिवहन विद्युतीकरण प्रगति, चार्जिंग अवसंरचना की तैयारी और इलेक्ट्रिक वाहन अनुसंधान तथा नवाचार स्थिति के अनुसार 16 संकेतकों पर सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का 100 अंकों में मूल्यांकन किया जाता है और उन्हें अंक प्रदान किए जाते हैं। इसका उद्देश्य निर्णय लेने में सहायता करना, राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और सर्वोत्तम प्रथाओं को और उत्कृष्ट पद्धतियों को साझा करने को प्रोत्साहित करना है। इस अवसर पर नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना 2047 तक विकसित भारत की महत्वाकांक्षा के लिए एक आर्थिक, पर्यावरणीय और रणनीतिक अनिवार्य कार्यता है। ऐसा अनुमान है कि 2040 तक सभी नई कार बिक्री में 40% हिस्सा इलेक्ट्रिक कार का होगा।

0: रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रियंका अरोड़ा।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
2: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली सरकार कल सेवा समर्पण और जन भागीदारी से जुड़े चार प्रमुख कार्यक्रम आयोजित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिल्ली सरकार एक माह तक सेवा संकल्प अभियान भी चलाएगी। इस दौरान परिवहन, सड़क, सीवरेज, जल शोधन, शिक्षा, बिजली, सार्वजनिक सुविधाओं और शहरी सौंदर्यीकरण से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा।
3: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि कर्तव्य पथ पर शाम 7 बजे आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के तहत 1,00,000 दिए जलाए जाएंगे। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो संदेश में मुख्यमंत्री ने लोगों से प्रधानमंत्री के अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु और देश की सेवा में निरंतर शक्ति के लिए प्रार्थना करने का आह्वान भी किया।
4: हम सब मिल करके अपने घर पे, अपने आंगन में एक आशीर्वाद का दिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए लाएं शाम को 6 से 7 के बीच 17 सितंबर को। मैं भी जलाऊंगी, आप भी जलाइए आशीर्वाद का दिया।
3: वहीं त्यागराज स्टेडियम में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक मेगा रक्तदान शिविर होगा, जिसमें 2,500 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही अलीपुर स्थित खाटू श्याम दिल्ली धाम में 108 कुंडीय यज्ञ का आयोजन होगा और दृष्टिबाधित बच्चों द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। इसके अलावा श्रमिकों के लिए नमो श्रमिक सेवा केंद्र शुरू किया जाएगा। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अनुपम मिश्र।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन का ये सम्मेलन एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करेगा। ये सहयोग को बढ़ावा, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती, निवेश आकर्षित करने और प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को साथ लाएगा। सम्मेलन में 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हो रहे हैं। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में मानवाधिकारों की रक्षा और शांति को बढ़ावा देने में संसदों की भूमिका विषय पर आयोजित कार्यशाला में हिस्सा लिया। कार्यशाला में मानवाधिकारों की रक्षा, संसदीय निगरानी और संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान में विधायिकाओं की भूमिका पर चर्चा हुई। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली को देश की सोलर कैपिटल बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर आयोजित सोलर वेंडर्स मीट में विक्रेता और हितधारकों से सरकार के साथ मिलकर काम करने की अपील की। श्री सूद ने बताया कि दिल्ली सरकार अगले कुछ महीनों में करीब 2,30,000 सोलर पैनल इंस्टॉलेशन को सुगम बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसके लिए अगले 6 महीनों में करीब 2,600 से 2,700 करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नई दिल्ली के कौशल भवन में वर्ल्ड स्किल्स शंघाई 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल के लिए विदाई समारोह आयोजित किया। इस दल में कुल 70 कुशल युवा प्रतिभागी शामिल हैं, जो इसे भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल बनाता है। ये दल चीन के शंघाई में 22 से 27 सितंबर तक होने वाली 48वीं वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता में 63 कौशल श्रेणियों में देश का प्रतिनिधित्व करेगा। ये प्रतियोगी विश्व मंच पर पहली बार 11 नए और उभरते कौशल क्षेत्रों में हिस्सा लेगा, जिनमें ड्रोन तकनीक, विमान रखरखाव, सॉफ्टवेयर परीक्षण और दंत कृत्रिम अंग शामिल हैं। विदाई समारोह में दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद भी उपस्थित रहे। दिल्ली यातायात पुलिस की उत्तरी रेंज ने यातायात नियमों के उल्लंघन के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर 2,511 चालान जारी किए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने इस अभियान के अंतर्गत गलत तरीके से वाहन खड़ा करने पर 2,041, गलत दिशा में वाहन चलाने पर 383 और वाहनों में रंगीन शीशों के इस्तेमाल पर 87 चालान जारी किए। अभियान का उद्देश्य यातायात अनुशासन बनाए रखना, मार्गों पर अवरोध रोकना और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना था। दिल्ली नगर निगम आयुक्त संजीव खिरवार ने आज दिल्ली की स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने जोनवार और वार्डवार कार्य योजना तैयार करने के निर्देश देते हुए कचरा संवेदनशील स्थानों की सफाई, घर घर कचरा संग्रहण, स्रोत पर कचरा पृथककरण और दिल्ली को बिन मुक्त बनाने पर बल दिया। आयुक्त ने पारंपरिक सामुदायिक कूड़ेदानों पर निर्भरता को चरणबद्ध तरीके से कम कर मौजूदा स्तर के अधिकतम 20% तक लाने के लिए कार्य योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए। दिल्ली नगर निगम ने अनधिकृत निर्माण और खतरनाक इमारतों के खिलाफ प्रवर्तन अभियान तेज कर दिया है। आज सभी 12 जोन में 46 ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई, 11 संपत्तियां सील की गई और 12 ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए गए। राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा आयोजित 2 दिवसीय जल मंथन 2026 आज समाप्त हो गया। इस महामंथन में इसराइल, ब्रिटेन, नीदरलैंड और फ्रांस के बड़े तकनीकी जानकार शामिल हुए। इस कार्यक्रम में दिल्ली के जल मंत्री परवेश साहिब सिंह भी उपस्थित रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
5: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: आज विश्व ओजोन दिवस है। ये दिन पृथ्वी पर जीवन की रक्षा में ओजोन परत की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष के विश्व ओजोन दिवस का विषय ठंडे ग्रह के लिए वैश्विक कार्रवाई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर लोगों से विज्ञान आधारित उपायों, टिकाऊ शीतलन और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को अपनाने की प्रतिबद्धता दोहराने का आह्वान किया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज विश्व ओजोन दिवस पर ओजोन परत के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता दोहराने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में आज वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन के 21वें संस्करण के लिए फिनिशर मेडल का अनावरण किया। इस मैराथन का आयोजन रविवार को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से होगा। दिल्ली के श्रम, रोजगार और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि यह मैराथन दिल्ली के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम बन गया है जो देश और दुनिया भर के लोगों को एक साथ लाता है।
6: आप सबसे अपील है, आप सबका आह्वान है कि 18 अक्टूबर को होने वाले दिल्ली हाफ मैराथन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और आइए दिल्ली को एक टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर दोबारा से तैयार करने के संकल्प को पूरा करें।
1: महान कलाकार अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि कई दशकों से उनके सहज अभिनय, अद्भुत बहुमुखी प्रतिभा और शानदार काम ने भारतीय सिनेमा और खासकर कन्नड़ सिनेमा पर गहरी छाप छोड़ी है। राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये प्रति माह की। दिल्ली कैबिनेट बैठक में गुरु तेग बहादुर अस्पताल में 250 बेड के सुपर स्पेशलिटी ट्रॉमा ब्लॉक के निर्माण को मंजूरी दी गई। नीति आयोग ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 जारी किया। इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग में दिल्ली शीर्ष पर। और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज विश्व ओजोन दिवस पर ओजोन परत के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता दोहराने का आह्वान किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: रात्रि के 8 बज चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अब सुनिए फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीत मालिका। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गीत मालिका में। इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ पूजा भारती।

क्योंकि ये ऐसा माला है, यानी गीतों का माला कुछ इस तरीके से पिरोया गया है जो आप आनंद ले सकेंगे, जिसमें 80s के उन गीतों का, जो गीत हर वक्त हम सुनना चाहते हैं और लगभग कोशिश करते हैं कि ऐसा कोई गीत सुनने को मिल जाए, उन्हीं गीतों को लेकर आज मैं हाजिर हूं पूजा भारती। और शुरुआत करते हैं सबसे पहला गीत किशोर कुमार की आवाज में।

इस खूबसूरत गीत के साथ अगर हम ये कहें कि ऐ मेरे हम सफर साथ चल तू मेरे इस सफर में, कोई गम न रहेगा फिर जिंदगी की डगर में, तू जो हाथ थाम ले।

हाथ मेरा, तो यकीन आ जाएगा फूल खिल जाएंगे कांटों भरे इस शहर में। वाकई में अपने हम सफर से यही तो ख्वाहिश होती है।

इसी इंतजार के साथ काश वो पल आ जाए जब तुम और मैं एक साथ बैठे हों और वक्त वहीं थम जाए। ये सर्द हवाएं जब तुम्हें छूकर गुजरे तो मेरा नाम लेकर बह जाए। ना फासले हो ना कोई मजबूरी दरमिया, बस तुम और मैं हूं और प्यार का जहां हो। जी हाँ, प्यार करने वालों ऐसे ही सोचा करते हैं और गीतों में कुछ इसी तरीके से प्यार करने वालों के लिए ढाला गया खूबसूरत आवाज में। जी हाँ, आवाज किसकी है, लता मंगेशकर और एसपी वाला सुब्रमण्यम। आइए सुनते हैं इस गीत को।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत मालिका मेरे यानी कि पूजा भारती के साथ, और गीत मालिका में आपके पसंद के ही तो गीत हैं। जी हाँ, ये वो गीत हैं जो हर वक्त हम सुनना चाहते हैं और कोशिश करते हैं हमारे कानों में इन गीतों की एक शब्द जरूर पड़ जाए, क्योंकि गुनगुनाने में ये गाने ये गीत बहुत ही आनंद देते हैं। फिलहाल तो आगे चलते हैं अगले गीत की ओर। कहते हैं ना कि उठाकर पलके वो दिल का सुकून छीन लेते हैं और झुकाकर नजरे वो धड़कनों को उलझा देते हैं। लोग ढूंढते हैं तहजीब किताबों में, मगर वो पलके झुकाकर पूरी हया की किताब लिख देते हैं।

कहते हैं कि जिंदगी में आप चाहे कहीं भी चल जाए, लेकिन एक रास्ता ऐसा होता है जहां लगता है कि जाना तो वही है। कहते हैं ना कि नक्शे बदलते देखे हैं मैंने जमाने के, पर मेरा हर रास्ता तुझ पर ही ठहरता है। लोग ढूंढते हैं खुदा को आसमानों में, मेरा तो हर सजदा तेरी गली से ही गुजरता है।

दुनिया सिमट जाती है अगर दो मोहब्बत करने वाले मिल जाते हैं। कहते हैं ना कि हवाएं रुख बदल ले, मौसम को एक नया बहाना मिल जाए। अगर तुम मेरे हो जाओ तो इस अधूरे जहां में आसमां मिल जाए। जी हाँ, मोहब्बत करने वालों की सोच कुछ इसी तरीके से होती है। तो क्यों ना एक और गीत सुना जाए जिसमें मोहब्बत करने वाले क्या बयां कर रहे हैं।

और प्यार करने वाले कुछ इस तरीके से ही तो सोचते हैं कि तुमसे मिलकर कुछ ऐसा खास लगा कि दूर होकर भी तुम मेरे आसपास लगा। बाकी सब तो बस दुनिया का एक हिस्सा थे, सिर्फ तुमको मिलकर ही मुझे खुद का एहसास लगा।

वाकई में जिंदगी में और क्या है, जिंदगी खूबसूरत तभी है जब आपके जीवन में मोहब्बत है, और मोहब्बत कहते हैं कि हर घड़ी को खूबसूरत बना देती है, हर पल खूबसूरत हो जाता है। जिंदगी के उतार चढ़ाव में मोहब्बत का ही साथ सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो फिर एक आखिरी नगमा मोहब्बत पर आपके लिए,

0: इसी के साथ कार्यक्रम गीत मालिका यहीं पर संपन्न होता है। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 8:45 होने को है। अब सुनिए समाचार संध्या हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईपीएफओ के अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये प्रति माह करने को मंजूरी दी। इसका 51 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित किया। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के पास हुए ड्रोन हमले पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली का आग्रह किया। छत्तीसगढ़ की एक विशेष एनआईए अदालत ने बस्तर जिले में 2013 के झीरम घाटी माओवादी हमले के मामले में

0: 10 दोषियों को मौत की सजा सुनाई और दिग्गज कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को 2024 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे के मामले में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। उन्होंने कौशल विकास, नवाचार और AI तथा क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में उद्योग की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर तंत्र अब व्यापक स्तर और अवसरों के चरण में पहुंच रहा है। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के सम्मेलन में सहयोग को बढ़ावा, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रूपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रूपये पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: इससे सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मंजूरी से भविष्य निधि बचत तक पहुंच बढ़ेगी और कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन सुरक्षा का विस्तार होगा।
2: वेतन की सीमा बढ़ाने का फैसला देश में सभी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फिलहाल अगर कोई नया कर्मचारी हर महीने 15,000 रूपए से अधिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है तो वह अपने आप कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF के दायरे में नहीं आता था। वहीं अब वेतन सीमा को बढ़ाकर 25,000 रूपए करने से अब बड़ी संख्या में कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था से जुड़ सकेंगे। इससे अस्थायी और औपचारिक रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को भविष्य निधि में बचत, कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन और बीमा सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने 3 लाख रुपए तक की छोटी निर्यात खेपों के लिए पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र RCMC या पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता से छूट दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य नए और छोटे निर्यातकों के लिए अनुपालन बोझ कम करना तथा डाक, कुरियर और अन्य उभरते माध्यमों से निर्यात को सुगम बनाना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन: सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक। तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे मोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाली डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है।

0: आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के अनुसार ये कार्रवाई की गई है। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के नजदीक ड्रोन हमले की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब पर हमलों में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली की उम्मीद करता है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इससे 1 अरब 40 करोड़ भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच आसान होगी और न्यूजीलैंड में रोजगार तथा आय में वृद्धि होगी। इससे पहले आज न्यूजीलैंड की संसद में भारत के साथ समझौते को लागू करने के लिए आवश्यक विधेयक पारित किया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर कल 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। इस दौरान भाजपा द्वारा देशभर में 12 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। श्री मोदी 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में अपना 25 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे। कोलकाता में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि श्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर यह अभियान समाज से हर वर्ग से जुड़ने का अवसर है।
1: इस अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जिस सेवा, जिस समर्पण और जिस निष्काम भाव से मोदी जी ने आजीवन काम किया है, उसी स्पिरिट के साथ हम उनके जीवन के माइल स्टोन्स को भी मनाएं। और सेवा संकल्प अभियान, मैं मानता हूं कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को सेवा, सहयोग और जन भागीदारी से जोड़ने का हमारा यह फर्म कन्विक्शन है, एक दृढ़ संकल्प है।
0: जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने आज स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत।
2: स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने देश से अपने वादा कर लिया।
0: श्री पाटिल ने कहा कि इस वर्ष अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और सहभागिता को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि देश में स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं।
3: आज देश के 5.25 लाख से अधिक गांव ODF प्लस मॉडल घोषित हो चुके हैं। साथ ही वर्ष 2014 से अब तक 12.22 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालयों का निर्माण हो चुका है। यह स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव को दर्शाता है। स्वच्छता इस सेवा 2025 में 18 करोड़ से अधिक नागरिकों ने भाग लिया, जिनमें से लगभग 14 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्रों में से हैं। यह दिखाता है कि देश में स्वच्छता के प्रति जन भागीदारी लगातार मजबूत हो रही है।
0: इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में दिल्ली को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान मिला है। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा का स्थान है। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ना 2047 तक विकसित भारत की महत्वाकांक्षा के लिए एक आर्थिक, पर्यावरणीय और रणनीतिक अनिवार्यता है।
4: दुनिया भर में लोग तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपना रहे हैं। अनुमान है कि साल 2040 तक बिकने वाली हर 10 नई कारों में से 4 कारें इलेक्ट्रिक होंगी। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में हमारे देश के लोगों की नौकरियां बची रहें और ऑटोमोबाइल सेक्टर तरक्की करता रहे, तो हमारे ऑटोमोबाइल उद्योग को भी इन वैश्विक रुझानों के साथ बदलना होगा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं, तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की जगदलपुर स्थित विशेष अदालत ने झीरम घाटी कांड के सभी 10 दोषियों को आज फांसी की सजा सुनाई। वर्ष 2013 में छत्तीसगढ़ के

0: बस्तर जिले में झीरम घाटी में माओवादियों के हमले में कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेताओं सहित 27 लोगों की मौत हो गई थी और 35 अन्य घायल हुए थे। एनआईए ने इस मामले में 11 माओवादियों को गिरफ्तार किया था। एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि ये पुरस्कार 22 सितंबर को गुजरात के केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: प्रेम प्रसंग हो या कॉमेडी या फिर सीरियस पात्र, अभिनेता अनंत नाग का सरल अभिनय पर प्रेक्षकों द्वारा प्रशंसा प्राप्त हुई है। मिचिना ओटा, हमसे गीते, अंकुर, मंथन, मालगुडी डेज, गणेशन मधुवे, गौरी गणेशा और 250 से ज्यादा फिल्मों में उनका पात्र अभिनय ने अपनी अनोखी छाप छोड़ी है। अभिनेता ने 5 दशक के अपने फिल्म जगत के सफर में कई फिल्म इंडस्ट्री में अपना योगदान दिया है, जिसके लिए उनको आज ये सम्मान प्राप्त हो रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अनंत नाग को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने सहज अभिनय और बहुमुखी प्रतिभा से कई दशकों से भारतीय सिनेमा और विशेषकर कन्नड़ सिनेमा पर अमिट छाप छोड़ी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि ये पुरस्कार देश के महानतम कलाकार के लिए उपयुक्त सम्मान है। सरकार ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का तत्काल प्रभाव से 3 साल की अवधि के लिए पुनर्गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि पुनर्गठित बोर्ड में विनोद अनुपम, मनोज जोशी, हंसराज हंस, प्रीति जिंटा, पंकज त्रिपाठी, रिकी केज, सुनील शेट्टी, रूपा गांगुली और प्रियदर्शन सहित 18 सदस्य शामिल हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर लोगों से विज्ञान आधारित उपायों, टिकाऊ शीतलन और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। श्री यादव ने कहा कि ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा कवच है और इसकी रक्षा करना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी कल से शुरू होगी। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। श्री शेखावत ने लोगों से ई नीलामी में शामिल होने का आग्रह किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईपीएफओ के अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रूपये प्रति माह करने को मंजूरी दी। इसका 51 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित किया। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के पास हुए ड्रोन हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की। छत्तीसगढ़ की एक विशेष एनआईए अदालत ने बस्तर जिले में 2013 के झीरम घाटी माओवादी हमले के मामले में 10 दोषियों को मौत की सजा सुनाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for greater industry participation in emerging technologies to make India an early leader. Leading global CEOs at Semiconductor Roundtable express confidence in India's potential. Union Cabinet approves hike in EPFO wage ceiling from 15,000 to 25,000 rupees per month. 51 lakh more employees to be benefited. Government declares Pakistan-based Shahzad Bhatti Network a terrorist organization under UAPA. New Delhi expresses deep concern at drone attack near Makkah in Saudi Arabia, urges early restoration of peace and stability in the region. A special NIA court in Chhattisgarh sentences 10 convicts to death in 2013 Jhiram Valley Maoist attack case in Bastar district. And veteran Kannada actor Anant Nag to be conferred the prestigious Dada Saheb Phalke Award for 2024. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of close collaboration between the government and the semiconductor industry in shaping India's technology future. Mr. Modi stated this while chairing the semiconductor roundtable with leading global CEOs in New Delhi today. The Prime Minister called for greater industry participation in skilling, innovation and emerging technologies such as artificial intelligence and quantum computing. More from our correspondent.
3: Prime Minister Narendra Modi said India should aspire to be among the early leaders in emerging technologies. He noted the significant progress made in the semiconductor sector and said the ecosystem is now moving from foundational efforts to a phase of greater scale and opportunity. Mr. Modi reiterated the government's commitment to a predictable and responsive policy environment while emphasizing that policies must evolve in line with technological advancements and industry requirements. He invited industry leaders to share suggestions on policy and administrative measures and assure them that their inputs would be given due consideration in further strengthening the sector. He encouraged industry leaders to actively participate in the next phase of India's semiconductor growth. The CEOs appreciated the government's sustained efforts to develop India's semiconductor capabilities, noting that progress made in manufacturing, design, infrastructure and talent development. They expressed confidence in the opportunities emerging under India Semiconductor Mission 2.0 and in India's potential to build capabilities across the semiconductor value chain, including manufacturing, research and development, advanced technologies and supporting industries. Anupam Mishra, Akashvani News, Delhi.
2: The meeting was attended by CEOs, heads and representatives of various organizations, including SEMI, Micron, Infineon, Tokyo Electron Limited, Fujifilm, Intel, Tata Electronics, Foxconn, Semiconductor Devices, Advantest, IBM Research, among others. The roundtable was held ahead of the inauguration of the fifth edition of Semicon India by Prime Minister Modi in New Delhi tomorrow. The Union Cabinet has approved the increase in the wage ceiling for mandatory coverage under the Employees Provident Fund organization from 15,000 to 25,000 rupees per month. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav made the announcement while addressing the media after the cabinet meeting in New Delhi today. He said the decision is expected to benefit over 51 lakh additional employees. Mr. Vaishnav said the revised wage ceiling will come into effect from Vishwakarma Jayanti tomorrow.
4: 25,000 rupees per month salary will be the new ceiling for PF deductions. इससे करीब 51 लाख employees को इसका benefit मिलेगा, जो कि 15 to 25 वाले band में थे, they will start getting covered in the new PF rules. भारत सरकार का इस पे estimated government expenditure रहेगा about 11,339 करोड़ rupees every year.
2: Our correspondent has more details on the cabinet's decision taken today.
5: The decision to raise the wage ceiling marks another important step towards building an inclusive, resilient and future-ready social security architecture. At present, a fresh employee joining employment at a wage above 15,000 rupees per month is not automatically covered under the EPF framework. Raising the ceiling to 25,000 rupees will bring a substantial segment of employees within the statutory social security framework. The revised wage ceiling will support a stronger employee retention and a more stable formal workforce, resulting in sustainable employment and higher productivity. The approval will expand access to provident fund savings, pension protection under the employees' pension scheme, and insurance protection under the employees' deposit-linked insurance scheme. Anand Kumar, Akashwani News, Delhi.
2: The government has introduced an exemption from the requirement of registration cum membership certificate or certificate of registration for small value export consignments up to 3 lakh rupees. The Ministry of Commerce and Industry said the measure is aimed at reducing the compliance burden for new and small exporters and facilitating exports through postal, courier and other emerging channels. This is Akashwani giving you the news.
6: Stay updated, stay ahead. Follow us on X at AIR News Alerts and on Instagram.

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है गैर फिल्मी गजलों का प्रोग्राम एक फनकार। आइए इस प्रोग्राम के तहत सुनते हैं तलत अजीज की आवाज में बशीर बद्र और नईम अलीस और सरदार अंजुम और सुरैया मेहर के लिखी हुई गजलें।

दिया है। आज नई दिल्ली में सरकारदा सीईओज के साथ सेमीकंडक्टर गोल मेज की सदारत करते हुए जनाब मोदी ने महारत टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचे को अपनाने की भारत की मजबूत बुनियाद को नुमाया किया और मसनू जहानत एआई और कंप्यूटिंग क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती हुई टेक्नोलॉजीज की महारत और जिद्दत तराजी में सनअतों की बड़े पैमाने पर शमूलियत की अपील की। एआई के शोबे में 1 करोड़ अफराद को तरबियत देने के हदफ का हवाला देते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत के होनहार अफराद और आलमी सनअती रहनुमाओं की सलाहियतों और तजुर्बों को यकजा करने से खातिरखा इम्कान पैदा हो सकते हैं। वजीर आजम ने कहा कि भारत को उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के मामले में कायद बनने की ख्वाहिश रखनी चाहिए। उन्होंने वाजे किया कि सेमीकंडक्टर के शोबे में खातिरखा पेशरफ्त हुई है और कहा कि यह इको निजाम बुनियादी कोशिशों से आगे बढ़कर बड़े पैमाने और ज्यादा मौकों के मरहले की जानिब गामजन है। इस दौरान सीईओज ने भारत की सेमीकंडक्टर सलाहियतों को फरोग देने में हुकूमत की पायदार कोशिशों की सताइश की। उन्होंने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और पूरे सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में सलाहियत साजी की भारत की अहलियत के तहत उभरते हुए इम्कान पर एतमाद जाहिर किया कि मैन्युफैक्चरिंग, तहकीक और तरक्की, एडवांस टेक्नोलॉजीज और मुआविन सनअतें शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कल नई दिल्ली में मुनाक़िद होने वाले सेमीकॉन इंडिया के 5वें एडिशन के इफ्तिताह से पहले ये गोलमेज मीटिंग मुनाक़िद हुई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2026 के 5वें एडिशन का इफ्तिताह करेंगे। ये 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस आलमी सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स निजाम से वाबस्ता शराकत दारों को यकजा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करेगी ताकि इस मुआवनत और इख्तिरा को फरोग हासिल हो, मैन्युफैक्चरिंग की सलाहियत में इजाफा हो, सरमायाकारी को रागब किया जा सके और मुस्तकबिल के लिए तैयार सलाहियत पैदा की जा सके। इस तकरीब में 600 से ज्यादा नुमाइशकार, 300 बैन अल-अक़वामी कंपनियां और 50 ममालिक के वफूद शिरकत कर रहे हैं। इस नुमाइश में जापान, जनूबी कोरिया, मलेशिया, नीदरलैंड्स, सिंगापुर और सूडान की नुमाइंदगी कर रहे 6 पवेलियन, 12 रियासती सरकारों के पवेलियन और 1 स्टार्टअप से मुतालिक मुख्तस पवेलियन शामिल होंगे। सेमीकॉन इंडिया सेमीकंडक्टर से मुतालिक भारत की मुमताज कॉन्फ्रेंस और नुमाइश है जिसका इनेकाद इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत और सेमी मुश्तरका तौर पर कर रहे हैं। मरकजी काबिना ने एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ के तहत लाजमी कवरेज के लिए तनख्वाह की हद को 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये महाना कर दिया है। आज काबिना मीटिंग के बाद मीडिया से खिताब करते हुए इत्तिलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस फैसले से 51 लाख इजाफी मुलाजमीन के लाजमी ईपीएफओ कवरेज के दायरे में आने की उम्मीद है जिससे कारकुनों के लिए समाजी तहफ्फुज़ का दायरा नुमाया तौर पर वसी होगा। इस इकदाम के लिए हुकूमत के सालाना अखराज का तखमीना तकरीबन 11,339 करोड़ रूपये है। जनरल वैष्णव ने कहा कि नजर सानी शुदा तनख्वाहों की हद कल विश्वकर्मा जयंती से नाफिजुल अमल हो जाएगी। जनरल वैष्णव ने कहा कि 2004 से 2014 तक ईपीएफओ की तनख्वाह की हद में कोई तब्दीली नहीं की गई है और सितंबर 2014 में इसे बढ़ाकर 15,000 रूपये कर दिया गया था। जनरल वैष्णव ने इस बात को उजागर किया कि मौजूदा फैसला इस हद को 25,000 रूपये तक बढ़ाकर इस नुक्ते नजर को मजीद बढ़ाता है जो कि इन वर्षों के दौरान उजरत में पायदार बढ़ोतरी, इजाफी आमदनी और बाजाब्ता रोजगार में तौसी की अक्कासी करता है। सेवा संकल्प अभियान कल से मुल्कभर में शुरू होगा। अभियान की शुरुआत से पहले वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कोलकाता में अखबारी कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीराजम नरेंद्र मोदी की दूरअंदेश क्यादत की तारीफ की और उन्हें अवामी बहबूद को सही मानों में तरजीह देने वाला रहनुमा करार दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि वजीराजम मोदी ने अवामी खिदमत के अपने 25 साल में भारत के हर शोबे में कायापलट की है। हुकूमत ने गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून यूएपीए के तहत शहजाद भट्टी नेटवर्क को दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। ये दहशतगर्द ग्रुप हथियारों, धमाका खैज मवाद और मनशियात की सरहद पर स्मगलिंग में मुलविस रहा है। इसके अलावा यह नौजवानों को भड़काने और मुजरिमीन को दहशतगर्दी की जानिब मायल करने में भी शामिल रहा है। मरकजी वजारत दाखिला ने इस मामले में आज गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहजाद भट्टी नेटवर्क ने भारत के जमहूरी ढांचे और फिरका वाराना हम आहंगी के ताने बाने को निशाना बनाते हुए नफरत अंगेज डिजिटल मवाद भी शाया किया है। वजारत दाखिला ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दहशतगर्दी को हरगिज बर्दाश्त न करने के नजरिए के तहत उसने यूएपीए के तहत शहजाद भट्टी नेटवर्क को दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। भारत ने सऊदी

0: अरब में मक्का के नजदीक ड्रोन हमले पर गहरी तश्वीश का इजहार किया है। इस हमले के ताल्लुक से मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब हुकूमत की इलाकाई सालिमियत और आम शहरियों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी कार्रवाई की मजम्मत करता है। उन्होंने मजीद कहा कि मक्का के नजदीक ये वाकया खासतौर पर तश्वीश का बायस है क्योंकि ये शहर पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए खुसूसी अहमियत का हामिल है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि भारत खित्ते में अमन इस्तेकाम की जल्द अज जल्द बहाली की उम्मीद करता है। इससे पहले सऊदी अरब ने कहा था कि उसके फिजाई दिफाई निजाम ने कल शाम मक्का के नजदीक ईरान की पुष्ट पनाही वाले यमन के हूसी मुसलह ग्रुप के जरिए किए गए ड्रोन हमलों के दौरान एक ड्रोन को नाकारा कर दिया और तबाह कर दिया। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की खसूसी एनआईए अदालत ने जीराम वादी के सभी 10 कसूरवारों को आज सजाए मौत सुनाई है। खसूसी जज अजय सिंह राजपूत ने यह फैसला सुनाया। कसूरवारों को फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू करने के लिए 30 दिन का वक्त दिया गया है। वाजह है कि 25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के दरबा पुलिस स्टेशन के तहत जीराम वादी में हुए माओनवाज हमले में कई सीनियर कांग्रेस रहनुमाओं समेत 27 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं इस हमले में 35 अपराध जख्मी भी हुए थे। इस मामले में कौमी जांच एजेंसी एनआईए ने 150 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और 11 माओनवाजों को गिरफ्तार किया गया था। एक मुलजिम की समाअत के दौरान मौत हो गई। एनआईए की खसूसी अदालत ने 5 सितंबर को बाकी 10 मुलजिमीन को इस मामले में कसूरवार करार दिया और आज सभी 10 मुलजिमीन को सजाए मौत सुनाई गई। मशहूर अदाकार अनंतनाग को साल 2024 के पुरवकार दादा साहेब फाल्के इनाम से नवाजा जाएगा। कई नस्लों को तहरीक देने वाले सिनेमा के उनके सफर और भारतीय सिनेमा में गिना कदर ताउन के बदले जनाब नाग को इस इनाम से नवाजा जाएगा। जनाब नाग को इस महीने की 22 तारीख को गुजरात के केवड़िया में मुनक्किद होने वाली 72वीं कौमी फिल्म इनामत तकरीब के दौरान दादा साहेब फाल्के इनाम से सरफराज किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज़मूदकार अदाकार अनंतनाग को दादा साहेब फाल्के इनाम दिए जाने के ऐलान पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जनाब नाग की बेहतरीन कारकर्दगी, हमागीर सलाहियत और उमदगी ने कई दहाइयों तक भारतीय सिनेमा पर अमिट नक्कोश छोड़े हैं। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि जनाब नाग ने हमेशा अपनी अदाकारी में गहराई का मुजाहरा किया है और मुनफरद अंदाज पेश किया है। वजीर आजम ने कहा कि एक मुनफरद फनकार के तौर पर जनाब नाग इस एजाज के मुस्तहिक हैं। इस दौरान इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव और वजीर मुमलकत डॉ एल मुरुगन ने जनाब अनंत नाग को मुबारकबाद पेश की है और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत को उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के मैदान में कायद बनाने के लिए सनअतों की ज्यादा शमूलियत की अपील की है। सरकर्दा आलमी सीईओज ने सेमीकंडक्टर गोल्डमेज के दौरान भारत की सलाहियत पर एतमाद का इजहार किया है और मरकजी काबीना ने ईपीएफओ के तहत कम अज कम उजरत की हद को 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये माहाना करने को मंजूरी दी है। इस फैसले से मजीद 51 लाख मुलाजमीन को फायदा होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम हेल्थ टिप्स। आइए इस प्रोग्राम के तहत सुनते हैं स्पाइन की हेल्थ यानी सेहत के हवाले से कुछ जरूरी बातें।
2: आज हमारे हेल्थ टिप्स का मौजू है रीढ़ की हड्डी। सामान जैसा कि हम जानते हैं रीढ़ की हड्डी हमारे जिस्म के लिए इंतहाई अहम है और इसकी हम किस तरह हिफाजत कर सकते हैं इस बारे में बता रहे हैं डॉक्टर राहुल खरे। आप प्रोफेसर हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल नई दिल्ली के शुभाय हड्डी में।
3: स्पाइन की जो बीमारियां होती हैं, जो परेशानियां होती हैं, वो जन्म से ही शुरू हो सकती हैं। अच्छा। जब बच्चे पैदा होते हैं तो कई बार उनकी बनावट ऐसी होती है कि रीढ़ की हड्डियां जो पीछे हैं वो पूरी अच्छे तरीके से बनती नहीं है, तो अंदर की जो स्पाइनल कॉर्ड है, नसें जो हैं, वो कई बार बाहर रह जाती हैं। तो बचपन से ही शुरू हो सकती है। जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो रिकेट्स की बीमारी में टेढ़ापन आ सकता है। जब डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें भी रीढ़ की हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है। आपने देखा हो कई लोग की कमर बिल्कुल टेढ़ी होती है या आगे बहुत ज्यादा झुके हुए होते हैं बच्चे। इसके अलावा यंग एज में एक्सीडेंट से हड्डियां टूट सकती हैं, तो रीढ़ की हड्डियां भी टूट सकती हैं। लोगों को डिस्क की प्रॉब्लम भी हो सकती है और जो लोग ऑफिस में बहुत समय तक बैठ के काम करते हैं उन लोगों को कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, ये भी बहुत आम पाया जाता है आजकल। और इसके अलावा जब उम्र बढ़ जाए

0: जाती है तो फिर लंबर स्पॉन्डिलोसिस जो होती है, जो उम्र की वजह से बदलाव आ जाते हैं, उसकी वजह से भी दर्द होना शुरू हो जाता है। और महिलाओं में तो हड्डियां कमजोर भी हो जाती हैं, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है, जैसे कि टीबी है, टीबी भी रीढ़ की हड्डियों में हो सकती है। तो ये कि हर चीज हो सकती है, जो भी किसी भी शरीर के अलग और किसी भाग में हो सकती है, वो सारी चीजें स्पाइन में भी हो सकती है। आपको अपने स्पाइन का ख्याल रखना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है एक्सरसाइज, क्योंकि जो हमारी रीढ़ की हड्डियां हैं वो एकदम बीच में है, उसके साइड्स में जो है मसल्स होती हैं, और हमारा पूरे शरीर का जो आकार है, जो वजन है, वो सब रीढ़ की हड्डियों के से ही जा रहा होता है। अगर आसपास की मांसपेशियां जो मसल्स हैं, अगर वो स्ट्रांग नहीं होंगी तो वो जल्दी थक जाएंगी तो फिर वो दर्द करेंगी। तो कमर का दर्द या पीठ में जो दर्द होता है लोगों को, वो सिर्फ रीढ़ की हड्डियों की वजह से नहीं होता है, वो कई बार मांसपेशियों की कमजोरी की वजह से भी हो जाता है। तो मैं उनको यही बोलना चाहूंगा कि चाहे जितनी भी लाइफस्टाइल बिजी हो, लेकिन अगर वो 10 मिनट 15 मिनट रोज हम सब अगर एक्सरसाइज, रीढ़ की हड्डियों की जो एक्सरसाइज होती है, कमर की जो एक्सरसाइज होती है, अगर ये 10-15 मिनट भी रोज अगर हम रोज करेंगे, तो हमारे धीरे धीरे वो मसल्स स्ट्रांग हो जाएंगे। मसल्स स्ट्रांग होंगी तो जल्दी थकेंगे नहीं तो वो दर्द नहीं करेंगी। और आजकल एक्सरसाइज के अलावा उनको विटामिन डी, कैल्शियम, प्रोटीन्स, अपनी डाइट का भी ख्याल रखना है, अपने वजन का भी ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप बैठ के काम कर रहे हैं तो हो सकता है आपका वजन भी बढ़ता जाए धीरे धीरे। तो आपको फिजिकली एक्टिव रहना है, स्पोर्ट्स खेलने हैं, वजन बढ़ने नहीं देना, क्योंकि वजन बढ़ेगा तो फिर वही वजन आपकी रीढ़ की हड्डियों के जरिए नीचे जाएगा और फिर उसमें और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और ओल्ड एज में आपको प्रॉब्लम्स ना हो, उसके लिए इन सब चीजों का तो ध्यान रखना ही है। और ओल्ड एज में पहुंचते हड्डियां कमजोर होने लग जाती हैं, तो उसके लिए शुरू से ही अगर हम ख्याल रखेंगे और टेस्ट करा लेंगे तो हम उससे भी बच सकते हैं। लंबे समय तक बैठने के लिए पोस्चर इम्पोर्टेंट होता है और स्मॉल स्मॉल ब्रेक्स लेने बहुत जरूरी होते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा डेफिनेटली जो इंडोर्स काम करते हैं, रीढ़ की हड्डी स्पाइन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे शरीर का, हम उसकी वजह से ही बैठ पाते हैं, उसकी वजह से ही खड़े हो पाते हैं, उनकी वजह से ही हमारा आकार होता है, हमारी हाइट होती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका हमें ख्याल रखना बहुत जरूरी है। क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या इलाज होता है, वो हम चर्चा कर ही चुके हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है प्रिवेंशन, कि हमें ये समस्याएं हो ही ना। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज, जैसे मैंने शुरू में भी बताया था, अगर आप रीढ़ की हड्डियों के लिए एक्सरसाइज करेंगे, मसल्स आपकी बैक की मसल स्ट्रांग रहेंगी, गर्दन की मसल स्ट्रांग रहेंगी, तो वो आपको आगे प्रॉब्लम बहुत बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम होगी रीढ़ की हड्डियों से रिलेटेड। इसके अलावा आपको नियमित एक बैलेंस डाइट लेना जरूरी है, जिसमें विटामिन डी भी हो, कैल्शियम भी हो, प्रोटीन्स भी हो, और अपने वजन का ख्याल रखें, वजन ना बढ़ना दें। शरीर का वजन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रीढ़ की हड्डियों पर जोर पड़ेगा। बच्चों को मैं खासकर एडवाइस देना चाहूंगा कि खूब आउटडोर स्पोर्ट्स खेलें, धूप में खेलें, ताकि उनको विटामिन डी मिलता रहे, उनकी मसल स्ट्रांग रहे। और बस यही बोलना चाहूंगा, पोस्चर का बहुत जरूरी है, कि पोस्चर वर्क प्लेस पे बहुत आम प्रॉब्लम आ रही है आजकल, तो उसके लिए भी पोस्चर अपना सही मेंटेन रखें, बीच बीच में ब्रेक्स लें।
1: साइन उम्मीद करते हैं डॉक्टर साहब की बातें आपको पसंद आई होंगी। अपने मुफीद मशवरों
2: समय अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम हेल्थ टिप्स के तहत स्पाइन से मुतालिक कुछ जरूरी बातें। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम मार्केट मंत्रा।
3: सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chowdhury and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: नमस्कार मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन श्रोताओं स्टूडियो में आज चर्चा के लिए हमारे साथ विराजमान हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ सिद्धार्थ

0: सिंह। सिद्धार्थ कार्यक्रम में आपका अभिनंदन।
1: नमस्कार प्राची, गुड इवनिंग अर्जुन।
2: गुड इवनिंग सर।
0: चर्चा शुरू करेंगे मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां।
2: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडस्ट्रीज राइज, सेंसेक्स गेन्स ओवर 300 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 23,218। न्यूजीलैंड पासेस लेजिस्लेशन टू इम्प्लीमेंट फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विद इंडिया एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन।
0: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में बढ़त, सेंसेक्स 300 अंकों से अधिक बढ़ा, निफ्टी 23,218 पर स्थिर हुआ। न्यूजीलैंड ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने के लिए कानून पारित किया और दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें घटी।
2: एंड बिफोर वी टेक आवर मेन स्टोरीज इन डिटेल, हियर इज एन इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर। The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
0: आइए श्रोताओं, बिना विलंब किए जानते हैं कि दिन के अंतराल में हमारे शेयर बाजार ने कैसा प्रदर्शन किया। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग आधे प्रतिशत की बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 333 अंक बढ़कर 74,336 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 99 अंक की बढ़त के साथ 23,218 पर स्थिर हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स बिना किसी बड़े बदलाव के बंद हुआ, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 100 में 0.2% की गिरावट आई। इससे पहले अमरीकी बॉन्ड यील्ड और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद बाजार सकारात्मक रूख के साथ खुले और पूरे सत्र के दौरान सीमित दायरे में कारोबार करते रहे।
2: Benchmark domestic equity indices ended over 0.4% higher today. Sensex gained 333 points to close at 74,336. Nifty added 99 points to settle at 23,218. In the broader market on the NSE, the Nifty Mid-Cap 100 index ended on a flat note, while the Nifty Small-Cap 100 index dropped 0.2%. Earlier, the markets opened on a positive note despite elevated US bond yields and crude oil prices and traded within a range throughout the session.
0: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 18 कंपनियों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में आईटीसी 2.5%, एसबीआई 2% से अधिक और एक्सिस बैंक के शेयरों में लगभग 2% की बढ़त हुई। वहीं खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में टीसीएस 2.5% से अधिक, इन्फोसिस लगभग 1.5% और टेक महिंद्रा के शेयरों में 1.3% की गिरावट आई।
2: In the sectoral indices on the BSE, 18 out of the 28 sectors edged upward among the top gainers. Insurance advanced 2%, FMCG rose over 1.4% and PSU banks added 1.1%. In contrast, Focus IT shed 1.5%, IT lost 1.4% and telecommunications dropped almost 0.8%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,351 companies declined, 1,979 companies advanced and 231 companies remain unchanged.
0: और हम जान लेते हैं रुपए का हाल। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर की तुलना में आज अपरिवर्तित रूप से 95.96 रूपये पर बंद हुआ। सिद्धार्थ, हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें जो हैं उसमें गिरावट आई है और एक तरफ हम देख रहे हैं वहीं पर अपने स्टॉक मार्केट में हमने देखा कि शुरुआती बढ़त जो है उसे उसी तरीके से रेंज बाउंड में रखा है, तो ये क्या दर्शाता है, क्या इंगित करता है?
1: नहीं प्राची, जो आपने बात कही कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है, मैं उसको कहूंगा कि मामूली गिरावट आई है। अभी भी हमारे लिए वो जो है अनकंफर्टेबल रेंज के बाहर है, मतलब जो कंफर्टेबल रेंज है उसके बाहर है। मतलब 100 बिलियन डॉलर अभी भी क्रूड प्राइसेस मुझे लगता है 160 बिलियन डॉलर के आसपास है और जो इंडियन बास्केट है वो तो तकरीबन,
0: लेकिन जो ये गिरावट आई है मे बी उसका पॉजिटिव सेंटिमेंट वहां झलक रहा हो।
1: हाँ बिल्कुल, हाँ हो सकता है कि आज एक इमीडिएट जो आज आपने देखा बाजार जो पॉजिटिव जोन में थी वो एक कारण हो सकता है, लेकिन जो आपने बात बोली कि रेंज बाउंड है, कहीं ना कहीं एक ब्रॉड रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है और जो दुनिया में अनिश्चितता है चाहे वो क्रूड ऑयल को लेके हो जाए, मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रही है और दिनों दिन वो स्थिति कोई सुधार नहीं दिख रहा है, अनिश्चितता जो है एकदम निश्चित हो गई है जिसको कहा जाए, तो मुझे लगता है वो बड़े कारण है ये, और ये सब तब है जब कि जो भारत के अपने आर्थिक जो इकोनॉमिक आप पैरामीटर्स कह लें या जो हमारे फंडामेंटल्स हैं वो एकदम बढ़िया है, मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, हमारा जीडीपी जो Q1 का आया बहुत ही उत्साहवर्धक था, नंबर 7.8 जो कि एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा आया, और उसके अलावा अगर अभी भी आप इन्फ्लेशन देखेंगे ठीक है थोड़ा ऊपर आ रहा है क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस की वजह से दबाव है लगातार बढ़ रहा है, अब तकरीबन 5% के आसपास है, लेकिन जो रेंज है आरबीआई की अभी भी उसके अंदर है जो, तो मुझे लगता है और जो भी आप डेटा देखेंगे टैक्स का डेटा देखें चाहे जीएसटी कलेक्शंस का डेटा देखें कार सेल्स या जो भी ऑटो सेक्टर में जो सेल्स हैं तो सारा आपको पॉजिटिव साइड है, लेकिन चूंकि जो दुनिया में अनिश्चितता है जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस है अनसर्टेनिटी है कहीं ना कहीं वो हमारे बाजार पे हावी है.
2: So today do you expect that there was short covering in the market because we saw bounce back in the Nifty Bank which went up by almost 1%, PSU Bank Index also went up, do you see value buying in the markets right now even though if it's for one day?
1: I think Arjun what you're saying is I would agree more with the word value buying. I think people are also shifting more from small cap, medium, mid caps to the defensive, to the large caps. Probably looking at more secure, trying in these times of uncertainty, you tend to exit the stocks or the benchmarks where you see there could be more volatility. Obviously, the first in line to take hit is obviously the small caps and the mid caps. So, probably I think the intent of the investor is to shift to the safer havens, and obviously then large caps are the best bet in these times of uncertainty.
2: Also, central banks are holding their meetings. Our RBI is going to conduct its monetary policy committee meeting from October 5 to 7, repo rate is 5.25%. Do you see rates being hiked and valuations change? Because banking incomes will also be impacted accordingly.
1: See, Arjun, more than that, I think before RBI takes a decision on the rates, on the repo rate, I think more than that, what is being watched is the decision what tonight we get on the decision taken by the Fed Reserve on its own interest rate, because the expectation is, there is a huge expectation that they would hike interest rates in US, and what happens is, and already if you look at the US bond yields, they're over 5% in since I think after 2023 it's for the first time that they have inched over 5%, the 10-year bond yield, and obviously that also puts pressure on Indian bond markets, also on the also indirectly on the Indian equity market, because then the FIIs, the foreign investors, tend to go and invest in the US market because the interest rates obviously are going to go up, and it is always said that treasury, US treasury bonds are the most secure instruments, most secure instruments in the world.
0: सिद्धार्थ, क्षेत्रीय स्तर पे जैसा कि अर्जुन ने पहले अपना सवाल पूछा, मैं उसी स्तर पर आपसे बात करना चाहूंगी कि क्षेत्रीय स्तर पे अगर हम देखते हैं तो एक आम निवेशक, एक आम जो श्रोता जो हमारे प्रोग्राम को सुनता है, उनके लिए आप बताइए कि अभी कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर निवेश करना लाभकारी हो सकता है या यूं कहिए कि समझदारी भरा हो सकता है.
1: देखिए, एक तो मैं पहली बात ये कहूंगा कि अगर आप इस समय इन्वेस्ट कर रहे हैं भारतीय बाजारों में या शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, आपको धैर्य के साथ आए क्योंकि दुनिया में बहुत अनिश्चितता है और ये अनिश्चितता लगातार बढ़ रही है, और ये जो अभी तक एक फंडामेंटल्स, बहुत सारे जो फंडामेंटल चीजें हम मानते थे कि जब भी अनिश्चितता आती थी या तेल की कीमतें बढ़ती थी या वॉर आता था तो ये हमेशा माना जाता था कि गोल्ड प्राइसेस हमेशा बढ़ती हैं. इस बार भी बढ़ी हैं लेकिन उस अनुपात पे नहीं बढ़ा गोल्ड. इनफैक्ट बीच में जब अनसर्टेनिटी बढ़ी तो हमने देखा गोल्ड प्राइसेस नीचे भी आई. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हाँ, क्योंकि हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, लेकिन हमारे साथ एक जो एक मुझे लगता है जो प्रॉब्लम है वो है क्रूड प्राइसेस, क्रूड ऑयल, क्योंकि हम 90% इंपोर्ट करते हैं और क्रूड काफी सारी इंडस्ट्रीज के लिए क्रूड ऑयल इज द रॉ मटेरियल, द मेस मटेरियल विच एक्ट्स एज रॉ मटेरियल फॉर लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज. तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट रहेगा और अभी वो लग रहा है कि रहेगा लंबे समय तक. सप्लाईज नहीं मुझे लगता इम्पैक्ट होगी, लेकिन उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था पे भी इम्पैक्ट होगा. तो थोड़ा बहुत अगर आप भारतीय बाजारों में इन्वेस्ट कर रहे हैं या निवेश कर रहे हैं तो थोड़ा लंबी अवधि, मतलब मेरा मानना है कि कम से कम 3 साल का मन बना के आए कि मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगले साल बहुत मुनाफा हो भी सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं हो, क्योंकि हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं,

0: लेकिन आप अपने दिमाग में ये रख के आए कि थोड़ा आपको समय वेट भी करना पड़ता है।
1: नहीं, क्योंकि ये भी कहा जाता है ना कि जब बाजार ढलान पर हो तब खरीदारी, असल खरीदारी उसी वक्त होनी चाहिए।
0: हाँ, लेकिन प्राची होता क्या है कि जब भी आप देखेंगे कहीं अनिश्चितता आती है या कहीं डर होता है, भय होता है, तो हर आदमी बहुत अपने डिसीजन को बहुत ना कैलकुलेटेड, या आदमी सोचता है थोड़ा और रुक जाते हैं, थोड़ी स्थिति जो काले बादल हैं वो छट जाए तब लगाएंगे। लेकिन मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, अगर मुझे आप मुझसे पूछेंगे तो मैं जरूर ऐसे वक्त को चुनूंगा निवेश करने के लिए। लेकिन हाँ, मैं ये भी साथ में कहूंगा कि बहुत बढ़िया से अपनी जो है फैक्ट फाइंडिंग बढ़िया से करें, अच्छी कंपनियां चुने। और आपने जिन क्षेत्रों की बात की तो मैं वहां पे आजकल जो नया, एक तो जैसे सेमीकंडक्टर्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो नए क्षेत्र हैं, स्पेस है, डिफेंस है, ईवी है, बहुत बढ़िया आपने बोला। उसके साथ साथ फार्मा हमेशा एक डिफेंसिव क्षेत्र है, तो मैं बोलूंगा ऐसे अच्छा एफएमसीजी को भी मैं हमेशा मानता हूं, क्योंकि इंडिया की जो कंज्यूमर स्टोरी है, जो कंजम्पशन स्टोरी है, वो पूरी तरह से इंटैक्ट है।
2: सो स्पीकिंग अबाउट इन्फ्लेशन इंपैक्टिंग इंटरेस्ट रेट्स अर्लियर एंड देन लिंकिंग इट टू एफएमसीजी, बिकॉज देयर मार्जिन्स हैव ऑलवेज बीन अफेक्टेड बाय बिजनेस inflation at the wholesale price index level, but that went up by 1.4% today. You said that it's a good sector to get into, especially long term. What are the other factors that one can look into when it comes to FMCG, fast moving consumer goods?
0: See, Arjun, I would say as far as fast moving consumer goods, I think it is always, it's an area which I think always is, you will always have, stays in green. I don't see very lot of challenges for.
2: Like pharmaceuticals.
0: Yeah, because FMCG, what do we mean by FMCG? What the products which you, goods and products which we consume on a daily basis. So I think the demand in India is, the consumption demand is intact, and even there was a fear in some about a month back or 15 days back that our monsoons have not fared that well. But I think as time passed on, even monsoons have been good. Agriculture sector is doing good. So I see the rural demand also intact, and inflation for us has still not passed on or has not grown so rapidly. So I think, and as far as RBI guidance, if we have to go by their guidance, so they do not see it going beyond 6% for the entire year. So I think if inflation also remains under control, so I don't see FMCG companies passing on prices, or we see prices going up sharply.
2: What about information technology? That saw a drop in valuation today. It saw a drop in valuation yesterday also, despite the earnings being good.
0: I think, Arjun, in the near term, IT valuations have been taking a hit, and not to obviously say about today or yesterday, but I personally believe that Indian IT industry is very robust, very strong, and already we are seeing there are a lot of questions being raised on the way we are seeing artificial intelligence, or the uncertainty being created by artificial intelligence. So I think it's a good value buying if you ask me. But yes, one should wait and watch, and I think probably invest in small tranches.
1: अन्य खबरों पर भी सिद्धार्थ आपसे बात करेंगे, मगर उससे पहले जानते हैं कि दरअसल अन्य खबरें हैं क्या। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये प्रति माह कर दिया है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आज मीडिया को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस निर्णय से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के दायरे में आ पाएंगे।
3: पुराना जो कैप था वो सितंबर 2014 में एस्टेब्लिश हुआ था, तब से अब तक एवरेज जो सैलरी है वो काफी बढ़ी है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ी है। आज एक रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय की एवरेज इनकम करीब करीब 23,000 रूपये पर मंथ है, जो कि पहले से करीब 2.5 गुना ज्यादा बढ़ी है। भारत सरकार का इस पे एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रहेगा अबाउट 11,339 करोड़ रूपीज एवरी ईयर।
1: सिद्धार्थ, विकसित भारत की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए जो सामाजिक सुरक्षा की बात आती है, उससे ये किस तरीके से कनेक्टेड है और कैसे लाभान्वित करेगा?
0: नहीं, मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन, जैसे मंत्री अश्विनी वैष्णव मंत्री जी ने भी बोला जी अपने अनाउंसमेंट में, क्योंकि अब अगर उसको 15,000 से 25,000 कर रहे हैं तो, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 25,000 तक जिसकी सैलरी है उसको अनिवार्य रूप से, जो सबसे बड़ी चीज यहां आती है कि कंपल्सरीली आपको ईपीएफओ के दायरे में लाया जाएगा या कंपनी आपको ईपीएफओ का जो बेनिफिट है जो सोशल सिक्योरिटी जो प्रोवाइड करता है उसमें आना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है उस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओवर द ईयर जैसा उन्होंने बोला 2014 में लास्ट रिवीजन हुआ था 15,000 तक, तो उसके बाद से बिल्कुल ठीक बात है कि अब सैलरीज बढ़ गई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया, तो किसी भी एवरेज सैलरी 23,000 जो उन्होंने जिक्र भी किया, तो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण फैसला है।
1: क्या ये बदलाव असंगठित क्षेत्र से जो संगठित क्षेत्र तक पहुंचने के लिए एक नया रास्ता, एक नई किरण के तौर पर हम देख पाएंगे इसे?
0: नहीं प्राची, सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि देखिए प्राइवेट सेक्टर के लिए सरकार के जो सरकारी एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए तो एक पेंशन होती है उनकी, अब चूंकि थोड़ा उसका एक रूप प्रारूप बदल गया है जो सरकारी एम्प्लॉयज को पेंशन मिलती है, तो न्यू पेंशन पॉलिसी आ गई है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में जो कर्मचारी जो लोग आज रोजगार पाते हैं उनके लिए एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का जो ईपीएफ का जो सोशल सिक्योरिटी का जो ये नेटवर्क है या ताना बाना है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वही आपको पेंशन भी देता है, ना केवल आपको आपकी आपको आपका एक अंशदान जाता है जो आपको जब आप आपकी सेवाएं समाप्त होती हैं 60 साल पर जो पैसा मिलता है उस पर इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है क्योंकि आज मुझे लगता है किसी भी सेविंग स्कीम में सोशल सिक्योरिटी की सबसे ज्यादा अगर इंटरेस्ट रेट है तो वो इम्प्लॉय ईपीएफओ की में ही मिलता है, तकरीबन 8% का इंटरेस्ट रेट है आज भी, तो वो उस लिहाज से इम्पोर्टेंट है। साथ हमने कवरेज बढ़ाया है तो अब ज्यादा लोग, जैसा 51 लाख की जो आपने फिगर पढ़ी तो उतने ज्यादा लोग और अब इस कवरेज के पात्र होंगे। जी
2: In more news, India's current account deficit widened to $7 billion in July 2026 from $3.2 billion a year ago, primarily due to a higher merchandise trade deficit. As per data from RBI, the merchandise trade deficit rose by $3.5 billion to $31.7 billion in July on an annual basis. According to the data, net FDI inflows rose by $2.8 billion from a year earlier to $7.3 billion in July. Net foreign portfolio investment too recorded an inflow of $4.1 billion against an outflow of $2.5 billion in July 2025. The overall balance stood at a surplus of $20.8 billion as compared with $0.3 billion last July. And this is a very important macroeconomic data that we're addressing right now, Siddharthji. Current account deficit, even though it's widening because of our imports, especially oil, we're seeing that exports have gone up substantially as far as a current account is concerned, but to a great extent isn't that being capital financed by our FCNR bonds that depositors are getting a higher rate of interest? We're also having foreign direct investment that has gone up substantially, and the foreign portfolio investment on a net basis is much more as compared to a year ago. So effectively, the financing of our current account is quite effective that way.
0: Absolutely right, Arjun, and I don't see any reason for us to worry on this because first, this is only data for the first 4 months, and if you look at the export figures in August, exports have grown rapidly, whereas our imports are coming down. If you compare it with last year, I think the imports are down by down to almost 9% or something. So I think, and not a reason, and as you rightly pointed out, we are seeing a sharp rise in FDI. FDI this year is expected to be very robust, and also an increase in portfolio investments, plus we also have a huge forex reserve, especially and more so after bolstered by the huge FCNRB deposits. So I don't see this as a reason for worry, and obviously what matters to us is also the full year data.
2: In more news, in New Zealand's parliament has passed legislation required to implement the free trade agreement FTA with India by a vote in favor of 93-29. In a social media post, a New Zealand Prime Minister, Christopher Luxon, today hailed the country's FTA with India as a landmark deal that would open access to 1.4 billion Indian consumers and help boost jobs and incomes in New Zealand. Trade and Investment Minister Todd McClay said the agreement would provide New Zealand exporters with greater access to India, one of the world's largest and fastest growing economies. Under the pact, all Indian goods will receive duty-free access to the New Zealand market. Wellington has also agreed to invest $20 billion in India over the next 15 years. To what extent do you see this as a continuum to our

0: trade agreements with other countries and unions. We have free trade agreement with the European Union, with the United Kingdom. We have agreements in place with the US, which is bilateral, and even Canada.
1: UAE, yeah. So we've been signing. I think India would be one of the, would stand out as a country which would have signed in last 2 years so many free trade agreements, one after another. And already I think the free trade agreement with UK is already coming to is already applicable now, is already coming to force. I think the one with European Union is also expected, and the one with New Zealand obviously again. And the most important part of these, the FTAs, is also the investment that the countries are promising into India. So $20 billion over 15 years is a, I think, a very big plus for us. So these free trade agreements I see as also very important in times when there is trade protectionism, supply chain disruption. So I think this opens up huge potential market for our Indian exporters.
0: And that's been a BRICS declaration also.
1: Yeah, right.
0: In more news, government has introduced an exemption from the requirement of registration cum membership certificate, RCMC, or certificate of registration for small value export consignments up to 3 lakh rupees. The Ministry of Commerce and Industry said that the measures aimed at reducing the compliance burden for new and small exporters and facilitating exports through postal, courier and other emerging channels. The ministry said that the measure provides MSMEs, artisans, small businesses and first-time exporters with a simpler entry point into international markets by removing the requirement to obtain an RCMC. It added that the move will help emerging exporters to test overseas markets and establish an export track record with lower initial compliance requirements. Ease of doing business, once again?
1: Absolutely. I think the number of steps that we have taken, I think this is one more step in that direction.
2: अन्य खबरों में, भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने सोने और चांदी की वस्तुओं के लिए हॉलमार्किंग शुल्क में बदलाव किया है। सोने के लिए हॉलमार्किंग शुल्क 45 रुपए से बढ़ाकर 75 रुपए प्रति वस्तु कर दी गई है, जबकि चांदी के शुल्क में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बदले हुए शुल्क तत्काल प्रभाव से लागू किए जाएंगे।
0: गवर्नमेंट हैज क्लेरिफाइड दैट देयर विल बी नो चार्जेस एट ऑल फॉर पर्सन टू पर्सन UPI ट्रांजैक्शंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ट्रांसफर्ड। Finance Ministry said that the payments to merchants up to 2,000 rupees, along with transactions covered under the zero merchant discount rate MDR framework for small merchants, will also remain free. The ministry said that consequently, approximately 96% of all person-to-merchant transactions will remain unaffected. It said that MDR will apply only to specified merchant transactions above 2,000 rupees. The ministry said that MDR is neither a tax nor a charge collected by the government or National Payments Corporation of India. It is distributed among payment ecosystem participants, including banks and payment application providers, to support the operation and continued expansion of the UPI ecosystem.
2: आगे बढ़ते हैं। एशियाई शेयर बाजारों में आज दक्षिण कोरिया का कॉस्पी लगभग 1.5% बढ़ा, जबकि जापान के निके सूचकांक में 0.7% की वृद्धि हुई। सिद्धार्थ, ये क्या इंगित करता है इस समय जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसको देखते हुए?
1: देखिए, जहां तक जापान की बात है, जापान में मुझे लगता है पहली बार अभी तक डिफ्लेशन था, तो पहली बार अब इन्फ्लेशन की वजह से मुझे लगता है जापानीज मार्केट्स में हमको इतना पॉजिटिव वो दिख रहा है। लेकिन हालांकि वहां पे अभी भी जो उनका पब्लिक एक्सपेंडिचर है, जो गवर्नमेंट का अभी भी जो एक्सपेंडिचर है, वो काफी हाई है। तो अभी मुझे लगता है अर्ली डेज, बट यस, देर इज गुड न्यूज फॉर देम इन टर्म्स ऑफ AI, ऑटोमेशन, इन इस तरह, और जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो रिफॉर्म्स वहां पे किए हैं, तो कंपनियों के रिजल्ट्स भी बेहतर आ रहे हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं हमें वहां की मार्केट्स में एक जो है अपटेक दिख रहा है। साथ साथ जो कॉस्पी की आपने बात कही, वो मतलब आप सबको पता है, क्योंकि दो ही बड़े कारण है उसके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो दो बड़ी कंपनियां जो चिप्स बनाती हैं, तो वो उनकी वजह से वो जो है उस एक्सचेंज में बड़ा दिखती है।
2: जी,
0: Going on to the crude oil market, global crude oil prices declined today. Brent crude was trading 1.2% down at $107.44 per barrel in intraday trade at the time of writing this report. Meanwhile, West Texas Intermediate crude was trading 1.8% lower at $103.93 per barrel.
2: भारतीय सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 1% की बढ़त के साथ 1,52,362 रूपये प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था, जबकि चांदी 1.1% की बढ़त के साथ 2,31,000

0: mind of the headlines. Benchmark domestic indices rise, Sensex gains over 300 points. Nifty settles at 23,218. New Zealand passes legislation to implement FTA with India, and global crude oil prices decline. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
1: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
2: सारे अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मार्केट मंत्रा।

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शब के 10:30 हो चुके हैं। पेश है आपका पसंदीदा फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम तामील इरशाद। हाजिर इस प्रोग्राम की पहली पेशकश आप सबकी पसंद, आप सबकी नजर।

सुनाएं अभी आप सुन रहे थे किस्मत फिल्म से ये नगमा आशा भोसले की आवाज में। इस नगमे को लिखा था नूर लखनवी ने और मौसीकी से सजाया था ओपी नैयर ने, और सुनना चाहा था मिल्वॉकी वेसे से वर्षा चावड़ा ने, और सुनने के ख्वाहिशमंद थे सुखविंदर सिंह जोड़ा सिटी दीवाना, गुरुवंश सिंह जोड़ा कृष्णा पार्क नई दिल्ली से, और गंजनवाड़ा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नजमा बेगम हाशमी और तौसीफ हाशमी सुनने के ख्वाहिशमंद थे, और सुनचाता अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भव्या कुमारी ने बोनपट्टी मधुबनी।

बाहर से, और सुनने के ख्वाहिशमंद थे नरेंद्र नीतम कुसुम नीतम छत्तीसगढ़ से, और सुनने के ख्वाहिशमंद थे दिलीप रामेकर हर्षा रामेकर अक्षय रामेकर अमरावती कैंप महाराष्ट्र से, पंजाब रामटेकी यशोदा रामटेकी श्रीव्य रामटेकी यवतमाल सिद्धार्थ सिद्धेश्वर नगर से सुनने के ख्वाहिशमंद थे, चंद्रेश गोहर वंदना गोहर और जयपाल यादव मध्य प्रदेश से सुनने के ख्वाहिशमंद थे, और सुनना चाह था शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकर अमर ताम्रकर और दिलीप वर्मा राजू ताम्रकर ने, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा मीना शर्मा और मास्टर निवान शर्मा सुनने के ख्वाहिशमंद थे, और सुनना चाहता नौशाद अहमद सिद्दीकी अमीरुद्दीन सिद्दीकी निशान अहमद सिद्दीकी ने छत्तीसगढ़ से, और सुनने के ख्वाहिशमंद थे रविंद्र सिंह छावड़ा इंद्रजीत कौर छावड़ा सुरी छावड़ा टैगोर गार्डन नई दिल्ली से। हाजिर है इस प्रोग्राम की अगली पेशकश लता मंगेशकर की आवाज में, जिसको सुनना चाहा है साजिद वाजिद और अम्मार ने मीरपुर से, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं देवगढ़ जय विहार से शबनम शहनाज और शाहरुख फारूख ने, और मुडाला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर अदमा सुरलकर आरती सुरलकर सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, और सुनना चाहते हैं गोविंद वैष्णव दिव्या सुमन कोमल परी और रामेश चंद्र सुनने के ख्वाहिशमंद हैं राजगढ़ मध्य प्रदेश से। बाबा साहब डोडे रिचर्बा चंद्र डोडे जरूरों से सुनना चाहते हैं, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं मुकेश भत्ता नीलम भत्ता निहारिका वंश भत्ता कनेरा मोहल्ला पटियाला से, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं हेमंत खिलाड़े और सारिका खिलाड़े और सोनाली अभई खेड़ा वाशिम महाराष्ट्र से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। सुनना चाहते हैं अनिल कुमार वर्मा मायादेवी वर्मा और राहुल कुमार वर्मा कुरावली से, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं उनकर

0: सुन रहे थे धरती कहे पुकार फिल्म से नगमा मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में। इसको सुना जा रहा था चंडीगढ़ से सतीश जनेजा और बिमला अनेजा ने। शब के 11 बज चुके हैं। प्रोग्राम तामिल इरशाद अभी जारी है। आइए इस दौरान सुनते हैं खबरें बर्रे सगीर से।
1: आदाब, यह आकाशवाणी है। बर्रे सगीर की खबरों के साथ मैं फुरकान खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत को उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के मैदान में कायद बनाने के लिए सनातों की ज्यादा शमूलियत की अपील की है। सरकर्दा आलमी सीईओज ने सेमीकंडक्टर गोलमेज के दौरान भारत की सलाहियत पर एतमाद का इजहार किया। मरकजी काबीना ने ईपीएफओ के तहत कम अज कम उजरत की हद को 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये माहाना करने को मंजूरी दी है। इस फैसले से मजीद 51 लाख मुलाजमीन को फायदा होगा। हुकूमत ने गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम से मुताल्लिक कानून यूएपीए के तहत पाकिस्तान में कायम शहजाद भट्टी नेटवर्क को दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। दिल्ली ने सऊदी अरब में मक्के के करीब ड्रोन हमले पर गहरी तशवीश का इजहार किया है और खित्ते में अमन इस्तेहकाम की जल्द अज जल्द बहाली की अपील की है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की खसूसी एनआईए अदालत ने बस्तर जिले के साल 2013 जीराम वादी माओनवाज हमले में कसूरवार करार दिए गए 10 मुलजमीन को सजाए मौत सुनाई है और आजमुदाकार कन्नड़ अदाकार अनंतनाग को साल 2024 के पुरवकार दादा साहब फाल्के इनाम से नवाजा जाएगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत का टेक्नोलॉजी का मुस्तकबिल तश्कील देने के लिए हुकूमत और सेमीकंडक्टर सनअत के दरमियान करीबी इश्तराक की अहमियत पर जोर दिया है। आज नई दिल्ली में सरकर्दा सीईओज के साथ सेमीकंडक्टर गोलमेज की सदारत करते हुए जनाब मोदी ने महारत टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचे को अपनाने की भारत की मजबूत बुनियाद को नुमाया किया और मसनूई जहानत एआई और क्वांटम कम्प्यूटिंग जैसी उभरती हुई टेक्नोलॉजीज की महारत और जिद्दत तराजी में सनातों की बड़े पैमाने पर शमूलियत की अपील की। एआई के शोबे में 1 करोड़ अफराद को तरबियत देने के हदफ का हवाला देते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत के होनहार अफराद और आलमी सनाती रहनुमाओं की सलाहियतों और तजुर्बों को यकजा करने से खातिरख्वाह इम्कानात पैदा हो सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत को उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के मामले में कायद बनने की ख्वाहिश रखनी चाहिए। उन्होंने वाजे किया कि सेमीकंडक्टर के शोबे में खातिर ख्वाह पेशरफ्त भी है और कहा कि ये इको निज़ाम बुनियादी कोशिशों से आगे बढ़कर बड़े पैमाने और ज्यादा मौकों के मरहले की जानिब गामजन है। इस दौरान सीईओज ने भारत की सेमीकंडक्टर सलाहियतों को फरोग देने में हुकूमत की पायदार कोशिशों की सताइश की। उन्होंने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और पूरे सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में सलाहियत साजी की भारत की अहमियत के तहत उभरते हुए इम्कानात पर एतमाद जाहिर किया, जिनमें मैन्युफैक्चरिंग, तहकीक और तरक्की, एडवांस टेक्नोलॉजीज और मुआविन सनअतें शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कल नई दिल्ली में मुनक़िद होने वाले सेमीकॉन इंडिया के 5वें एडिशन के इफ्तिताह से पहले ये गोलमेज मीटिंग हुई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2026 के 5वें एडिशन का इफ्तिताह करेंगे। ये 3 रोजा कॉन्फ्रेंस आलमी सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स निजाम से वाबस्ता शराकतदारों को यकजा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करेगी ताकि मुआवनत और इख्तरा को फरोग हासिल हो, मैन्युफैक्चरिंग की सलाहियत में इजाफा हो, सरमायाकारी को रागिब किया जा सके और मुस्तकबिल के लिए तैयार सलाहियत पैदा की जा सके। इस तकरीब में 600 से ज्यादा नुमाइशकार, 300 बैन अल-अक़वामी कंपनियां और 50 ममालिक के वफूद शिरकत कर रहे हैं। इस नुमाइश में जापान, जनूबी कोरिया, मलेशिया, नीदरलैंड्स, सिंगापुर और सूडान की नुमाइंदगी कर रहे 6 पवेलियन, 12 रियासती सरकारों के पवेलियन और 1 स्टार्टअप से मुतालिक मखसूस पवेलियन शामिल होंगे। सेमीकॉन इंडिया सेमीकंडक्टर से मुतालिक भारत की मुमताज कॉन्फ्रेंस और नुमाइश है, जिसका इनेकाद इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत और सेमी मुश्तरक तौर पर कर रहे हैं। मरकजी काबीना ने امپلائیز پروویڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن ای پی ایف او کے تحت لازمی کوریج کے لیے تنخواہ کی حد کو 15,000 روپے سے بڑھا کر 25,000 روپے ماہانہ کر دیا ہے۔ آج کابینہ میٹنگ کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ اس فیصلے سے 51 لاکھ اضافی ملازمین کے لازمی ای پی ایف او کوریج کے دائرے میں آنے کی امید ہے، جس سے کارکنوں کے لیے سماجی تحفظ کا دائرہ نمایاں طور پر وسیع ہوگا۔ اس اقدام کے لیے حکومت کے سالانہ اخراجات کا تخمینہ تقریباً 11,349 کروڑ روپے ہے۔ جناب ویشنو نے کہا کہ نظر ثانی شدہ تنخواہ کی حد کل وشوکرما جینتی سے نافذ العمل ہو جائے گی۔ جناب ویشنو نے کہا کہ 2004 سے 2014 تک ای پی ایف او کی تنخواہ کی حد میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے، اور ستمبر 2014 میں اسے بڑھا کر 15,000 روپے کر دیا گیا تھا۔ جناب ویشنو نے اس بات کو اجاگر کیا کہ موجودہ فیصلہ اس حد کو 25,000 روپے تک بڑھا کر اس نقطۂ نظر کو مزید بڑھاتا ہے، جو کہ ان برسوں کے دوران اجرت میں پائیدار بڑھوتری، اضافی آمدنی اور باضابطہ روزگار میں توسیع کی عکاسی کرتا ہے۔ نظر ثانی شدہ تنخواہ کی حد ملازمین کو اداروں میں برقرار رکھنے، باضابطہ افرادی قوت کو زیادہ مستحکم بنانے، پائیدار روزگار کو فروغ دینے اور پیداواریت میں اضافہ کرنے میں معاون ثابت ہوگی۔ حکومت نے غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون یو اے پی اے کے تحت شہزاد بھٹی نیٹ ورک کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے۔ یہ دہشت گرد گروپ ہتھیاروں، دھماکہ خیز مواد اور منشیات کی سرحد پار اسمگلنگ میں ملوث رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ نوجوانوں کو بھڑکانے اور مجرمین کو دہشت گردی کی جانب مائل کرنے میں بھی شامل رہا ہے۔ مرکزی وزارت داخلہ نے اس معاملے میں آج گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ مرکزی شہزاد بھٹی نیٹ ورک نے بھارت کے جمہوری ڈھانچے اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے تانے بانے کو نشانہ بناتے ہوئے نفرت انگیز ڈیجیٹل مواد بھی شائع کیا ہے۔ وزارت داخلہ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے دہشت گردی کو ہرگز برداشت نہ کرنے کے نظریے کے تحت اس نے یو اے پی اے کے تحت شہزاد بھٹی نیٹ ورک کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے۔ بھارت نے سعودی عرب میں مکے کے نزدیک ڈرون حملے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس حملے کے تعلق سے میڈیا کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ بھارت سعودی عرب حکومت کی علاقائی سالمیت اور عام شہریوں اور بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچانے والی کسی بھی کارروائی کی مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مکے کے نزدیک یہ واقعہ

भी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज में ये रकम फिल्म ये रात फिर ना आएगी से, जिसकी तर्ज बनाई थी ओपी नैयर ने। हाजिर इस प्रोग्राम की अगली पेशकश साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ ये नगमा जाल फिल्म से, जिसको सुनना चाहा है अजीज मतीन और शेख चंद फारूक ने निजामाबाद तेलंगाना से, और सुनना चाहते हैं महेंद्र चौरसिया तिलैया से और झुमे तिलैया से सुनना चाहते हैं संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव वगैरह दुख सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। बटर सिंह चंद मल्लानपुर, राजेश जैन और गोटनाथ जैन अलीगढ़ अव्वली से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। कौशल भी पवार, हसीना भी पवार और हीना सईद खोकर खंडवा से सुनना चाहते हैं और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं रविन्द्र राजेंद्र कुमार, मलकित कौर, आरती रानी और जयप्रकाश राहुल, रंजीत कौर, रवि कुमार राहुल हरियाणा सुनना चाहते हैं और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं पवन गौर, तरमेपुरवी गौर, सुरेश आशीष गौर कासगंज से और लक्ष्मी नारायण और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं मध्य प्रदेश से कुमारी वंदना मराठा, रेखुर पूजा, रघुवंशी और चंदा युवराज सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। शाहजहापुर मध्य प्रदेश से मनमोहन रजवत, बदर रजवत, राशि रक्षित और सुनने चाहते हैं सभी खानम, फरीदा बानो और ईसा खातून उदयपुर से।

अभी आप सुन रहे थे टैक्सी ड्राइवर फिल्म से नवाज तलत महमूद की आवाज में, बोल थे साहिल जानवी के। हाजिर है इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश और ये मिर्जा गालिब की गजल, जिसको सुरचा है सिद्धार्थ गोंडा ने, अर्चना गोंडा ने, प्रवीण प्रणय कुमारी प्रसिद्धि ने अमरावती विदर्भ से, उत्तम कुमार भगत श्रोता भगत की श्रोता चुपाकुर झारखंड से सुनना चाहते हैं, और बेगम समीरा खान मोहम्मद अजीम कुरावली से सुनना चाहते हैं, और सुरेश नारंग आशु नारंग आशा नारंग सहारनपुर से सुनना चाहते हैं, और मोहम्मद हसनैन हसू बाबा सुनना चाहते हैं खंडवा मध्य प्रदेश से, और गंगाधर यमेकर प्रमोद यमेकर प्रदीप यमेकर महाराष्ट्र सुनना चाहते हैं, और प्रमोद बगाड़े वर्षा बगाड़े प्रतीक बगाड़े नांदूर से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं।

0: आप सुन रहे थे प्रोग्राम तामिले शादी आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम सुर्खियों में।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही है आर्थिक विश्लेषक सुषमा रामचंद्रन। कार्यक्रम का संचालन कर रही है प्राची प्रिया।
2: नमस्कार, कार्यक्रम सुर्खियों में आज हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे समक्ष आमंत्रित हैं आर्थिक विश्लेषक सुषमा रामचंद्रन। सुषमा जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन।
3: बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
2: सुषमा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप थोड़ा प्रकाश डालें कि ईपीएफओ है क्या और किस तरीके से ये लाभान्वित करता है जनता को।
3: ये बहुत ही जरूरी सवाल आपने पूछा, क्योंकि कई लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि ईपीएफओ क्या है और उसका रोल क्या है
2: जी।
3: और उसके फायदे क्या हैं। बहुत बड़ी चीज है
2: जी।
3: एक तो जनरली आप देखेंगे दुनिया भर में प्रोविडेंट फंड का मतलब ये है, एक कॉर्पस, एक फंड जो सरकार बनाती है और उसमें सेविंग्स के लिए जो काम करने वाला आदमी होता है किसी भी संस्था में, उसके जितने भी वो चाहते हैं कंट्रीब्यूशन, समझ लीजिए 10% अपने वेतन से वो इस फंड में चला जाता है।

0: सरकार अपनी तरफ से भी मैचिंग इसमें कंट्रीब्यूशन डालती है। तो ये जो उनके तनख्वाह से ये पैसा चला जाता है और सरकार भी उसमें डालती है, इस कॉर्पस में चला जाता है। और ये कॉर्पस आपके जैसे अगर मेरा है तो मेरा जब मैं अपनी पूरी समझ लीजिए 25-30-35 साल की जो अपनी करियर की जो अंतिम स्तर तक मैं डालती रहती हूँ, तो अंत में मुझे ये सारा पैसा इंटरेस्ट के साथ मुझे इसका मिलता है। और ये उसके साथ हमारे केस में हमारे जो भारतीय भविष्य निधि ये जो प्रोविडेंट फंड है
1: जी,
0: इसमें एक और चीज हमने डाली हुई है। जनरली प्रोविडेंट फंड मैंने बताया कि क्या चीज है, उसमें ये आपका जो पैसा है अंत में भी मिलता है और बीच में इसके फायदे और भी होते हैं। जैसे मैंने कहा हमारे देश में हमने इसके और कई चीजें डाली हैं जिससे जो वर्कर एम्प्लॉई जो है उसको काफी फायदा होता है। एक तो ये है कि इस कॉर्पस से कभी भी कोई भी एकदम अचानक कोई खर्चा आ जाता है
1: जी,
0: उससे वो इस प्रोविडेंट फंड से ले सकता है। दूसरी बात ये है हमने पेंशन से भी लिंक किया हुआ है, इसका एक पेंशन फंड साथ में जितना आप डालते हैं थोड़ा सा आपके पेंशन में चला जाता है। तीसरा हमने इसमें इंश्योरेंस के साथ भी लिंक किया हुआ है कि ये जो आप डिपॉजिट करते हैं तो आपको एक डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस हमने बनाया हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है ये इससे हमारे देश में जो प्रोविडेंट फंड है वो कई प्रोविडेंट फंड से काफी अलग है। लेकिन जैसे आपने बताया बेसिक बात ये है कि ये जो प्रोविडेंट फंड इसको भविष्य निधि कहते हैं, भविष्य के लिए आपने अपने जो आमदनी है उसमें से आपने कुछ हिस्सा डाला हुआ है
1: जी
0: और उसमें आपने सेव किया हुआ है
1: जी। सुषमा जी, क्योंकि आपने रिटायरमेंट सेविंग्स की बात की यानी भविष्य निधि की बात की, तो इसी सिलसिले में मैं ये भी जानना चाहूंगी कि वेतन सीमा बढ़ाने से कर्मचारियों के पीएफ योगदान और भविष्य में मिलने वाली जो रिटायरमेंट सेविंग्स होगी उस पर क्या असर पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, इसे आप थोड़ा विस्तार में अगर बताएं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा।
0: ये जो वेज सीलिंग डाला गया है किसी भी संस्था में, किसी भी उद्योग में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में, अगर आपका वेतन 15,000 तक का है
1: जी,
0: तो आपकी तनख्वाह में से इतना पैसा आपका कटेगा प्रोविडेंट फंड के लिए। आपका आज हमारे देश में हमने ये 12% रखा हुआ है, तो 12% आपका वेतन से वो कट के जाएगा और 12% सरकार आपको देगी। लेकिन जो लोग जिनकी तनख्वाहें 15,000 से ऊपर हैं जिनके ऊपर ये लागू नहीं है, और कई प्रोविडेंट फंड्स हैं हमारे देश में, हमारे पास वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है वो उसमें जा सकते हैं, लेकिन इसका फायदा ये है कि सरकार भी आपको इसमें डालती है, दूसरे प्रोविडेंट फंड्स में आपका ही पैसा जाएगा। तो ये सरकार ने ये जो वेज लिमिट डाला है 15,000 का, वेज लिमिट को इस बार बढ़ा दिया है जैसे आपने बताया
1: जी,
0: 15,000 से लेके 25,000 तक। इससे ये हुआ है कि 31 लाख लोग और इस दायरे में आ जाते हैं। अब हमें ये देखना है कि ये क्यों किया उन्होंने, ये इसलिए किया कि अब जब ये वेज सीलिंग डाला गया था और ये मेरे ख्याल 2014 की बात है जब 15,000 बना था, तब से अब तक अब हो गए हैं 11-12 साल
1: जी,
0: तो तब से अब जो तनख्वाहें हैं, वेजेस हैं और बेनिफिट्स हैं वो बहुत बढ़ गई है, पब्लिक सेक्टर में भी प्राइवेट सेक्टर में भी। तो जो आदमी पहले की तनख्वाह अगर 15,000 थी
1: जी,
0: अब वही बंदा शायद बहुत ज्यादा कमा रहा है और वो चाहेगा कि मेरी तनख्वाह से मेरे कुछ बेनिफिशियल सेविंग्स होंगे, ये बेनेवोलेंट सेविंग समझ लीजिए, जिनकी तनख्वाहें 25,000 तक की है
1: जी,
0: उनके लिए भी ये बहुत बड़ा फायदा है। जैसे मैंने कहा सिर्फ आपकी सेविंग नहीं जाती, सरकार भी आपके फंड में डाल लेती है, तो आपके जो पहले भी बाकी चीजें जो आप मैंने बताई, डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस मिलता है
1: जी,
0: आपको लाइफ इंश्योरेंस मिलता है, आप कभी भी इसमें से विड्रॉ कर सकते हैं और लम सम बेनिफिट बाद में मिलता है। तो ये काइंड ऑफ फोर्स सेविंग है जो आदमी बड़ी मुश्किल से खुद कर सकता है, तो इसका फायदा बहुत लोगों को मिलेगा।
1: आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस पर क्या कहा।
2: हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए बहुत बड़ा निर्णय लिया है। पीएफ प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी, ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, सितंबर 2014 में चेंज की गई थी।

0: इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। 25,000 रुपीज पर मंथ सैलरी विल बी द न्यू सीलिंग फॉर पीएफ डिडक्शन। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा, जो कि 15 to 25 वाले बैंड में थे, दे विल स्टार्ट गेटिंग कवर्ड इन द न्यू पीएफ रूल्स।
1: सुषमा जी, क्या ये बदलाव असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र की ओर बढ़ रहे श्रमिकों के लिए भी कोई नई संभावनाएं पैदा करेगा?
2: बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है हमारे जो इनफॉर्मल सेक्टर है जिसमें ये एक प्रॉब्लम है कि इनफॉर्मल सेक्टर में ये चीजें ये बेनिफिट्स नहीं मिलती हैं, और कोशिश तो यही हो रही है सरकार की कि ये धीरे धीरे करके ये इनफॉर्मल सेक्टर इनमें भी ये बेनिफिट्स आ जाएं कि वो उनको भी फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी जो कहते हैं वो धीरे धीरे हो जाए। तो ये डिमांड आएगी मेरे ख्याल वर्कर्स से, लेकिन एम्प्लॉयर्स के लिए भी बेनिफिट है, क्योंकि अगर आप अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको ज्यादा बेनिफिट्स देंगे तो आपके एम्प्लॉयज आपके वहां से जाएंगे नहीं, जिनको आपने ट्रेन किया हुआ है अच्छे स्किल्ड एम्प्लॉयज वो जाएंगे नहीं, तो ये बेनिफिट्स उनको मिल जाएंगे। तो ये कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा संस्थाएं इस दायरे में आएंगी, और जैसे आपने कहा इनफॉर्मल सेक्टर को धीरे धीरे करके ये फॉर्मल इकोनॉमी में आ जाएंगी।
1: जी, ईपीएफओ में अधिक कर्मचारियों के शामिल होने से भारत की जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है उसको किस तरह से मजबूती मिल सकती है, अगर विशेष तौर पर हम विकसित भारत की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए ये सवाल करें तो?
2: ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कदम है विकसित भारत की तरफ।
1: जी,
2: हम और तुम और सरकार और जो आम आदमी है वो सब चाहेंगे कि सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स सब लोगों को मिल जाएं, लेकिन सबको मिलते नहीं है।
1: जी,
2: इनफैक्ट अगर आप देखें कोई भी किसी नौकरी की तलाश में हो, अगर उनको दो नौकरियां मिलेंगी तो वो नौकरी लेगा जिसमें वो कहेगा अरे भाई इसमें तो प्रोविडेंट फंड बेनिफिट्स मिलते हैं, ये तो अच्छी नौकरी है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी नौकरी में आपको प्रोविडेंट फंड यानी कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं तो सबको मालूम पड़ता है कि यहाँ पर आपको सेफ एंड रिलायबल लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है। तो सोशल सिक्योरिटी का जो नेट है वो धीरे धीरे हमारे देश में बढ़ना चाहिए, और ये एक अभी ये जो कदम है ये 15,000 से 25,000 से वेज सीलिंग लाना,
1: जी
2: एक तरह से अगर आप कहेंगे सिर्फ वेज सीलिंग बढ़ाना है, लेकिन वेज सीलिंग बढ़ाना नहीं है, इसका मतलब ये है कि इतने सारे 50 लाख से ऊपर लोग ज्यादा इसमें आ जाएंगे, तो ये जो डिमांड है सोशल सिक्योरिटी की, जैसे आप अभी बात की इनफॉर्मल सेक्टर की, उनको भी इस दायरे में लाना पड़ेगा धीरे धीरे करके। और विकसित भारत का मतलब ही ये है डेवलप्ड इकोनॉमी में सबको सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स मिलने चाहिए। तो ये गवर्नमेंट में तो मिलता ही है पेंशन, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की ये प्रॉब्लम्स हैं कि सबको पेंशन्स नहीं मिलता, सबको बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। तो धीरे धीरे करके अगर ये दायरा बढ़ता है तो ये सोशल सिक्योरिटी का जो नेट है हमारे देश में बढ़ जाएगा।
1: सुषमा जी, क्योंकि मैं भी एक महिला हूं, आप भी एक महिला हैं, तो इस फैसले को अगर हम उस नजरिए से भी देखें तो महिलाओं, युवा कर्मचारियों और कम वेतन पाने वाले जो निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की रिटायरमेंट प्लानिंग है
2: जी,
1: उस पर क्या प्रभाव पड़ता आप देख पा रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा इस निर्णय के बाद से?
2: ये बिल्कुल अच्छी बात आपने पूछी, खासकर महिलाओं के लिए। महिलाएं का एक बहुत बड़ी तकलीफ आप कहें या मुश्किल है कि जब वो काम करती हैं तो उनकी जो वेतन है, उनकी तनख्वाह है, वो घर के कामकाज में चली जाती है, और वो कोई बहुत ज्यादा वो सेविंग नहीं कर पाती है। जैसे अब ये दायरा बढ़ा है 15,000 से 25,000 तक, तो ये सारी महिलाएं जो इसके दायरे में आएंगी उनको फोर्स सेविंग करनी पड़ती है, मतलब 12% का उनके वेतन से जाएगा ही जाएगा, तो उनकी सेविंग हो जाती है। और तब उसके बाद अगर उनको खुदा न खास्ता कुछ तकलीफ आ जाए या कोई खुशी का मौका आ जाए, कोई शादी हो जाए, तो ये महिला, जरूरी नहीं है कि हर महिला के साथ कोई और उनको मदद करने वाला हो सकता है अकेली है, तो जब भी उनको किसी चीज की जरूरत हो वो इस फंड से पैसा एकदम से ले लेते हैं।
1: ये एक तरीके से सशक्तिकरण की तरफ भी पोषित करता है।
2: बिल्कुल, ये बहुत बड़ा फायदा है महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, और जैसे आपने

0: का कोई भी जो एल्डरली लोग भी हैं उनके लिए, सीनियर सिटीजन के लिए भी ये, और जो नीचे वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए ये जो फर्स्ट सेविंग का फायदा है ये बहुत बड़ी चीज है।
1: इसी सिलसिले में एक और सवाल मेरे जहन में है, क्योंकि ये सारी बात सेविंग्स की है, भविष्य निधि की है, तो क्या इस कदम से कर्मचारियों में जो लॉन्ग टर्म सेविंग की आदत है इसे क्या बढ़ावा मिलने की कोई उम्मीद है?
0: बिल्कुल, यही ये लॉन्ग टर्म सेविंग की आदत से एक मकसद है ये प्रोविडेंट फंड का, कि सेविंग्स की जो हैबिट है वो हमारे कर्मचारियों में बिल्कुल इट शुड गेट डीपेंड हमारे वर्कर्स में, हमारे एम्प्लॉइज। लेकिन ये जो पैसा है ये प्रोविडेंट फंड में वो खुद ब खुद उनकी तनख्वाह से चला जाता है, और जैसे आप कह रही हैं किसी के साथ मतलब कम तनख्वाह हो, समझ लीजिए आप हम तो 25,000 की बात कर रहे हैं, अगर उनकी सिर्फ 10,000 हो, लेकिन 10,000 में से भी अगर 1,000 रूपये 1,200 रूपये आपकी तनख्वाह में से चले जाए और आपको उतना ही मिलेगा, आप उतने में ही मैनेज कर लेंगे
1: जी।
0: तो ये है कि ये ऑटोमेटिकली ये सेविंग्स की जो आदत है वो धीरे धीरे लॉन्ग टर्म आपके जहन में आ जाती है।
1: सुषमा जी, क्या इस कदम से गिग वर्कर्स और जो अन्य नॉन ट्रेडिशनल वर्कर्स हैं उनको भविष्य में सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क से जोड़ने का रास्ता और भी मजबूत होता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो शायद इससे भी कम कमाते हैं, इस बार से भी कम कमाते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, तो क्या उनके लिए भी यहां से रास्ता खुलता हुआ आप देख पा रही हैं, नजर आता है आपको?
0: देखिए, इसके लिए सिर्फ ये वेज सीलिंग से नहीं होगा, ये थोड़ा सा और हमें कोशिश करनी पड़ेगी। गिग वर्कर्स के लिए खैर सरकार ने जो रिसेंट लेबर कोड्स हैं, गिग वर्कर्स को इस दायरे में आ गए हैं, वो लेबर कोड्स के दायरे में आ गए हैं, और कोशिश ये की जा रही है कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये एप्स हैं जिसमें ये गिग वर्कर्स हैं, कि ये भी ये जो फायदे हैं, ये जो बेनिफिट्स हैं, ये शुरू करें अपनी कंपनीज में। हालांकि अभी तक तो उन्होंने ये कहा कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, तो ये सबसे बड़ा जो ऑब्स्टिकल है इन सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स में, कि हर कंपनी जो है वो कहती है कि हम अभी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को लेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट में तो ये बेनिफिट्स मिलते नहीं है। लेकिन धीरे धीरे नए जो लेबर कोड्स आए हैं उसमें उन्होंने खास कहा है कि गिग वर्कर्स के लिए एक बिल्कुल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम बनाना पड़ेगा, और धीरे धीरे इनको इस दायरे में लाना पड़ेगा, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर को हम हमेशा इनफॉर्मल नहीं रख सकते। जरूरी है कि उनको भी ये जो फायदे हैं ये इनको देने पड़ेंगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए।
0: थैंक यू।
2: अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा, इसमें भाग ले रही थी आर्थिक विश्लेषक सुषमा रामचंद्रन, कार्यक्रम का संचालन कर रही थी प्राची प्रिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आइए सुनते हैं मोहम्मद अहमद कव्वाल और साथियों की आवाज में कव्वालियां।

सामी ने भी आप सुन रहे थे रश बिहारी दत्ता का सितार पर बजाया हुआ राग भैरवी और राग जेठ। इसी के साथ इंस्ट्रूमेंटल मौसीकी का ये प्रोग्राम अब खत्म होता है। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है फिल्मी नगमों का प्रोग्राम आखिर शब। हाजिर इस प्रोग्राम की पहली पेशकश आप सबकी नजर, आप सबकी पसंद लता मंगेशकर की आवाज में।

मैं भी आप सुन रहे थे बारादरी फिल्म से नगमा तलत महमूद की आवाज में। हाँ, इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मुकेश की आवाज में आग फिल्म से।

0: लाख और 14 दीगर जख्मी हुए हैं। बचाव कारकुनों का कहना है कि इसके मलबे में तकरीबन 100 अफराद के दबे होने का अंदेशा है। न्यूजीलैंड के वजीर आजम क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुल्क के आजाद तजारती मुआहदे FTA को एक तारीखी मुआहदा करार देते हुए कहा कि इसके जरिए 1 अरब 40 करोड़ भारतीय सारिफिन तक रसाई हासिल होगी और न्यूजीलैंड में रोजगार और आमदनी में इजाफा होगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब लक्सन ने कहा कि यह मुआहदा उनकी नेशनल पार्टी की जानिब से हुकूमत की पहली मुद्दत कार के दौरान भारत के साथ आजाद तजारती मुआहदा तय करने के वादे की तकमील है। इससे कबल न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट ने भारत के साथ आजाद तजारती मुआहदे पर अमल दरामद के लिए जरूरी कानून साजी को मंजूरी दी। तजारत और सरमायाकारी के वजीर टॉड मैकले ने कहा कि इस मुआहदे के तहत न्यूजीलैंड के बरामद कुनिंदगान को भारत की मंडी तक रसाई हासिल होगी, जो दुनिया की सबसे बड़ी और तेजी से तरक्की करने वाली मईशतों में से एक है। मुआहदे के तहत न्यूजीलैंड की भारत को होने वाली 57% बरामदात पर महसूलात खत्म कर दिए जाएंगे। मुकम्मल तौर पर नफाज होने के बाद 95% बरामदात पर टैरिफ हटा दिए जाएंगे या नुमाया तौर पर कम कर दिए जाएंगे। न्यूजीलैंड ने भारतीय अशिया को भी अपनी मार्केट तक महसूलात से पाक रसाई फराहम करने पर इत्तेफाक किया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 के 5वें एडिशन का इफ्तिताह किया। ये 3 रोजा कॉन्फ्रेंस आलमी सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स निजाम से वाबस्ता शराकतदारों को यकजा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करेगी ताकि मुआवनत और इख्तिरा को फरोग हासिल हो, मैन्युफैक्चरिंग की सलाहियत में इजाफा हो, सरमायाकारी को रागिब किया जा सके और मुस्तकबिल के लिए तैयार सलाहियत पैदा की जा सके। इस तकरीब में 600 से ज्यादा नुमाइशकार, 300 बैनुल अक्वामी कंपनियां और 50 ममालिक के वफूद शिरकत कर रहे हैं। इस नुमाइश में जापान, जनूबी कोरिया, मलेशिया, नीदरलैंड, सिंगापुर और सूडान की नुमाइंदगी कर रहे 6 पवेलियन, 12 रियासती सरकारों के पवेलियन और 1 स्टार्टअप से मुतालिक मखसूस पवेलियन शामिल होंगे। सेमिकॉन इंडिया सेमीकंडक्टर से मुतालिक भारत की मुमताज कॉन्फ्रेंस और नुमाइश है, जिसका इनेकाद इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत सेमी मुश्तरका तौर पर कर रहे हैं। हुकूमत ने गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून UAPA के तहत शहजाद भट्टी नेटवर्क को दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। ये दहशतगर्द ग्रुप हथियारों, धमाका खेज मवाद और मनशियात की सरहद पार स्मगलिंग में मुलविस है। इसके अलावा ये नौजवानों को भड़काने और मुजरमीन को दहशतगर्दी की जानिब मायल करने में भी शामिल रहा है। मरकजी वजारत दाखिला ने इस मामले में गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। शहजाद भट्टी नेटवर्क ने भारत के जमहूरी ढांचे और फिरकावाराना हमाहंगी के ताने बाने को निशाना बनाते हुए नफरत अंगेज डिजिटल मवाद भी शाये किया है। वजारत दाखिला ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दहशतगर्दी को हरगिज बर्दाश्त न करने के नजरिए के तहत उसने UAPA के तहत शहजाद भट्टी नेटवर्क को दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। बेलारूस के लिए अमरीकी खसूसी एलची ने कहा है कि मुल्क के हुक्काम ने बेलारूस की कुछ कंपनियों के खिलाफ अमरीकी पाबंदियां हटाने के एक समझौते के तहत 25 कैदियों को रिहा करने पर इत्तेफाक कर लिया है। बेलारूस के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप के खसूसी एलची ने बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ मीटिंग के बाद ये बयान दिया। भारत ने सऊदी अरब में मक्का के नजदीक ड्रोन हमले पर गहरी तश्वीश का इजहार किया है। इस हमले के ताल्लुक से मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब हुकूमत की इलाकाई सालिमियत और आम शहरियों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी कार्रवाई की मजम्मत करता है। उन्होंने मजीद कहा कि मक्का के नजदीक ये वाकया खासतौर पर तश्वीश का बास है, क्योंकि ये शहर पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए खसूसी अहमियत का हामिल है। ने मजीद कहा कि भारत खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की जल्द अज जल्द बहाली की उम्मीद करता है। इससे पहले सऊदी अरब ने कहा था कि उसके फजाई दिफाई निजाम ने कल शाम मक्का के नजदीक ईरान की पुश्त पनाही वाले यमन के हौसी मुसल्ला ग्रुप के जरिए किए गए ड्रोन हमलों के दौरान एक ड्रोन को नाकाम बना दिया है और तबाह कर दिया। यमन में कानूनी हैसियत की हिमायत करने वाली इत्तेहादी अफवाज के तर्जमान ने खबरदार किया है कि सऊदी क़यादत में इत्तेहाद मजीद हमलों के खिलाफ जरूरी इक़दामात है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत को उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के मैदान में कायद बनाने के लिए सनअतों की ज्यादा शमूलियत की अपील की है। सरकर्दा आलमी सीईओज ने सेमीकंडक्टर गोलमेज के दौरान भारत की सलाहियत पर एतमाद का इजहार किया। न्यूजीलैंड के वजीर आजम क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुल्क के आजाद तजारती मुआहदे FTA को एक तारीखी मुआहदा करार दिया है। और भारत ने सऊदी अरब में मक्का के करीब ड्रोन हमले पर गहरी तश्वीश का इजहार किया है और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की जल्द अज जल्द बहाली की अपील की है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शब का एक बजे चाहता है उर्दू सर्विस की तीसरी मजलिस की नशरियात अब अख्ताम पजीर होती हैं। सुबह 9:30 पर पहली मजलिस की नशरियात लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। जय हिंद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। उन्होंने कौशल विकास, नवाचार और एआई तथा क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में उद्योग की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के यशोभूमि में पांचवें सेमिकॉन इंडिया का शुभारंभ करेंगे। तीन दिन के इस सम्मेलन में सहयोग बढ़ाने, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने को वेतन सीमा 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये प्रतिमाह कर दी है। संशोधित वेतन सीमा आज विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: आज कैबिनेट में हमारे देशभर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उस नियम में अब तक 15,000 रुपीस की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने इसके बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाली डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के अनुसार यह कार्रवाई की गई है। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान को उसके अवैध और बलपूर्वक कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट और निरंतर मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत बिना किसी कानूनी आधार वाले पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को पूरी तरीके से खारिज करता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविच्छेद्य हिस्से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इससे 1,40,00,000,000 भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच आसान होगी और न्यूजीलैंड में रोजगार तथा आय में वृद्धि होगी। इस समझौते से न्यूजीलैंड से भारत को होने वाले 27% निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। तमिलनाडु में एआईएडीएमके विधायकों मारगाथम कुमारवेल और सत्यभामा के इस्तीफे के कारण रिक्त हुए आरक्षित मधुरांतकम और धारापुरम विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों के लिए कल नामांकन दाखिल करने का

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी AIR लाइव न्यूज 24x7। 1:10 हो चुके हैं, वक्त हो चला है कार्यक्रम गीत सुनहरे, गोल्डन एरा फिल्म संगीत। आई श्रोताओ, सुनते हैं कार्यक्रम गोल्डन एरा फिल्म संगीत गीत सुनहरे, मेरे यानी कि पूजा भारती के साथ। गोल्डन एरा की बात हो रही है, तो गोल्डन एरा वही है ना जब जो गीत बने वो आज भी तरोताजा है, वो आज भी हमारे जुबान पर यूं ही बने हुए हैं और यूं ही खूबसूरत और नए नवेरे लगते हैं। जी हाँ, वही तो है गोल्डन एरा, क्योंकि वो एरा ऐसा ही तो था जब गीत बनते थे जो आज भी लोगों को पसंद आते हैं, आज भी लोगों को भाते हैं, और वही गीत आज भी लोगों के चेहरे पर जगमगाहट ले आते हैं। जी हाँ, हर एक पहलू को छूता हुआ उस एरा के गीत हम सभी को भाते हैं। तो उन्हीं में से कुछ गीत समेटकर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आइए सुनते हैं और शुरुआत करते हैं कार्यक्रम का गीता दत्त के स्वर में ये गीत।

गोल्डन एरा की बात हो रही है तो वो गीत जब प्यार मोहब्बत की बातें के साथ साथ दुनिया से दूर कहीं जाने की बात हो रही थी, तब उस शब्दों के साथ एक खूबसूरत गीत बन गया और वो गीत ये था।

पुराने गानों में उनके शब्दों में बात कुछ अलग थी। अब यूं देखिए कि जब आंखों को किसी का इंतजार होता है या किसी को देखने की तलब होती है।

तो गीतों में उस शब्द को कुछ यूं ढाला गया कि जलते हैं जिसके दिए दोनों आंखों के दिए। इतने खूबसूरत लाइन के साथ वो गीत क्यों हिट ना हो और वो गीत क्यों खूबसूरत ना लगे, तो क्यों ना इस गीत को सुन लिया जाए।

गोल्डन एरा की जब बात होती है तो एक शराफत, एक खूबसूरती और एक सादगी गीतों में भी ढाला जाता था, वो नजर आता था। लेकिन जब बात होती है उन गीतों की जहां वो सादगी और खूबसूरती, वो शब्द, वो सब कुछ नजर आ रहा है, लेकिन एक अलग सी शांति भी नजर आती है, वो कौन सा गीत है?

वैसा गीत जहां अपने दिल की बाजी लगा दी जाती है, दिल को यूं ही छोड़ दिया जाता है दुनिया के लिए, मोहब्बत छोड़ दिया जाता है, दिल तोड़ दिया जाता है, लेकिन एक शांति फिर भी बनी है। और वैसे जो गीत बने, उस तरीके के जो गीत बने, वो गीत लोगों को बहुत भाए, क्योंकि उसमें एक दर्द था, लेकिन गीत बहुत सादगी भरा था। सुनते हैं।

कितना खूबसूरत सा गीत, वही समय हो सकता है जो इन गीतों को दे सकता है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे, गोल्डन एरा फिल्म संगीत कार्यक्रम, मेरे यानी कि पूजा भारती के साथ। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगला गीत रात पर ही तो है। जी हाँ, रात खूबसूरत हो और सुहानी हो तो फिर गीत क्यों ना बने। वैसे भी अगर देखा जाए तो गोल्डन एरा की बात हो रही है, हर एक समय पर, हर एक सिचुएशन पर गीतों को बनाया गया है, तो फिर ये गीत क्यों ना बने और ये गीत हिट क्यों ना हो। आइए सुनते हैं गोल्डन एरा का एक और अलग सा ये गीत।

बात हो रही थी कि सुहानी रात की, तो फिर इस गीत के बाद वो गीत जहां एक अलबेली अकेली, एक नार कहां जा रही है, गीतों में ऐसा कुछ बताया गया है। वैसे तो गोल्डन एरा की बात हो रही है, तो उस वक्त के जितने भी गीतकार संगीतकार थे सब के सब माहिर थे अपने कार्य में, अपने कलाकारी में। उस वक्त हिट हुए थे मोहम्मद रफी और गीता दत्त। इस गीत के साथ उनकी जोड़ी अलग ही नजर आई। जी हाँ, इसके बाद वो गीत इतनी ज्यादा हिट हुई कि लोगों ने मोहम्मद रफी और गीता दत्त के स्वर को एक साथ सुनने की अपनी इच्छा जताई, क्योंकि गीत के हिट होते ही फिर वो गीत बनकर आए इन दोनों के ही स्वर में अलग अलग तरीके से। तो आइए सुनते हैं उस गीत को जिसने इन दोनों को एक अलग पहचान दी।

आपने ये गौर किया होगा कि जब गोल्डन एरा की बात होती है, सुनहरे गीत की जब बात होती है, वो गीत बिल्कुल कम समय के होते थे, यानी कि बहुत कम ड्यूरेशन के, लेकिन उस उतने ही देर में गीत में हर चीज समझा दिया जाता था, यानी कि गीतों की खूबसूरती कम शब्दों के साथ भी बता दी जाती थी। उसमें गीतों में जो एक्सप्रेशंस डाले जाते थे, जो भाव होते थे, वो बहुत भाते थे। अब जैसे ये गीत देखिए, ऐसे ना देखो, शब्द और बोल इस तरीके से बनाए गए हैं कि गीतों को हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक बात और भी है, इन गीतों में जो हम देख पाते हैं वो ये कि धुन बहुत ही मध्यम और धीमी चाल के साथ साथ खूबसूरत तरीके से दिया गया, जो स्वर को ऊंचा दिखाता हो और धुन को उसके लेवल के साथ ढालता हो। धुन जब कानों में जोर ना डाले और शब्द जब कानों पर जोर डाले, तो गीत सुनहरे गीत ही बन जाते हैं।

देना नादान, नैनों को नादान जब बोला जाता है तो ये नादान शब्द अब तो सुनने को ही नहीं मिलता। अगर नैनों को नादान बोला गया यानी कि नैनों ने कुछ खता की है। और गीत लता मंगेशकर के शब्दों से उनके गले से निकल कर आया। कौन सा गीत है ये, सुनते हैं।

0: मैंने कहा था ना कि पुराने गीत जब गोल्डन एरा की बात होती है, यानी गीत सुनहरे की जब बात होती है, तब उस वक्त कोई भी सिचुएशन, कोई भी समय को छोड़ा नहीं जाता था। हर एक समय पर, हर एक मूड पर गीत बने थे। अब जब हमने पढ़ाई की, जब हम बोलते हैं टू वन जा टू, तो फिर क्या ही पुराने जमाने में जब उसे हिंदी में बोला जाता था तो कैसे बोला जाता था। उस पर भी एक गीत बनी, और वो गीत जो बना वो आज आप भी सुनने वाले हैं। आइए सुनते हैं।
1: रॉक रॉक रॉक बेबी रॉक।

तो आपने देखा ना, सुना ना कि कैसे कैसे गीत और अलग अलग तरीके के गीत, हर तरीके के गीत गोल्डन इरा के गीत कहलाते हैं। सुनहरे गीत, खूबसूरत गीत, गीतों में सादगी और प्यार मोहब्बत सब कुछ गीतों में नजर आ जाता है। अगर हम बात करें कि उस जमाने में जितने भी सिंगर थे वो सब अपनी गायकी के मशहूर और माहिर, शायद ही कोई ऐसा सिंगर होगा जो अपनी आवाज से लोगों के दिल को ना जीता हो। जी हाँ, उस वक्त के किसी सिंगर ने, किसी गायक ने एक गीत भी अगर गा लिया हो वो भी हिट रहा था। अब अगर बात करें कि सारे हिट गायक में से कई गायक ऐसे हैं जो आगे चलकर काफी समय तक, यानी कि उस जनरेशन से लेकर आगे जनरेशन तक को अपने गीतों से लुभाया, उनमें से एक नाम महेंद्र कपूर है। उनका ये गीत बहुत ही फेमस, आइए सुनते हैं।

0: क्यों खूबसूरत था ना ये गीत। वही तो कहते हैं ना कि गोल्डन एरा की बात हो रही है, सुनहरे गीत की बात हो रही है, और अब इसका आखिरी पड़ाव भी आ गया। आखिरी गीत आपके नाम, मुझे पूजा भारती को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: अरे तूने जो इधर देखा, हाय मैंने भी उधर देखा। तूने जो इधर देखा मैंने भी उधर देखा, काहे को जले है कोई रे।

0: पर शोला सा चमक गया, थोड़ा मैं बहक गया।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सुनहरे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी AIR लाइव न्यूज 24x7। 2 बजने को है, अब हिंदी में समाचार सुनिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के सम्मेलन में सहयोग बढ़ाने, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान को उसके अवैध और बलपूर्वक कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट और निरंतर मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत बिना किसी कानूनी आधार वाले पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को पूरी तरीके से खारिज करता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविच्छेद हिस्से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की जगदलपुर स्थित विशेष अदालत ने झीरम घाटी कांड के सभी 10 दोषियों को कल फांसी की सजा सुनाई। वर्ष 2013 में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में झीरम घाटी के माओवादियों के हमले में कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेताओं सहित 27 लोगों की मौत हो गई थी और 35 अन्य घायल हुए थे। NIA ने इस मामले में 11 माओवादियों को गिरफ्तार किया था। एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कल से 32वां अखिल भारतीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन शुरू हो गया। 2 दिन के इस सम्मेलन का उद्घाटन राज्यपाल रामेन डेका ने किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि स्थानीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक सशक्त, पारदर्शी, समावेशी और तकनीक सक्षम बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने आज स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत।

श्री पाटिल ने कहा कि इस वर्ष अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और सहभागिता को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि देश में स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में दिल्ली को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान मिला है। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा का स्थान है। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ना 2047 तक विकसित भारत की महत्वाकांक्षा के लिए एक आर्थिक, पर्यावरणीय और रणनीतिक अनिवार्यता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे हैदराबाद में आयोजित हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम हैदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना आज 3 वर्ष पूरे कर लेगी। इस योजना के अंतर्गत 30 लाख लाभार्थियों के पंजीकरण किए जाने का लक्ष्य पूरा हो चुका है। योजना का उद्देश्य 18 चिन्हित

0: In men's cricket, India will face Afghanistan in the third and final T20 international of the series at Arun Jaitley Stadium in Delhi at 7:30 p.m. today. India have already secured the series with convincing wins in the first two matches. And that is the end of this news bulletin.
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी AIR लाइव न्यूज 24x7। 2:10 हो चुके हैं। अब सुनिए कार्यक्रम गीत बहार फिल्म म्यूजिक। ये कार्यक्रम नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक है। इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ पूजा भारती।

0: इधर आओ ना। उधर बैठे क्या सोच रहे थे?
1: सोच रहा था, मैं गम के अंधेरे में डूबा हुआ था, तुम अचानक उजाला बनकर आ गई, मुझे जीने की नई उम्मीद, नया सहारा मिल गया। इतने पास आकर कहीं तुम मुझसे दूर न हो जाओ।
0: अनिल, वो देखो सूरज की किरणें जब इन बर्फीली चोटियों पर गिरती है तो बर्फ पिघलकर नदी का रूप धारण करती है, फिर वो नदी पहाड़ों, जंगलों और मैदानों को चीरती हुई जाकर समंदर की गोद में समा जाती है। मैं भी उस नदी की तरह तुम्हारे प्यार के समंदर में समा जाऊंगी। अब तुम्हें छोड़कर कहां जाऊंगी मैं?

0: सोनी आज हमारे जीत का दिन है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि तुम मेरे पास हो, मैं तुम्हारे पास, और हमारे साथ वो सितारे।
1: लेकिन तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी खतरे में क्यों डालना चाहते हो? क्यों?
0: क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं।

you feel it? Now let's go for it.

0: ہر بات کا مقرر ہے، ہر کام کے ساتھ ہوتی ہے،
1: ہر کام کے ساتھ ہوتی ہے۔

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी AIR लाइव न्यूज 24x7। 3 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आइए श्रोताओं, सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र।

प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के यशोभूमि में पांचवें सेमिकॉन इंडिया का शुभारंभ करेंगे। तीन दिन के इस सम्मेलन में सहयोग बढ़ाने, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कल से 32वां अखिल भारतीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन शुरू हो गया। दो दिन के इस सम्मेलन का उद्घाटन राज्यपाल रामेन डेका ने किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। तमिलनाडु में AIADMK विधायकों मार्गाथम कुमार वेल और सत्यबामा के इस्तीफे के कारण रिक्त हुए आरक्षित मदुरांतकम और धारापुरम विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों के लिए कल नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। नामांकन पत्रों की जांच आज होगी जबकि 19 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान को उसके अवैध और बलपूर्वक कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट और निरंतर मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविच्छेद्य हिस्से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। आइए आपको लेकर चलते हैं गजलों की खूबसूरत दुनिया में।

जनाब अब्दुल हमीद अदन साहब का एक मशहूर कता पेश कर रहा हूं। बहुत ही खूबसूरत कता है जिसमें अदन साहब ने रंग खुशबू और नाज की एक खूबसूरत तस्वीर पेश की है। इसी अंदाज की एक नई गजल, एक ताजा तरीन गजल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। पहले कतार है।

0: एक ऐसा नाम जिसमें मोहब्बत भी है, तन्हाई भी, इंतज़ार भी है, मुलाकात की खुशी भी। दोस्तों, गज़ल महज चंद अशार का सिलसिला नहीं, बल्कि दिल की उन खामोश बातों की आवाज़ है जिन्हें हम अक्सर कह नहीं पाते, सिर्फ महसूस करते हैं, कुछ इस तरह।
1: भूपेंद्र सिंह जी की आवाज़ में।

गजल एक ऐसा नाम जिसमें मोहब्बत भी है, तन्हाई भी, इंतजार भी है, मुलाकात की खुशी भी। और दोस्तों, कभी किसी की याद बनकर गजल दिल में उतरती है तो कभी किसी की अधूरी मोहब्बत का अफसाना बन जाती है, कभी इसमें जिंदगी की हकीकत मिलती है तो कभी ख्वाबों की खूबसूरत दुनिया। गजल की खूबसूरती यही है कि हर शख्स उसे अपने अंदाज में महसूस करता है। एक ही शेर किसी के लिए मोहब्बत हो सकती है तो किसी दूसरे के लिए जुदाई की कहानी। मिताली जी की आवाज में ये खूबसूरत गजल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

दोस्तों, गजलों की दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ अल्फाज कम होते हैं मगर एहसास बहुत गहरे। कभी दो मिसरे पूरी कहानी कह जाते हैं और कभी एक शेर दिल में ऐसा उतरता है कि देर तक उसकी गूंज रहती है। शायद इसीलिए गजल सुनना सिर्फ संगीत सुनना नहीं, बल्कि अपने ही दिल से एक खामोश मुलाकात करना है। और रात का ये वक्त तो अपने से मुलाकात करने का इससे बेहतर जरिया और कोई हो ही नहीं सकता।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम अर्चना, जिसमें हम सुनेंगे डिवोशनल म्यूजिक, जिसमें आई जेसुदास जी, देवी जी और कोरस है, और साथ ही दीपाली भल्ला जी।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: और आइए सुनते हैं अब कार्यक्रम कर्नाटक संगीत पर आधारित नाद ब्रह्म। हमारे कलाकार हैं चंद्रशेखर जी।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज बृहस्पतिवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 17 सितंबर सन 2026। इस समय सुबह के 4:53 और 44 सेकंड्स हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। अब से कुछ ही देर बाद 5 बजे समाचार होंगे, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में। 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें, जिसमें आज हम जानेंगे तितली अभ्यास क्रिया और दीर्घ श्वास परीक्षा के बारे में। 5:20 का समय रहेगा देशभक्ति गीतों का। 5:30 पर कार्यक्रम स्वर रंजनी आप सुनेंगे, और जिसमें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में राग नाथ भैरव आप सुन सकते हैं डॉक्टर गरुण मिश्रा की आवाज में। 6 बजे समाचार होंगे, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में। सुबह 6:10 का समय रहेगा कार्यक्रम वंदना का। फिर 6:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चिंतन, जिसमें आज का विषय है योग और आधुनिक जीवन। 6:45 पर रामचरितमानस में आप सुन सकते हैं अयोध्या कांड का भाग 51। 6:55 का समय रहेगा संस्कृत समाचार का। फिर 7 बजे आप सुन सकते हैं हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार। 7:10 का समय रहेगा कार्यक्रम संगीतिका का, जिसमें आज आप सुन सकेंगे भजन सुश्री समृद्धि मल्होत्रा जी की आवाज में। 7:30 का समय रहेगा गीतों भरी गुड मॉर्निंग का। 8 बजे आप सुन सकेंगे समाचार प्रभात में हिंदी समाचार। फिर 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज, जिसमें अंग्रेजी में समाचार सुने जा सकते हैं। 8:30 का समय है उर्दू समाचारों का। फिर 8:45 का समय रहेगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। 9:15 पर कार्यक्रम उद्योग पत्रिका में आप सुन सकते हैं डॉक्टर हमेंद्र डांगी, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के वाणिज्य विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर से कमल किशोर जी की बातचीत, जिसमें आज का विषय है प्रबंधन अध्ययन वाणिज्य और व्यवसाय, शिक्षा से रोजगार के नए अवसर। इसके बाद सुबह 9:30 का समय रहेगा पंजाबी कार्यक्रम का। नाम है मिट्टी दी महक।

और इसके बाद भी कार्यक्रमों का सिलसिला इंद्रप्रस्थ चैनल पर यूं ही चलता रहेगा। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5 बजने वाले हैं और अब कुछ ही पलों में समाचार होंगे।

जित प्रभु आवे चित जित देन विसरै पार ब्रह्मा।